सुप्रभात, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ram.
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है खेती किसानी और सुनिए दाल मिल की उपयोगिता।
4: झारखंड राज्य में दाल का कुल उत्पादन 2 से 3 लाख टन होता है। कुल उत्पादन का 28% अरहर, 27% चना, 17% उड़द, 12% मटर, 5% मसूर और 11% में अन्य दाल हैं। 75% मोटे दाल को दाल में प्रसंस्करण करके ही खाया जाता है। दाल का प्रसंस्करण ग्रामीण स्तर से लेकर आधुनिक एवं बड़े स्तर तक किया जा रहा है। भारतवर्ष में 7,000 दाल मिल इकाई हैं, जो कि 110 से 120 लाख टन का प्रसंस्करण कर रहे हैं। इन इकाइयों में सीधे तौर पर 7,000 लोग जुड़े हुए हैं। रोजगार के साथ साथ यह इकाइयां उत्तमता वाली दाल भी प्रदान कर रही है। साथ ही यह क्षेत्र एक अच्छे व्यवसाय की संभावना को प्रकट करता है। जहां तक दाल व्यवसाय की बात है तो यह क्षेत्र व्यवसाय के तौर पर एक अच्छा विकल्प है। समय में परिवर्तन आ रहा है। हमारा देश विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि हम किस प्रकार अपने किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने में प्रसंस्करण उद्योग का एक अहम भूमिका निभा सकता है। हमें ग्रामीण स्तर पर छोटी इकाइयों से प्रसंस्करण स्तर को बढ़ावा देना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर किसान भाई किसी न किसी रूप में प्रसंस्करण इकाई से जुड़े। इसमें

0: संभावना अपार है। देखिए हमारे आसपास ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार की इकाई, जैसे मोटे दाल से दाल बनाना, धान से चावल बनाना, तेल निकालने वाली मशीन, धान से चूड़ा बनाने वाली इकाई, आलू से चिप्स बनाने वाली इकाई, लेमन ग्रास से तेल निकालने वाली इकाई इत्यादि। इस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में संभावनाएं अपार है। प्रसंस्करण की सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई या उद्यमी इसमें अपने चीजों का मूल्य का निर्धारण स्वयं ही कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गोटे अरहर का बाजार मूल्य 4,000 रुपया प्रति क्विंटल, परंतु बाजार में दाल 7,000 से 8,000 रुपया प्रति क्विंटल है, जबकि इसमें लागत लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल आती है। इसे किसान भाई अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे कम समय में प्रसंस्करण के माध्यम से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति वो मजबूत कर सकते हैं। दाल प्रसंस्करण के बारे में जहां तक हम चर्चा करेंगे, तो तुअर दाल में सबसे पहले जो अरहर की दाल है उसको मिल से पहला पास किया जाता है। अनाज बाहर आते समय तेल लगाकर 6 से 8 घंटा रखा जाता है, दूसरे दिन धूप में सुखाकर दूसरा पास किया जाता है। इस समय भी तेल लगाकर अनाज का ढेर लगाकर रखा जाता है। अक्सर पूरे दिन के कार्य के बाद तेल लगाए हुए अनाज को बोरे में रात भर रखा जाता है। प्रथम और द्वितीय पास करते समय कुछ मात्रा में छिलके समेत दाल भी बनती है। इस दाल को भी तेल लगाकर रात भर बोरे में रखा जाता है। प्रथम और द्वितीय किए हुए सूखे दाल को तीसरा पास करने के लिए, अब आप तीसरा जब पास कर रहे हैं तो अरहर में पूरा छिलका निकलता है, जिससे व्यावसायिक रूप से गोटा कहा जाता है। इस गोटे को लगभग 8 से 10 लीटर पानी प्रति क्विंटल लगाया जाता है। पानी लगाया गोटा रात भर ढककर रखते हैं। गोटे को सुखाकर फटका यंत्र से निकाला जाता है, जिसमें प्रसंस्करण पूरा होकर तुअर दाल यानी अरहर दाल बनती है। इस तरह प्राप्त की हुई दाल को पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला और दूसरा पास करते समय जो दाल बनती है उसे भी तेल लगाकर सुखाने के बाद मिल से तीसरा पास करने से छिलका निकल जाता है और दाल मिलती है। अरहर से दाल बनाते समय सभी घटक यंत्रिका से अलग होते हैं और प्रति क्विंटल अरहर से दाल और अन्य घटक की मात्रा भी अच्छी मिल जाती है।
1: मिनी दाल की उपयोगिता, आप सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम में, और अब सुनिए आज का चिंतन।

सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास में अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता, वो बीच में ही फंस जाएगा, नदी के प्रवाह में बह जाएगा। एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन में जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है, उसे सामान्य से उत्कृष्ट बना देता है। हम में आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, अनंत शक्ति के साथ हमारा संबंध उतना ही गहरा होता जाता है। आत्मविश्वास संपूर्ण शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आत्मविश्वासी व्यक्ति के इशारे पर काम करती हैं। जो अपनी शक्तियों का नियंत्रक है, उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। संगठित शक्तियों को मनुष्य जिस क्षेत्र में भी केंद्रित करता है, उसमें उसे भारी सफलता मिलती है। जैसे कोलंबस जब पृथ्वी की परिक्रमा करने चले तो उनके कुछ दुर्बल साथियों ने उन्हें लौट जाने की सलाह दी, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं टिका। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार आदि में एक प्रकार से चैतन्यता भर देता है।

0: उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लगते हैं, उसमें एक प्रकार की दिव्यता का एहसास होने लगता है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है। अतः जीवन में सफल होना है, विजयी बनकर जीवन बिताना है, समाज को नई दिशा देने वाला बनकर जीना है, संसार पर अपनी छाप छोड़नी है, इस जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत के द्वंद्वों, कठिनाइयों, उलझनों में भी स्थिर रहना है, आशा और उमंग के साथ जीवन बिताना है, तो अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। ध्यान, योग, कठिन परिश्रम और सत्य के रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को जगा सकते हैं।
1: और यह था आज का चिंतन, संकलन और वाचन दिनेश कुमार लाल का था। और साथियों, अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं देशभक्ति गीत।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद

विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

साथियों, अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम एफ के 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। अब आइए हम आप सभी को जानकारी दे दें शेष कार्यक्रमों के बारे में।

7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको सुनवाए जाएंगे डॉक्टर इंदिरा ढोकनिया से लेके भेंट वार्ता। विषय होगा सर्वाइकल कैंसर। इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। सुबह सुरीली, ये प्रोग्राम होगा 7:15 से। खुला आकाश कार्यक्रम होगा 7:45 पर। और आज आप सुनेंगे रश्मि श्रीवास्तव की वार्ता, स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव, जय

विविधता संरक्षण का नया मंत्र। आठ बजे से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण यानी समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। साथियों, हम अपने केंद्र रांची से आप सभी को सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार 8:23 पर। 8:45 पर हमारा कार्यक्रम होगा लोकरंग, आप सुनेंगे मुंडारी लोकगीत। 9:00 का कार्यक्रम होगा रस रंजन 9:00 से, और 9:23 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज हम आप सभी को राग देसी में आलाप सुनवाएंगे। कलाकार होंगे अभिराम पाठक और इनके साथ रहेंगे पखावज पर राम बचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग।

बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम होगा 10 बजे से। आप सुनेंगे भारत की जनगणना विषय पर बातचीत, और 10:30 पर जोहार रांची। आपकी पसंद कार्यक्रम 11:30 पर होगा, जिसमें अपनी पसंद पर लोग गाने सुनेंगे, और हमारे श्रोता बहने अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनती हैं गृहलक्ष्मी, समय होगा 12 बजे। उमंग, ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा 12:30 पर। 1 बजे से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण यानी समाचार। साथियों, हमारे आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे हम समय समय पर आप सभी को बताते रहेंगे। फिलहाल आप इस वाद्य वादन का आनंद लीजिए, और थोड़ी ही देर में आपको सुनवाए जाएंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचो सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of...
5: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे सर्वाइकल कैंसर, इसमें डॉक्टर इंदिरा ढोकनिया से बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
6: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों आज के समय में देखा जा रहा है कि हमारी माताएं और बहनों को एक बीमारी बहुत जल्द उनको पकड़ने जा रही है और उससे वो ग्रसित हो जा रहे हैं। वो बीमारी है सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर हमारी माताओं और बहनों को क्यों हो जाता है, कारण क्या है, हमारी जीवन शैली के कारण ये बीमारी तो उन तक नहीं पहुंच रही है, और समय रहते हम इसका पहचान कैसे कर पाएँ ताकि हम इस बीमारी से अपना बचाव कर पाएँ। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं ऑर्किड हॉस्पिटल रांची के

0: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदिरा डोकानिया। मैडम, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आजकल सर्वाइकल कैंसर की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्यों हो जा रही है? इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है।
1: सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो बच्चेदाने का मुंह होता है, जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, उसी के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये किस कारण होता है? ये बेसिकली एक वायरस, जिसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उसी के वजह से होता है ये। एंड ये किन में ज़्यादा कॉमन होता है? जिनमें बहुत ही अर्ली स्टेज में महीना आ जाना, या फिर बहुत जल्द शादी हो जाना, या फिर बहुत सारे बच्चे, मतलब दो से ज़्यादा बच्चे होना, या फिर बहुत लेट तक महीना चलना, या फिर अपना पर्सनल हाइजीन या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन ना कर पाना, उन औरतों में ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन होती है।
0: ये बीमारियां उन तक नहीं हो, इसके लिए हम अपना बचाव करें, लेकिन सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेना यह बहुत ज़रूरी है हमारी माता और बहनों को, कि यदि ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है या इसके आरंभिक लक्षण हैं वो क्या हैं, ताकि समय रहते हम इसका इलाज शुरू कर दें और अपना हम बचाव करें।
1: पहले तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर किसी महिला को दो महीनों के बीच में ब्लीडिंग होना, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, या फिर संबंध के दौरान ब्लीडिंग होना, या फिर हर 15-15 या 20 दिन में ब्लीडिंग होना, या फिर बार बार बच्चेदानी से कुछ डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज होना बार बार, तो ये कुछ लक्षण होते हैं, ताकि औरतों को तुरंत डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। ये कुछ लक्षण हमें ये इंडिकेट करते हैं कि शायद सर्वाइकल कैंसर की बीमारी या फिर उसके स्टार्टिंग स्टेज स्टार्ट हो चुका है।
0: ये प्रायः किस उम्र की महिलाओं को हो जाता है?
1: ये मोस्टली 21 साल की उम्र की औरतों से लेकर 65 साल की उम्र तक होता है। इसलिए हम यही जनरली ये कहते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए पहला होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हम लोग वैक्सीनेशंस देते हैं, जो हम 9 साल की बच्चियों से स्टार्ट करके लगभग 45 साल की औरतों तक को देते हैं। अगर सपोज हम वैक्सीनेशन जो दे रहे हैं वो 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग दो HPV वैक्सीनेशन लगाते हैं, जिसमें होता है गार्डासिल 4, गार्डासिल 9 या फिर सर्वेरिक्स। सबसे जो बेहतरीन वैक्सीनेशंस होती है वो होती है गार्डासिल 9, जिसमें हम 9 HPV स्ट्रेन को कवर करते हैं। अगर हम 14 साल की बाद की महिलाओं को ये लगाते हैं वैक्सीनेशन, तो 15 से 45 साल तक हम लोग को 3 डोज देना होता है, जो कि पहले महीने में, दूसरे महीने में और एक 6ठे महीने में। बाकी इस चीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए हमें 21 साल की जो औरतें होती है उससे हम लोग जांचेस शुरू करते हैं, जैसे हो गया पैप्समेयर की जांच या फिर HPV DNA टेस्टिंग जो होती है वो करवाते हैं। जो पैप्समेयर की जांच होती है वो हम लोग हर 3 सालों में करवाते हैं, एंड अगर हम लोग HPV DNA टेस्टिंग करवा रहे हैं तो वो हम लोग हर 5 साल में करवा

0: करवानी चाहिए एवरी 3 ईयर्स?
1: एवरी 3 ईयर्स पैप स्मेयर की जांच हमारी माताओं और बहनों को करवा लेनी चाहिए ताकि सर्वाइकल कैंसर की बीमारी उन तक नहीं आए, और यदि ये बीमारी आ जाती है तो फिर समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। ये इस बीमारी से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। मैडम, ये बीमारी आजकल हर लोगों को देखने को मिल रही है, माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं, इस तरह की गंभीर बीमारी सर्वाइकल कैंसर से वो ग्रसित हो जाते हैं, तो मानसिक तनाव भी हो जाता है, पैसे भी खर्च करते हैं और इलाज बहुत ही सुगमतापूर्वक नहीं हो पाता है। तरह तरह के इलाजें हालांकि विकसित हो गई हैं, चिकित्सा जगत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ये बीमारियाँ नहीं हो, ये हमारी जीवन शैली जो बिगड़ रही है इसके कारण भी ये जिम्मेदार है?
0: इस कारण भी हो सकता है, जैसा हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना। जैसे बहुत सारी औरतें जो होती है वो समझती है कि सिर्फ घर का काम करने से उनका स्वास्थ्य बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। एटलीस्ट दिन में उनको 45 मिनट अपने शरीर को देना होगा, या तो वो कोई भी जिम करे या फिर स्विमिंग या कोई भी एक एक्टिविटी उठा के दिन का एक 45 मिनट अपने शरीर को दे, एंड 5 दिन हफ्ते में अपना दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी चेंजेस की वजह से, क्योंकि बॉडी चेंजेस होगा मतलब हमारा वज़न बढ़ेगा, अगर हम कोई वर्कआउट नहीं करते हमारा वज़न बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारे हॉर्मोन्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे हमें सर्वाइकल कैंसर, बाकी एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये बहुत सारी कैंसर होने की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: इस बीमारी का रोकथाम बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी इसका जो इलाज है वो है जागरूकता। यदि सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और ये बीमारी को रोकने के लिए जो टीका का इजाद किया गया है, यदि वो टीकाएं हमारे माता बहन ले लेती हैं तो इस बीमारी से बहुत हद तक अपना बचाव कर लेती हैं। क्योंकि प्रायः घरों में हमारी माताएं और बहनें होती हैं जो जो आप सिम्टम बता रही हैं, सिम्टम को इग्नोर करने लग जाती हैं, जब समस्याएं अधिक होने लगती है तब वो चिकित्सक तक पहुँचती हैं। ये बीमारी हम तक नहीं पहुँचे, एक स्वस्थ जीवन यापन करें, क्योंकि यही बच्चे यही लड़कियां जब आगे बढ़ेंगी राष्ट्र को एक नई तस्वीर देंगी और राष्ट्र बुलंदियों को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो पूरा राष्ट्र शिक्षित हो जाता है। तो ये बीमारियां नहीं हो, सभी लोग खुशहाल रहे, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। क्या कहेंगे हमारे माता और बहनों को कि इस बीमारी से आप दूरी बनाइए, थोड़ी सी आप अपने अंदर जागरूकता लाइए, और ये जो सिम्टम है ये सिम्टम को आप इग्नोर नहीं करें।
0: अगर सपोज किसी भी औरतों को या लड़कियों को ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने कहा, उसके साथ साथ अगर कोई भी बैक पेन या फिर नीचे से गंदा पानी का आना जो कि बहुत ही बदबूदार, या फिर उसकी वजह से जलन, खुजली, पेशाब में दिक्कत होना, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, अपना इलाज करवाइए, एटलीस्ट अपना इन्वेस्टिगेशन सारे, जैसे पैप्समेयर जैसे इन्वेस्टिगेशन सारे करवाइए। क्योंकि अगर ये एक ऐसी बीमारी है सर्वाइकल कैंसर की जो तुरंत अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाती है, एंड इसका इलाज भी अर्ली स्टेज में संभावित है। अगर समस्या बढ़ जाती है, जैसे स्टेज बढ़ जाता है जिसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें हमें बच्चेदानी, उसके साइट का सारा पैरामेट्रियम, सर्विक्स वगैरह सब कुछ निकालना होता है, एंड कभी कभी ये इलाज इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हमें सीधे रेडिएशन या फिर कीमो देना पड़ जाता है उसमें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जिनकी भी बच्चियाँ हैं जो कि 9 साल से 15 साल की उम्र तक है, या फिर 9 साल के 26 साल की उम्र तक की बच्चियाँ हैं, वो प्लीज़ ये HPV वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी इसको वैक्सीनेशन शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इससे फ्यूचर में उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने की जो बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड जो भी लक्षण मैंने बताए हैं प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, एंड तुरंत अपने चिकित्सक को संपर्क करें
1: जी।
0: अगर किसी महिला को मेंसेस के बीच में या फिर 2 महीनों के बीच में खून आता है, या फिर संबंध के दौरान खून आता है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर बार बार बार बार ब्लीडिंग होती है, जैसे हर 15 दिन 20 दिन में ब्लीडिंग होना, या फिर नीचे से बहुत ज़्यादा गंदा पानी जाना, बदबूदार पानी जाना, या कमर में दर्द या घुटनों में दर्द, तो इस सब लक्षण से तुरंत जागरूक होए और तुरंत अपने चिकित्सक को संपर्क करें।
1: तो इस बीमारी का सबसे बढ़िया रोकथाम है आपकी जागरूकता। और ये जो बीमारी है इसके लिए एक टीका भी आ गया है और ये निःशुल्क टीका हर केंद्र पर उपलब्ध है। इसका टीका आप लगवा सकते हैं और अपना आप बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदिरा डोकनिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ और किड हॉस्पिटल रांची, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं तक।

0: अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जोहार।
1: सर्वाइकल कैंसर बता रहे थे डॉक्टर इंदिरा ढोकनिया, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। साथियों, इसी के साथ हमारा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारा कार्यक्रम है सुबह सुरीली, और इस कार्यक्रम में हम आप सभी को सुनवाएंगे चुनिंदा फिल्मों के कुछ गाने।

0: आप इज्जत फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।
1: जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: और एक बार फिर से हम इन्हीं के स्वर में सुनवा रहे हैं ये गाना।

साथियों, आप फिल्मी गाना सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है और आपके साथ मैं हूं राजेश। कार्यक्रम है सुभाष सुरीली। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं ये गाना।

0: आवो प्यार करें, ये थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

बेटी बेटे, ये थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले सी। कौन अपना कौन पराया, अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं इस फिल्म का ये गाना। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: साथियों, समय अभाव के कारण हम पूरा गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। आप सुन रहे थे सुबह सुरीली प्रोग्राम में पुराने फिल्मों के कुछ गाने, और अब हमारा कार्यक्रम है खुला आकाश। आप सुनेंगे रश्मि श्रीवास्तव की वार्ता, स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण का नया मंत्र।
1: जरा एक पल के लिए सोचिए, यदि एक सुबह हम उठें और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई न दे, यदि नदियों का जल स्वच्छ ना रहे, यदि धरती पर हरियाली की जगह केवल धुआं और सूखा दिखाई दे, तो क्या हमारा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की पहचान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां और जंगल, ये सभी मिलकर जीवन का वह सुंदर संगीत रचते हैं जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन आज यही जैव विविधता संकट में है, और इस संकट का समाधान किसी एक देश, सरकार या संस्था के पास नहीं, बल्कि हम सब के छोटे छोटे प्रयासों में छिपा है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे, स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण का नया मंत्र। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां एक छोटा कदम भी पूरी पृथ्वी के भविष्य को बदल सकता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह असंख्य जीवों का घर है। यहां छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल वृक्ष और बड़े बड़े वन्य जीव तक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति का यही संतुलन पृथ्वी को सुंदर और जीवन योग्य बनाता है।

लेकिन आज यही संतुलन खतरे में दिखाई दे रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमें लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो भविष्य कठिन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जैव विविधता आखिर है क्या। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनके प्राकृतिक आवासों की विविधता। यह केवल जंगलों तक सीमित नहीं है। हमारे खेत, तालाब, नदियां, पर्वत, यहां तक कि हमारे घरों के आसपास के पेड़ पौधे भी जैव विविधता का हिस्सा हैं। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें भोजन, औषधियां, स्वच्छ हवा, पानी और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियां फूलों का परागण करती हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां जीवन देती हैं और जंगल वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो मानव जीवन भी प्रभावित होता है। आज दुनिया भर में जैव विविधता गंभीर संकट का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार हजारों प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अनेक जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने नदियों और मिट्टी को प्रदूषित कर दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का चक्र बदल रहा है, जिसका प्रभाव खेती, पशु पक्षियों और मानव जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी जंगल का कटना या किसी नदी का प्रदूषित होना केवल स्थानीय समस्या है, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता है। जैसे अमेजन के जंगलों को धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे पूरी दुनिया के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार भारत के जंगल और हिमालयी क्षेत्र भी वैश्विक जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि वर्ष 2026 में जैव विविधता संरक्षण का मुख्य संदेश है स्थानीय प्रयास, वैश्विक प्रभाव। यह थीम हमें यह सिखाती है कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमारे घर, मोहल्ले, गांव और शहर से होती है। जब स्थानीय लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमारी संस्कृति ने हमेशा प्रकृति को पूजनीय माना है। आवश्यकता केवल उस भावना को पुनः जागृत करने की है। और यदि हम झारखंड की बात करें तो यहाँ की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के बेहद करीब रही हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय सदियों से जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पूजनीय मानते आए हैं। सरहुल जैसे त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक हैं। गांवों में सरना स्थल केवल धार्मिक स्थान नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पेड़ों को काटने से पहले प्रकृति से अनुमति लेने जैसी परंपराओं का पालन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन दाता है। जब किसी क्षेत्र में जंगल काटे जाते हैं तो वहां केवल हरियाली कम नहीं होती बल्कि मिट्टी का कटाव बढ़ता है, वर्षा कम होती है और जल स्रोत सूखने लगते हैं। जब नदियां प्रदूषित होती हैं तो केवल पानी ही खराब नहीं होता बल्कि मछलियां, पक्षी और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। स्थानीय तालाबों और कुओं का अतिक्रमण या उपेक्षा जल संकट को बढ़ाता है। आज कई शहरों में भूजल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में पानी के लिए संघर्ष बढ़ सकता है। आज शहरों में तेजी से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, पेड़ों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। इससे हीट आइलैंड प्रभावित होता है, यानी शहरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। अधिक बिजली की खपत होती है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और अंततः ऊर्जा संकट के रूप में सामने आती हैं।
ऐसे ही जब

पेड़ों की संख्या कम होती है तब प्रकृति की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी घट जाती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। जंगलों के खत्म होने से वर्षा चक्र प्रभावित होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। इसका प्रभाव केवल स्थानीय किसानों पर नहीं बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ता है। स्थानीय समुदायों के पास प्रकृति संरक्षण का वर्षों पुराना पारंपरिक ज्ञान होता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण यह ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका होती है। यदि कोई एक प्रजाति समाप्त हो जाए तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। जैसे मधुमक्खियां की संख्या कम होने से परागण प्रभावित होगा, परागण कम होने से फसल उत्पादन घटेगा, इसका असर खाद्यान्न और मानव जीवन दोनों पर पड़ेगा। इस प्रकार एक छोटी सी स्थानीय समस्या वैश्विक खाद्य संकट का कारण बन सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले उनके प्रयास से क्या बदलाव आएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। यदि हर परिवार एक पौधा लगाए, हर बच्चा पानी बचाने का संकल्प ले, हर नागरिक प्लास्टिक का उपयोग कम करे, तो करोड़ों छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज कई स्कूलों में बच्चे एक छात्र एक पौधा अभियान चला रहे हैं, कई गांव वर्षा जल संचयन कर रहे हैं, कई शहरों में लोग मिलकर झीलों और तालाबों की सफाई कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जागरूक समाज किसी भी चुनौती का समाधान कर सकता है। भारत में प्रकृति संरक्षण की परंपरा बहुत पुरानी है। पवित्र उपवन यानी सैक्रेड ग्रोव्स इसका सुंदर उदाहरण है। ये ऐसे जंगल होते हैं जिन्हें धार्मिक आस्था से जोड़कर संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में पेड़ काटना वर्जित माना जाता है। ऐसे ही झारखंड का प्रसिद्ध सरहुल एवं कर्मा पर्व प्रकृति और पेड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और प्रकृति से समृद्धि की कामना की जाती है। यह परंपरा बताती है कि आदिवासी संस्कृति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की शिक्षा देती है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक उदाहरण है। गांव की महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर विरोध किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जंगल केवल लकड़ी नहीं बल्कि जीवन का आधार है। ऐसे ही महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में देवराई की परंपरा है। इन जंगलों को देवताओं का निवास मानकर संरक्षित किया जाता है। यहाँ पेड़ काटना और शिकार करना निषिद्ध माना जाता है। भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। इसी परंपरा का एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण है बिश्नोई समाज। राजस्थान में रहने वाला यह समुदाय सदियों से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोई समुदाय विशेष रूप से खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय परंपराएं केवल विरासत नहीं बल्कि भविष्य को बचाने का मार्ग भी हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी, पीपल और बरगद जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। इन परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के किसान पहले मिश्रित खेती और जैविक खाद्य का उपयोग करते थे। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी और अनेक प्रकार की फसलें सुरक्षित रहती थी। यह परंपरा जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत के कई हिस्सों में नदियों, तालाबों और कुओं की पूजा की परंपरा रही है। यह परंपरा हमें जल संरक्षण और स्वच्छता का महत्व समझाती है। साथ ही साथ वन महोत्सव के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश है। आज आधुनिक खेती के कारण पारंपरिक बीज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं,
लेकिन कई स्थानीय समुदाय बीज बैंक बनाकर पुराने बीजों को संरक्षित कर रहे हैं।

0: यह केवल खेती को बचाने का प्रयास नहीं बल्कि जैव विविधता की रक्षा का महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक खेती मिट्टी को सुरक्षित रखती है, रासायनिक प्रदूषण कम करती है और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होती है। आइए हम सब मिलकर विकल्प रहित संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, स्थानीय जीव जंतुओं और पौधों की रक्षा करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, जैव विविधता की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरी भरी और सुरक्षित धरती देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्थानीय प्रयास ही वैश्विक परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया इंतजार करिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन

0: गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता देने वाले बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक

0: शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून एक या दो दिन की देरी से

0: सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty

0: Education is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes. And the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled India First Can Converge with America First writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:23 हुए हैं और अब समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घुसपैठ की जांच के लिए बनी केंद्रीय कमेटी का किया समर्थन। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को बताया अतुलनीय और ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी। आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज का लेंगे लेखा जोखा। राज्य में इबोला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रिम्स में विशेष वार्ड तैयार। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज और कल आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और जमशेदपुर के TSAF क्लाइंबिंग अकादमी के नीलगिरी स्पीड कप में शानदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनसंख्या बदलाव की जांच के लिए बनी केंद्र की हाई लेवल कमेटी की तारीफ की है। उन्होंने इसे देश के हित में बड़ा कदम बताया। गिरिडीह में हमारे संवाददाता से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को अतुलनीय और ऐतिहासिक बताया।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है वो बेमिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है और बहुत ही बेहतर। आज देश को शिखर तक पहुंचाने का काम, और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के रूप में जो विश्व के अलग अलग देशों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, सबसे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है।
3: गिरिडीह के मधुवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। इसमें शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की नाकामियां जनता तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने पानी बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र की हाई लेवल कमेटी का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि संताल परगना में आदिवासी आबादी कम होना चिंताजनक है। उन्होंने इस समिति के गठन को राज्य की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। इस बैठक में गांवों की सड़कों, मनरेगा और पंचायत स्तर की योजनाओं की प्रगति जांची जाएगी। इससे पहले कल शिक्षा और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा ताकि जनता को सीधा लाभ मिले।
5: और जो हाल कैसे चल रहा है, क्या कहाँ से कमी बेसी हो रही है, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ क्या चीज छूट रही है, उन सब चीजों की समीक्षा हो रही है ताकि सभी विभाग, सरकार, आम जनता तक और सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम प्रधान पोखरा व्यक्ति तक सरकार की बातें पहुंचे, यह सुनिश्चित कराना हो।
3: केंद्र सरकार के बाद अब झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी इबोला वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में इसके इलाज के लिए खास तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है। रिम्स में संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए विशेष वार्ड और जरूरी दवाओं का पूरा इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
6: मैंने रिव्यू लिया भी है और डायरेक्शन दिया है सदर हॉस्पिटल में और रिम्स में भी कि कुछ बेड को खाली रखा करो ताकि अगर इस प्रकार की इबोला टाइप का कोई पेशेंट आ जाए तो समुचित उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में युवाओं और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रांची के सीनियर एसपी ने ग्रामीण एसपी और डीएसपी के साथ बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण और बकरीद त्यौहार की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीनियर एसपी ने थानों में रुके हुए मामलों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए, साथ ही त्यौहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े आदेश दिए गए। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली है। गैस चूल्हा मिलने से महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा है और समय की बचत हो रही है।
7: पहले बहुत लकड़ी में खाना बनाते थे, धुआं हुआ होता था, अब फायदा होता है, गैस में बनाते हैं। मोदी जी के पहल से सबको बहुत सुखी है।
8: अब हो गया, गैस हो गया तो आराम हो गया, हम लोग का भी आराम हो गया है।
3: जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में जमशेदपुर में कोल्हान स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और विधायक सरयू राय ने बताया कि सम्मेलन में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई।
9: संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। सबको निर्देश कार्यकर्ता को दिया गया है, गांव स्तर पर और पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर और ऐसे आपका जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना है और फिर हम लोग ऐसे पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे।
3: रांची में सड़कों पर अड्डाबाजी और नशा करने वाले युवकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर सदर एसडीओ कुमार रजत ने लोबाडी से दुर्गा सुरेन चौक तक जांच अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जुटे युवकों को कड़ी चेतावनी दी गई। प्रशासन ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरायकेला के मशहूर छऊगुरु तपन कुमार पटनायक को बड़ी सांस्कृतिक जिम्मेदारी मिली है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सदस्य बनाया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। इस उपलब्धि से राज्य के कला जगत में खुशी का माहौल है। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज और कल आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राज्य में 29 मई से तापमान में कमी आएगी। इससे पहले कल गढ़वा 44 डिग्री पारे के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। जमशेदपुर के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन क्लाइंबिंग अकादमी ने IMF

नीलगिरी स्पीड क्लाइंबिंग कप में शानदार प्रदर्शन किया है। अकादमी के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण समेत कुल 6 पदक जीते हैं। अंडर 17 में सुदर्शन मुर्मू और अंडर 13 वर्ग में नीरज महतो ने सोने का तमगा हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, धार्मिक स्तर पर जनसंख्या का संतुलन क्यों बिगड़ा, जांचेगी हाई लेवल कमेटी। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, सीएम एक्सीलेंस स्कूल की संख्या 5,000 करें। प्रभात खबर के अनुसार, खूंटी के जोबे से निकलकर भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पहुंचे निखिल बारला। दैनिक जागरण लिखता है, कल बकरीद, 131 ईदगाहों व मस्जिदों में होगी नमाज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घुसपैठ की जांच के लिए बनी केंद्रीय कमेटी का किया समर्थन। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को बताया अतुलनीय और ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी। आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज का लेंगे लेखा जोखा। राज्य में इबोला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रिम्स में विशेष वार्ड तैयार। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज और कल आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और जमशेदपुर की टीएसएएफ क्लाइंबिंग अकादमी का नीलगिरी स्पीड कप में शानदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

साथियों, सिलसिला फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है और कार्यक्रम सुन रहे हैं रसरंजन।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आखिरी खत। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं इस फिल्म का ये गाना।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: और कुछ यादें।

थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ साथियों, यह थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी खय्याम ने। आप फिल्मी गाने सुन रहे हैं। एक बार फिर इन्हीं के स्वर में आइए हम आप सभी को सुनवाएं ये गीत, और फिल्म का नाम है

0: आप फिल्मी गाना सुन रहे हैं, अगला गाना हम सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: लोन ऑफर फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट।
0: अब सुनिए प्रेम गीत फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप रसरंजन कार्यक्रम में फिल्में गाना सुन रहे थे। साथियों, ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है और इस वक्त आप सब सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। आज हम आप सभी को सुनवाएंगे राग देसी में आलाप। कलाकार हैं अभिराम पाठक।
1: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे अभिराम पाठक से राग देसी में आलाप और धमार गायन, बोल थे उधो तुम जाए कहाँ। कलाकार अभिराम पाठक और संगीतकार थे पखावज पर रामबचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: मेरे वे 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 110.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है भारत की जनगणना 2027 का भाग दो और भेंट वार्ताकार हैं डायरेक्टर गृह मंत्रालय भारत सरकार झारखंड के प्रभात कुमार। इनसे बातचीत की है कमलेश कुमार मिश्र ने। प्रस्तुति है प्रभु शरण की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम।
1: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज के अंक से पहले वाले अंक में हमने भारत की जनगणना 2027 विषय को लिया और ये कोशिश की कि इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, ये जनगणना 2027 क्या है, किस प्रोसेस में काम हो रहा है, ये होम इन्यूमरेशन क्या है, सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है, उन तमाम विषयों पे हमने चर्चा की, सवालों के जवाब को लिया। और अब बहुत सारे जो अधिकारी अलग अलग क्षेत्र में, जैसा कि हमने अपने पहले कार्यक्रम में बताया था कि 70,000 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं झारखंड में, जो आपके घर जा रहे हैं, इस जनगणना में शामिल हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पे जरूरत हमारी और आपकी है कि हम भी इसके महत्व को समझें और एक सही जानकारी उन तक पहुँचाएं। लेकिन इस दौरान में बहुत सारे लोगों के मन में और भी सवाल है, तो आज हमने अपने इस अंक में फिर से उस विषय को शामिल किया है आपकी वजह से, ताकि आपके मन में और जो सवाल है, जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, उसे हम खत्म करने की कोशिश करें अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ हैं प्रभात कुमार, निदेशक हैं जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड गृह मंत्रालय भारत सरकार से। सबसे पहले प्रभात सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रभात सर, शुरुआत इसी से करते हैं, ये कुछ सवाल आ रहे हैं, भ्रांतियां लोगों के मन में चल रही हैं जब भारत की जनगणना 2027 की बात कर रहे हैं। अभी होम इन्यूमरेशन चल रहा है, 14 जून तक होना है, क्यों ऐसा आ रहा है? आप इस चेयर पे बैठे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं?
2: हमारे अभी तो हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है हम लोगों की जानकारी में। अगर आपके पास कोई प्रश्न आ रहे हो तो आप उससे अवगत करा सकते हैं।
1: जो अमूमन देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, तो उनके मन में पहला ही सवाल ये आ रहा है कि इतने डिटेल्स में क्वेश्चंस किए गए हैं, मैं इतना जानकारी क्यों दूं?
2: देखिए, जनगणना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डोमिसिलियरी मतलब जनांकिकी के आंकड़े एकत्रित करना नहीं है। जनांकिकी से हमारा तात्पर्य होता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना उम्र है, वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, जिसमें कि उनका आवास का प्रकार क्या है, उनके खान पान का क्या है, उनका आवास किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का ईंधन का उपयोग करते हैं, पेयजल का स्रोत क्या है, सिविक एमेनिटीज़ उनके पास किस प्रकार की उपलब्ध हैं। इन सारी जानकारियों को एकत्रित करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार प्रत्येक इलाके को लक्षित करके, अगर किसी इलाके में किसी आधारभूत संरचना की या किसी प्रकार के सुविधा की कमी पाई जाती है, जैसे आप कई प्रकार के प्रश्न देखेंगे कि आपके शौचालय का स्वरूप क्या है, या फिर आप देखेंगे कि आप किस प्रकार के पानी का उपयोग करते हैं, तो सरकार के द्वारा बहुत ही व्यापक पैमाने पे शौचालय निर्माण का कार्य किया गया है। तो अब कहाँ पे किस प्रकार के शौचालय हैं, अगर इसकी मैपिंग हो जाती है तो लोगों को, जिनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं है जिस पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई डिसएडवांटेज है, तो सरकार उनको उनके प्रति स्पेसिफिक स्कीम प्लान कर सकती है। कोई अगर किन्हीं के पास पेयजल का स्रोत घर में उपलब्ध नहीं है, तो सरकार ये प्लान कर सकती है कि उनको कहां से किस प्रकार से घर घर में नल जल पहुंचाया जा सके। तो इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास आंकड़े एकत्रित होने चाहिए, जो कि प्रत्येक गांव वार, जिला वार, क्षेत्र वार आंकड़े इसी कारण एकत्रित किए जाते हैं।
1: मैं इसी में एक सवाल को सर शामिल कर देता हूं, ताकि हमारे श्रोता समझे कि आपका जो 17 नंबर सवाल है जिसमें पेयजल का मुख्य स्रोत लिखा हुआ है, अब इसमें ऑप्शंस हैं कि नल का पानी उपचारित स्रोत से है, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से है, कुआं से है, हैंडपंप से है, ट्यूबवेल या बोरहोल से है, झरना से है, नदी या नहर से है, टैंक तालाब या झील से है, सीलबंद पैकेट या बोतल का पानी है या अन्य स्रोत है। तो ये ऐसे 10 या 11 इसमें ऑप्शंस दिए गए।
2: इस पर विशेषज्ञ समिति प्रश्नों को समेकित करने में काफी भूमिका निभाती है और ये काफी डेलिब्रेशंस के बाद ये प्रश्न भारत सरकार के द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा ये
1: तैयार
2: किए जाते हैं। इसका मुख्य आपने जो प्रश्न पूछा है कि सिर्फ पानी पे इतना क्यों? देखिए, पानी हमारे जीवन का आधार है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% जो आवश्यकता है आहार में भी चाहे किसी भी प्रकार से, शरीर में 70% जल आता है हमारे यहाँ, और वो शुद्ध जल होगा, शुद्ध पेयजल होगा तो हमारी बीमारियां कम होंगी, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी कम होंगी, ये सुविधाएं अच्छी होंगी। सरकार ये जानना चाहती है कि किस विशेष इलाके में या किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष राज्य में, किसी विशेष ग्राम में किस प्रकार से पानी का सप्लाई किसी इंडिविजुअल के यहाँ या किसी ग्रुप के यहाँ होता, ग्रुप परिवारों के समूह के मध्य होता है। जैसे आपने पूछा टैप वाटर, अब टैप वाटर तो पहुँच रहा है लेकिन क्या सरकार की नल जल योजना का उद्देश्य टैप वाटर पहुँचाना नहीं, ट्रीटेड टैप वाटर पहुँचाना है जो कि शुद्ध पेयजल हो। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपके पास जो पानी आ रहा है वो आपको लगता है कि ट्रीटेड है कि नहीं है?
1: नहीं है, यानी इन्हीं सवालों पे चीजें छिपी कि आप तक ये योजना पहुंची या नहीं पहुंची।
2: जी,
1: और नहीं पहुंची तो कुछ करेंगे,
2: फिर आगे इसी के आधार पर आगे योजनाएं
1: बनेंगी
2: लक्षित समूहों को लक्षित करके अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाए या नए प्रकार के इंटरवेंशन डिजाइन किए जाए, नई प्रकार की योजनाएं बनाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की इन योजनाओं को
1: पहुंचाया जाए। सो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सर। कुल इसमें 33 प्रश्न है, 33 प्रश्न में 32 नंबर जो है उसमें लिखता है कार या जीप या वैन। अब लोगों के दिमाग में कि अब हम अपनी कार की डिटेल क्यों दे दे भाई?
2: देखिए, ये सामान्य जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कितने लोग हमारे यहाँ किस प्रकार के वाहन का उपयोग करते हैं आवागमन के लिए। मान लीजिए अभी पेट्रोल की आवश्यकता है, तो अब हमारे पास अगर एक आंकड़ा है कि लगभग किसी इलाके में कितने प्रकार के किस प्रकार के वाहन का उपयोग हो रहा है, तो उससे एक अनुमान लगता है कि वो वाहन कितने चलते होंगे, क्या होंगे, तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ पे किस तरह कितने पेट्रोल का कितने डीजल का अलॉटमेंट करने से सुविधा होगी। सरकार को स्कार्स रिसोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसको बढ़िया से अलॉट कर सकेगी सरकार। इसमें कोई भ्रांति नहीं है कि सरकार कोई किसी के कार का, जीप का, वैन का नंबर लेकर के उनके साथ न मैप कर रही है न उसको मार्क कर रही है। ये डेटा पूरी तरह से ऑप्शनल होता है और गोपनीय होता है। आपने बताया ये डेटा किसी के साथ न शेयर होना है न कुछ होना है। कोई भी आंकड़ा हमेशा जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार का आंकड़ा, किसी भी इंडिविजुअल का आंकड़ा, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से उसको गोपनीय रखा ही जाना है, उसको किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
1: मतलब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि ये
2: वो आंकड़ा लॉक्ड है और इसके आधार पे सरकार अपनी भविष्य की योजनाएं बना सकती है। मैंने बताया कि अगर जहाँ पे बाईसाइकिल या स्कूटर है, जहाँ पे साइकिल ही सिर्फ है किसी विलेज में,
1: जो
2: या मतलब जहाँ पे व्हीकल है नहीं जिस इलाके में, वहाँ पेट्रोल पंप खोलने से क्या फायदा है? वहाँ पे इस तरह का वहाँ पे तेल वगैरह अलॉट करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अगर जहाँ व्हीकल्स का कंसंट्रेशन है और वहाँ पे कम पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे डीजल गाड़ियों की संख्या अधिक है या पेट्रोल गाड़ियों की संख्या अधिक है।

0: किस तरह के वाहन के लिए डीजल कहाँ ज्यादा देना है, कहाँ पेट्रोल ज्यादा देना है, तो भविष्य में इन सब की मैपिंग आसान हो जाती है।
1: बिल्कुल उसी से जुड़ा ही एक जो जैसे मैंने 32 का उसमें जो 31 नंबर का सवाल है वो यही पूछ रहा है कि साइकिल है, स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या मोपेड है। सो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, और मुझे लगता है कि हम सभी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि इसको प्यास लगी है, इसको पानी देना है, या इसको भूख लगी है, इसको खाना देना है, तो ये जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम सही चीज कैसे डिलीवर करेंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट।
0: ये इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, मैंने कहा है हर इंडिविजुअल का आंकड़ा गोपनीय रहना है। ये एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन डिजाइन होगा, उस इलाके में किस तरह की योजनाओं की आवश्यकता है ये इसके आधार पर।
1: सो आपने लोगों को भी पहले जो हमने पहला अंक किया, आपसे भी हमारी बात हुई थी प्रोग्राम से पहले, और उसमें दो जो आपके यहाँ से झारखंड से नेशनल प्रशिक्षक, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई। सो लोग जा रहे हैं और लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहते हैं सर, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आप इन चीजों को तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप एक एक चीजों को ध्यान में रख रहे हैं।
0: प्रगणक जब आपसे अप्रोच करते हैं, आपके घर पे जाते हैं, उनके साथ पूरी की पूरी जानकारी ईमानदारी के साथ शेयर की जाए, ताकि सरकार जो भी जिस वर्ग के लिए भी जिस धर्म के लिए भी योजनाएं बनाना चाहती है, चाहे जिस प्रकार की भी योजनाएं हों, उसमें सरकार को प्रॉपर डेटा मिल सके। डेटा अगर सही एकत्रित होगा तभी सरकार सही प्रकार की योजनाएं बना करके उसको समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचा पाएगी।
1: एक सवाल सर मैं चाहूंगा उसको मैं शामिल करूं, जो मुझे भी हाल में सुनने को भी मिला, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, सो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सर SIR की टीम चल रही है इलेक्शन कमीशन से, उनके कुछ लोग जा रहे हैं, कभी कोई BLO जा रहा है, और इधर सर आपका होम इनोमरेशन चल रहा है, अब उसमें लोग जा रहे हैं सर, इसमें लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं कि कल ही तो वो आए थे, फिर आप क्यों आ गए सर, इस पे थोड़ा सा आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए जनगणना दशक में एक बार होती है, और इस बार तो ये 16 साल के बाद हो रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, और SIR इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, जो कि वोटर्स का मैपिंग हो रहा है, अभी वोटर्स के मैपिंग का काम हो रहा है, और ये 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं, ये उनको लक्षित करके ये चलाया जा रहा है बूथ वाइज, उस बूथ के कहां पर वोटर्स हैं उनको मैप करना है। जनगणना हर किसी की होनी है, और उनके द्वारा दिए गए आंकड़े भविष्य में देश के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
1: रोल निभाने वाले
0: हैं, इसलिए जनगणना के कार्य में लोगों को सहयोग अधिकाधिक करना चाहिए।
1: तो कोइंसिडेंस है कि अभी ही उनकी भी चल रही है, तो टीम कहीं पे क्लैश कर जा रही है। हाँ। एक ही घर पे
0: मेयरली कोइंसिडेंस।
1: तो आपको इस बात के लिए भी जागरूक रहना है, सो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें, आप इसमें भ्रम की स्थिति में ना रहें। SIR की टीम अपनी काम कर रही है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है, जनगणना की टीम अपनी काम कर रही है, और ये इसमें भाग लेना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उस लास्ट बार भी पहले प्रोग्राम में भी इसको शामिल किया था, आपसे भी पूछूंगा कि हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक प्राउड टाइम है, सो आप इसमें शामिल होते हैं तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड।
0: हाँ, हमारा मोटो ही है जनगणना से जन कल्याण, इस बार का मोटो ही है जनगणना से जन कल्याण, और विकास और प्रगति ये दोनों हमारे मस्कट्स हैं, तो उद्देश्य है देश का विकास और प्रगति और जन कल्याण।
1: क्या बात है, और इस विकास में आप भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं एक लीड करते हुए। सो आपके लिए क्या चुनौती होती है, मैं इस सवाल को भी ले लूं, कि इतने 70,000 से अधिक कर्मचारियों को हैंडल करना, इतनी सारी सामग्रियां पहुंचाना जिलों में, गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, आपके लिए क्या चुनौती होती है?
0: देखिए इसके लिए तो राज्य स्तर से जिला स्तर तक, राज्य में स्टेट नोडल डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिले में उपायुक्त, हर जिले के उपायुक्त, म्यूनिसिपैलिटीज में म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जो हैं वो अपने अपने यहाँ के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, और वो वहाँ पे पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हैं। उनके नीचे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो कि इस बात में ट्रेंड ही है कि सर विभिन्न प्रकार के स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं, तो वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते हैं। हम लोगों का काम है सिर्फ उसको सुपरवाइज करना, और हम लोग उसको, ये स्मूथली अभी चल रहा है, अभी तक तो सेंसस का काम झारखंड में।
1: रिव्यू भी करते हैं आप? हाँ, रिव्यू करते हैं
0: तो हर दिन इसकी रिव्यू होती है, और सारा चुप जो है वो ऐप और पोर्टल से जुड़ा हुआ है, तो डैशबोर्ड पे वो सब चीज लाइव रहता है।
1: प्रभात सर, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बात की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बात करने के बाद, जबकि आज ये दूसरा अंक हम कर रहे हैं, तो लोगों के मन में अब जो भी भ्रांति होगी अब जरूर खत्म होगा। भ्रमित नहीं रहना है, आप बस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाएं, जो हमारा कार्यक्रम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सारे आपके जितने भी सुनने वाले हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, जहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। अभी हमने बात की प्रभात सर से, और अब कार्यक्रम में हमारे साथ संजय कुमार हैं, अपर नगर आयुक्त हैं रांची नगर निगम रांची के, साथ ही ये अभी शहर जनगणना पदाधिकारी हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है। जब हम इस जनगणना की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये दो तरीकों से होता है, एक शहरी इलाके में, दूसरा ग्रामीण इलाका। जो शहरी इलाका है वहां पे जिम्मेदारी RMC की बनती है, इनको शामिल हमने किया है कार्यक्रम में। अब इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का फील्ड पे इन्हें सामना करना पड़ रहा है, और किस तरीके से अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करेंगे और रांची की, तो वहां पे लगभग 2,45,000 घर हैं। सर कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: संजय सर। पहला सवाल, क्योंकि जब हम भारत की जनगणना 2027 की बात कर रहे हैं, और झारखंड में भी आपका होम इनोमरेशन चल रहा है, 16 मई से शुरू हुआ 14 जून तक चलना है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब रांची नगर निगम की बात करते हैं, आप जब फील्ड पे जा रहे हैं जनगणना के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
2: देखिए, हम लोग शहरी क्षेत्र का जनगणना का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 53 वार्ड है RMC में, और RMC में 53 वार्ड में कुछ HLB हमारे हैं वो 2022 है, तो इतने इनोमिनेटर की नियुक्ति पहली चुनौती थी हमारे पास, जो उसमें शिक्षक हैं, RMC के कर्मी हैं, महिला विकास विभाग के कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, तो इनको लाना और इनको एज ए प्रगणक ट्रेनिंग देना, सारी बातों को बताना और फील्ड पे भेजना, ये मेरी पहली चुनौती थी। इसके साथ हम लोगों ने इनके साथ सुपरवाइजर को भी टैग किया है, तो वो काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन वो अच्छा खासा कठिनतम वर्क था जिसको हम लोगों ने पूरा किया, और इनको ट्रेनिंग पूरी तरीके से हम लोगों ने दिया ताकि फील्ड में इनको कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद अब फील्ड का कार्य जो 16 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें हम लोग को कुछ परेशानियां आ रही हैं, और जैसे लोग जा रहे हैं तो हमारे जो भी घर के ऑनर हैं वो अपनी पूरी जानकारी देने में थोड़ा हिचक रहे हैं, बिकॉज उनको तुरंत अभी SAR से संबंधित भी जानकारी देनी पड़ी है, सेंसस से संबंधित भी जानकारी अलग, इनका क्वेश्चन अलग रहता है, SAR का क्वेश्चन अलग रहता है, तो थोड़ा उन लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई इतनी सारी जानकारी हमसे क्यों मांगी जा रही है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से होर्डिंग्स लगा के लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है कि भाई देखिए ये कठिनतम प्रशासनिक वर्क है और इसमें सभी सहभागिता आवश्यक है सभी नागरिकों का, और ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है देश के लिए, तो आप ये जानकारी दें, ये आपको गोपनीय रखा जाएगा, किसी तरह का कोई भी मिसयूज इसका नहीं किया जाएगा। तो पहला है ये कि वो जानकारी नहीं दे रहे थे, अब धीरे धीरे रास्ते पे लोग आ रहे हैं और अब हमको तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्यों की ओर। दूसरा है कि कोई घर पे अगर कोई रेंटर रह रहे हैं तो जनरली लैंड ऑनर या जो मकान मालिक है वो भी अपने रेंटर के विषय में जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं,
1: नहीं देना चाहते हैं।
2: तो ये भी एक हमारे लिए एक स्थिति ऐसी है जहाँ पे हम लोगों को समझाना पड़ रहा है, और हम आपके माध्यम से लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो रेंटर रह रहे हैं वो कृपया अपनी जानकारी दें, आपकी जानकारी बिल्कुल ही सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, एक अन्य नागरिक की तरह आप भी भारत के एक नागरिक हैं, इसलिए आपको जानकारी देनी चाहिए।
1: सर यहाँ पे भी वो भ्रम वाली स्थिति बन रही है, आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पे 10 लोग रेंट पे रहते हैं तो डिटेल आ जाएगा, कुछ टैक्सेस का चक्कर नहीं हो जाए, कुछ ये फील कर रहे हैं कि वो दिमाग में कुछ चल रहा है?
2: जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अगर कोई किसी तरह का कोई भी सूचना को छिपाना चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी सोच है जिसके कारण वो रुक रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये रेंट ना आ रहा है, कितना कैलकुलेशन इनकम टैक्स का हो सकता है, सब बातें, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कितने व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं सिर्फ इसकी जानकारी हमको चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया ये जानकारी को न छिपाएं, आपके घर में कोई रेंटर रह रहे हैं तो उसकी सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। दूसरा है कि वो अपना वो करेंट डिटेल्स वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अपना वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो उस संबंध में भी लोगों को समझाया जा रहा है और उसमें भी

0: कि हम लोगों ने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का एक बैठक भी यहाँ बुलाया था और सबको पूर्व में ही समझा दिया है कि भाई ये कार्य आपके यहाँ होना है, हमारे इल्यूमिनेटर और हमारे सुपरवाइजर आपके यहाँ जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद गया था बहुत सारे अपार्टमेंट में और वहाँ के सेक्रेटरी और जो भी वहाँ पे पदधारक है कमेटी के उनको बुला के मैंने समझाया और उन लोगों ने हालांकि काफी कोऑपरेट किया और ये प्रक्रिया अब अच्छी ढंग से चल रही है। लेकिन शुरू में लोगों ने हेजिटेट किया और उन्होंने इनको एंट्री करने से मना किया, लेकिन अब ये समस्या धीरे धीरे कम हो गई।
1: सर, हमने अपने पहले कार्यक्रम में जब हम भारत की जनगणना 2027 विषय पर जब पहला अपना अंक हमने दिया था तो उसमें हमने ये भी बताया कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है और सबके सहयोग से पूरी होगी। तो जब रांची नगर निगम की बात करते हैं तो आपने कहा कि पहले से अब चीजें स्मूथ हो रही है, तो आप प्रचार प्रसार का क्या तरीका अपना रहे हैं, कैसे लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे? जो बात हम कह रहे हैं आज भी एक माध्यम है, आकाशवाणी के माध्यम से आपकी बात को रखा जा रहा है, लेकिन और कौन कौन से माध्यम को आप अपना रहे हैं?
0: देखिए, प्रचार प्रसार में हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य का जिंगल्स के द्वारा हम लोगों का प्रचार प्रसार किया गया। जितने हमारी वाहन हैं, जो हम लोग जो कचरा उठाते हैं डोर टू डोर जाके, सभी वाहनों में हम लोगों ने जिंगल्स लगाया और उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा हम लोग होर्डिंग्स, डिजिटल होर्डिंग्स के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मेन स्थल पे जो होर्डिंग्स है वहाँ पे हम लोगों ने जनगणना से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है उसको होर्डिंग के माध्यम से पब्लिक के बीच हम लोग ले जा रहे हैं और डिजिटल होर्डिंग जहाँ जहाँ डिजिटल हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं वहाँ भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग उसको करें। इसके अलावा मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों को सूचित किया है कि आवश्यक क्या क्या जानकारी आपसे पूछी जाएगी, क्या क्या जानकारी आपको उपलब्ध कराना है और ये सभी जानकारी आपके लिए सेफ है, किसी तरह डरने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है न्यूज़पेपर के माध्यम से।
1: सर, ये तो आपके प्रयास है, लेकिन मैं स्पेशली आपको, आपकी टीम को, आरएमसी को बहुत बधाई दिल से देना चाहूंगा कि इतनी गर्मी में आपके अभी इस जनगणना के लिए 70,000 से अधिक लोग अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं और हिम्मत के साथ जा रहे हैं। जिस धूप में हम घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं वहां पे इन्यूमरेटर जा रहे हैं, रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं। सो इस पे भी आपने ध्यान रखा है?
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप देख रहे होंगे गर्मी काफी बढ़ गई है और बहुत ही मुश्किल है निकलना। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे इन्वेटर, हमारे सुपरवाइजर, हमारे चार्ज अफसर, हमारे अन अफसर, आरएमसी के भी जो अफसर है लगातार फील्ड में है, तो हम लोगों ने अपने इन्वेटर और सुपरवाइजर के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि भाई उनको कम से कम ORS पैकेट्स और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था हम लोगों ने उनके लिए की है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखिए चिकित्सीय दल का भी गठन किया है। हम लोग सिविल सर्जन के साथ भी संपर्क में है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके डॉक्टर का भी यूज करूंगा। इसके लिए हम लोग हमारे यहाँ जितने अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं 25 हैं हमारे यहाँ, हमारे सामुदायिक भवन, हमारे वार्ड कार्यालय सभी में हम लोगों ने इन सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा हमारे पास एक मोबाइल गाड़ी भी हमने रखी है जिसमें ORS पैकेट और फर्स्ट एड किट उसमें रखा रहता है। कहीं भी फोन आने पे हमारे जैसे चार्ज अफसर को किसी ने फोन कर दिया कि फलाना की तबीयत खराब है इन्यूमेटर को, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिक जो चीज उनको तुरंत हम लोग उपलब्ध, ताकि एक मोटिवेशन उनका बना रहे।
1: बिल्कुल।
0: और उनको ये फील हो कि पूरा आरएमसी एक परिवार है, जितने यहाँ पे स्टाफ है सभी लोग मिल के आपके साथ खड़े हैं।
1: निश्चित तौर पे ये भी एक फाइटर है, हम हमेशा फाइटर की बात करते हैं, ये भी एक फाइटर है और हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में अब भी हम संजय सर से बात कर रहे हैं और संजय सर बता रहे कि किस तरीके से फील्ड में चुनौतियां आ रही हैं। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। सर, चीजें बदल रही है क्योंकि 16 तारीख से शुरू हुआ और ये 14 जून तक होना है, चीजें बदली है, चीजें स्मूथ हो रही है?
0: ये बिल्कुल, शुरू में फर्स्ट 2-3 दिन में काफी परेशानी आ रही थी, अब धीरे धीरे चीजें स्मूथ हो रही है क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी लोगों के पास जानकारियां पहुंच रही है और काफी कोऑपरेशन अब हमको मिल रहा है।
1: संजय सर, एक सवाल को मैं शामिल करना चाहूंगा। सो क्योंकि अलग अलग जगह से इन्यूमरेटर है, आपने बताया कोई शिक्षक है, कोई अलग कार्य से आया है, कोई अलग विभाग से आया है और वो दूर दूर से भी है, कोई हो सकता है बुंडू से हो, कोई तमाड़ से हो, कोई खूटी से हो, कैसे चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एरिया नया, जगह नया, लोग नए, कैसे मैनेज हो रहा है?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है और शुरू में परेशानियां हुई क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स आए हैं मोस्टली टीचर्स ग्रामीण एरिया से डिपुटेशन हुआ हमारे यहाँ, उनको हमको प्रगणक बनाना पड़ा है या सुपरवाइजर बनना पड़ा। तो जैसे बुंडू और तमाड़ से लोग आ रहे हैं तो उनको इस क्षेत्र का आइडिया बहुत नहीं है, तो उन्होंने जो मैप हम लोगों ने बना के उनको दिया तो उस मैप के अनुसार वो ठीक से भ्रमण कर सके, ठीक से लोगों के बीच पहुंच सके, तो उनको सहायता करने के लिए हम लोगों ने यह किया कि हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, जैसे कि स्वच्छता से रिलेटेड जो सुपरवाइजर्स हैं जो दिन भर फील्ड में रहते हैं, उनके साथ मैंने उनको टैग कर दिया है। अब उनका ये काम है कि दूर से आने वाले जो भी इनोवेटर है सुपरवाइजर, उनके साथ उनको बता दें कि उनका एरिया कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ तक उनका सीमा है, तो ये चीज उनको बता रहे हैं।

0: कि मैप क्षेत्र का वो भ्रमण ठीक से कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हर एक चार वार्डो पे एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की है जो ये देख रहे हैं, वो ओबी एनुमिनेटर सुपरवाइजर से लगातार फोन से बात कर रहे हैं, खुद भी फील्ड में घूम रहे हैं ताकि जो समस्या आ रही है उसको नोट कर रहे हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर बैठ के उसका कैसे निदान निकले, हम लोग तुरंत डिसीजन लेके फिर अगले दिन उन पे मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो जाने के कारण कार्य की प्रगति का मॉनिटरिंग करने में हमको काफी सुविधा हो रही है।
1: सर क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में अभी आपको सुन रहे, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप?
0: मेरा अपील है कि भाई हमारे इतने प्रगणक पर्यवेक्षक इतनी कठिन परिस्थिति में, इतनी गर्मी में भी आपके पास पहुंच रहे हैं, आपके लिए पहुंच रहे हैं, देश के लिए पहुंच रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करता हूं कि कृपया आप प्रगणक या पर्यवेक्षक को पूर्ण सहयोग करें, अपनी जानकारी उनको उपलब्ध कराएं। और आपकी जानकारी सुरक्षित है, आपको पहले ही पता चल चुका है, तो किसी तरह का कोई हेजिटेशन न रखें।
1: संजय सर, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए और बढ़ते कदम कार्यक्रम की श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी नागरिकों को जो ऐसे सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में आपने सबसे पहले सुना प्रभात कुमार को, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड, और फिर हमारे साथ जुड़े संजय कुमार, अपर नगर आयुक्त रांची नगर निगम रांची, जो कि शहर जनगणना पदाधिकारी भी है, और इन्होंने वो तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से काम हो रहा है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिस तरीके से हमने कहा कि आरएमसी शहरी क्षेत्र को देख रहा है, तो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे जिला प्रशासन अपने तरीके से हैंडल कर रहा है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो रही है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि ये जो भ्रम की स्थिति है, ये जो भ्रमित सवाल है, उसे हम भूल जाएं। ये सिर्फ जनगणना के आंकड़े हैं जो हमारे विकास के लिए हैं, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राज्य के प्रगति के लिए हैं। साथ ही एक टोल फ्री नंबर है, आप इसे राइट डाउन कर लें, 1855। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1855। ये सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है, आप सीधे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, सूत्रधार थे कमलेश कुमार मिश्र और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

श्रोता, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर में यानी 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची, और अपनी पसंद के गीत आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में 11:30 पर, और 12 बजे का वक्त होता है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वस्थ नारी खुशहाल परिवार, और भेंट वार्ता भी आप सुनेंगे महिलाओं की सुरक्षा और समाज की भूमिका। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12:30 पर, और 1:20 पर अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे सिद्धेश्वरी देवी से खमाज में ठुमरी। सुगम संगीत में आप सुनेंगे चंद गजलें। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नॉनस्टॉप अंताक्षरी, इसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीत 3 बजे से, और रांची मेलोडीज 3:30 पर 4 बजे आप सुनेंगे बढ़ते कदम कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 4:35 पर सांझ सरगम। तो ये थे हमारे आज शाम तक प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त रचना। स्वीकार करें मेरा नमस्कार जोहार। जी हां श्रोताओं, कैसे हैं आप? वैसे इस गर्मी में बुरा हाल तो हो ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपकी जो है मंगल कामना की कामना करते हैं कि आप कुशल मंगल रहें और इस गर्मी के मौसम में अपने आप को बचा कर रखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। समय खत्म होने से पहले हर पल को जी लें, नहीं तो बाद में याद आता है कि समय ही नहीं है। जी हाँ, अक्सर हम भविष्य की चिंता में अपने आज को अच्छे से नहीं जी पाते हैं। यह हम सब के साथ होता है। हम हमेशा कल के बारे में सोचते हैं, कल के लिए बचाते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा नहीं करते हैं। अरे हमेशा ये कहते रहते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। इसीलिए जिस पल में आपकी जो इच्छा हो उसे पूरा कर ले, क्या पता कल होना हो

जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि कल की फिक्र में हम अपना आज क्यों खराब करें, कल क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम के बारे में हम क्या कहें, गर्मी से तो सबका बुरा हाल ही है। और मौसम में आपको बताएं कि पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर शेष हिस्सों के लिए राहत भरा संदेश ये है कि अगले 2 दिनों बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो थोड़ी गर्मी से राहत हम सभी को मिलने की संभावना है। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताला, गिरिडीह, साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग रांची जैसे कि रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, धनबाद, बोकारो, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के बहने और बिजली गिरने को लेकर जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और पूरे राज्य में स्थिति 1 जून तक बनी रहेगी ऐसा कहा जा रहा है, और इसे लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम हिस्से में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है और सबसे अधिक वर्षापात 19.5 मिलीमीटर पूर्वी सिंहभूम के दरीसाई में रिकॉर्ड किया गया। और राजधानी रांची का अधिकतम तापमान कल 39.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और मौसम विज्ञान ने यह भी बताया है कि अगले 2 दिनों तक यानी कि आज 27 और 28 मई के बीच अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3 दिनों में यानी 29, 30 मई और 1 जून को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। जैसे कि मैंने कहा है आपको कि 2 से 3 दिनों में मौसम में जो है अभी थोड़ी गिरावट हो सकती है, तो थोड़ी सी गर्मी से राहत हो सकती है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप अपना ज़रूर ख्याल रखें इस मौसम में। मौसम जो है वो बहुत इस समय कातिल बना हुआ है।

0: नागरिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: संदेश के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम जोहार रांची में। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन किसी एक दिन की बड़ी घटना इतिहास में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आज 27 मई का ये दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों की तरह ही एक साधारण सा 24 घंटे का दिन ही है, लेकिन इस दिन के नाम पर इतिहास की कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। तो आइए जानते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन क्या खास घटनाएं घटी थी देश और विदेश में। तो 1703 में आज ही के दिन रूस के जार पीटर महान ने नेवा नदी में के मुहाने पर सेंट पीटर्सबर्ग शहर की नींव रखी थी और रूस के इतिहास में इस शहर का खास महत्व है। 1895 में 27 मई के दिन ही ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एक्रस ने फिल्म कैमरा प्रोजेक्टर का पेटेंट करवाया था। 27 मई 1937 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट नामक दुनिया के एक सबसे खूबसूरत पुल का उद्घाटन हुआ था। आज ही के दिन यानी 27 मई 1951 को मुंबई में तारापोर वाला मछलीघर का उद्घाटन हुआ था और आज ये मछलियों के एक बड़े संग्रह के तौर पर विख्यात है। यहाँ देश दुनिया की बहुत सी प्रजातियों की मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव रखे गए हैं। 1957 में आज के दिन देश में कॉपीराइट अधिनियम पारित किया गया था, जिसे 21 जनवरी 1958 से लागू किया गया और 1997 में केवल महिलाओं का पहला दल उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा। दल में 20 ब्रिटिश महिलाएं शामिल थीं। 27 मई 1994 में रूसी मूल के उपन्यासकार अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की अमेरिका में 20 साल तक निर्वासन में रहने के बाद रूस में घर वापसी हुई थी। 1999 में आज ही के दिन बोत्सवाना की सुंदरी पुले क्वेलागोव वर्ष 1999 की मिस यूनिवर्स चुनी गई थी और 2010 में आज ही के दिन यानी 27 मई को ही भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है। और 2011 में आज ही के दिन ग्लोबल इंटरनेट सर्च इंजन गूगल भारतीय शहरों की हर गली नुक्कड़ की तस्वीरें इंटरनेट पर दिखाने जा रहा था और गूगल के जरिए जहां अब तक आप धरती के विभिन्न हिस्सों की सैटेलाइट तस्वीरें देख सकते थे, वहीं गूगल के नए फीचर स्ट्रीट व्यू से गली नुक्कड़ तक को देखा जा सकेगा। इतिहास में हम बातें करेंगे और भी, लेकिन सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

हम इतिहास की बातें कर रहे हैं और इतिहास में अब बात करते हैं उनकी जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो 1931 में आज ही के दिन प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ONV कुरुप का जन्म हुआ था। हेमंत जोशी का जन्म भी आज ही के दिन यानी 27 मई 1954 को हुआ था, जो कि एक हिंदी कवि, पत्रकार एवं पत्रकारिता के प्राध्यापक थे। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली का जन्म भी आज ही के दिन यानी 27 मई 2003 को हुआ था। और रवि शास्त्री का जन्म आज ही के दिन 1962 में हुआ था। उनका पूरा नाम रविशंकर जयद्रथ शास्त्री है। भारतीय टीम में करियर की शुरुआत स्पिन गेंदबाज के तौर पर की थी उन्होंने और आगे चलकर बेहतरीन सलामी बल्लेबाज वो बने थे। 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम के वे अहम सदस्य भी थे। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें चैंपियंस ऑफ चैंपियंस चुना गया था। उन्होंने टेस्ट और वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की है और 2017 से 2021 के दौरान रवि शास्त्री ने भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर भारतीय टीम में जीत की भूख भी पैदा की है। तो इन सबको हम जन्मदिन की बधाई देते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार रांची, और जोहार रांची में अभी बात चल रही है इतिहास की, और अब बात उनकी जिन्होंने आज ही के दिन हमें छोड़कर चले गए थे। तो 27 मई 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन हुआ था। 1964 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। भारतीय मराठी लेखकों में से एक लक्ष्मण शास्त्री जोशी का निधन भी आज के दिन 27 मई 1994 को हुआ था। और अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जाबाज सैनिक हंगपंग दादा 27 मई 2016 को शहीद हुए थे। वीरगति प्राप्त करने से पहले उन्होंने कश्मीर के समसाबाड़ी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 हथियारबंद आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। इस शौर्य के लिए 15 अगस्त 2016 को उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।

जोहराची में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की। जी हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो आज हम बात भी उसी के सिलसिले में करेंगे कि इतनी हीट वेव में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। बढ़ते पारे के साथ अगले कुछ हफ्ते सेहत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसे मामले अधिक बढ़ रहे हैं। और इस तेज़ गर्मी और धूप से किस तरह से बचें और क्या समस्याएं इसमें आती हैं, इसी पर हम आपसे बातचीत करेंगे आज। तो देश के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में इस समय लू और प्रचंड गर्मी जो है अपना कहर बरपा रही है। और मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अगले कुछ हफ्ते हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं को लेकर भी हर स्तर पर सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। गर्मी के चलते खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले और सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना कर रहे लोगों को इस समय अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है। इस समय लगातार गर्म वातावरण या धूप में रहने से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएँ हो सकती हैं और इस मामले में बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी कर लोगों से तेज़ धूप में नहीं जाने, खासकर दोपहर के समय में सतर्कता बढ़ाने के लिए भी जो है वो सावधानी जानकारी बताई गई थी। और साथ ही गर्म मौसम में आप ढीले सूती कपड़े पहने और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त द्रव लेते रहें, ये कुछ सुझाव हैं। हीट एग्जॉशन से कैसे बचे, तो गर्मी के चलते अगर थकान आपको हो रही है और तो कुछ लोग इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं, जबकि इस तरह की असहजता गर्मी के कारण शरीर के बिगड़े संतुलन के वजह से भी हो सकती है। इससे तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिससे हार्ट, किडनी, ब्रेन जैसे अंगों पर दबाव बढ़ता है। और गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वयं के स्तर पर बचाव करें और लक्षणों को गंभीर होने से पहले ही इसे रोक लें। हीट वेव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इंसान का शरीर जो है बढ़े हुए तापमान का सामना पसीने और रक्त संचार से करता है। हालांकि बहुत अधिक तापमान होने पर ये सिस्टम फेल होने लगता है, लेकिन जिससे कि समस्या बढ़ जाती है और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत भी आ सकती है। दरअसल शरीर का तापमान कंट्रोल करने के प्रयास में ही हार्ट रेट बढ़ता है और शरीर को गर्मी से राहत देने के लिए अधिक पसीना आने लगता है। पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इन समस्याओं के चलते ही हार्ट, किडनी जैसे अंगों पर दबाव बढ़ता है। और इस मौसम में यानी कि इतनी तेज़ गर्मी में हमें खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तेज़ गर्मी या धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सिर को ढकें और साथ में पानी की बॉटल आप ज़रूर लेकर चलें। एसी से तुरंत गर्मी में या धूप से सीधे एसी में जाने से बचें। शरीर को तापमान के साथ थोड़ा तालमेल बैठाने का मौका भी दें। ORS हमेशा अपने साथ रखें और इस समय पुदीना, मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन जो है वो अधिक लाभकारी रहता है। खान पान में हमें थोड़ी सतर्कता रखनी पड़ेगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि भोजन जो है वो जल्दी पचने वाला हो और सीमित मात्रा में हो। गरिष्ठ भोजन यानी कि भारी भोजन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। हमेशा आप ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन जो है वो आपकी मुसीबतें बढ़ा सकता है। और इस समय कच्चे आम का पन्ना, जलजीरा, नींबू पानी का प्रयोग जो है वो काफ़ी लाभदायक होता है। फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीने के बजाय घड़े का पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप गर्मी से आ रहे हैं यानी बाहर से आ रहे हैं या बहुत गर्मी से आ रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत फ्रिज का बहुत ठंडा पानी आप ना पिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो गर्मी से होने वाली समस्याएं जो होती हैं वो होती हैं जैसे कि हीट क्रैम्प्स यानी पसीना आने के दौरान नमक और तरल पदार्थों की कमी होने से मांसपेशियों में हल्का दर्द या ऐंठन महसूस होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि गर्म मौसम में व्यायाम या अन्य शारीरिक गतिविधि करने से ये समस्या बढ़ जाती है। हीट एग्रेशन यानी कि लंबे समय तक गर्मी या धूप में रहने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान या चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और डिहाइड्रेशन हो तो इसे हमें चेतावनी समझना चाहिए, जैसे कि मुंह सूखना, थकान होना, यूरिन कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, गंभीर स्थिति में किडनी की समस्या भी होना।
गर्मी की समस्या के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे कि तेजी से पसीना आना, कमजोरी और थकान, चक्कर आना या जी मचलना, सिर दर्द और दिल की धड़कन बढ़ जाना। समय पर उपचार नहीं मिलने पर हीट स्ट्रोक की आशंका भी होती है, और बढ़ते तापमान में जब शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो उसे हीट स्ट्रोक माना जाता है। इसके जो कुछ चेतावनी भरे संकेत जो होते हैं वो ये होते हैं कि ये गफलत या भटकाव होना, अचेत हो जाना, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गर्म सूखी त्वचा या पसीना बंद हो जाना, और अगर ऐसा हो रहा है तो इस ऐसे उसमें तुरंत आपको मेडिकल सहायता लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस हीट वेव में आपको किन खास बातों का ख्याल रखना है, क्या करना है, तो वो है कि बीमार जो घर में बीमार हैं तो उनका आपको ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे कि हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ है, अस्थमा है, किडनी जैसी बीमारियां हैं, तो उन्हें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है इस मौसम में। रात में तापमान अधिक होने से नींद जो है वो आपकी बाधित होती है, जिससे दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और गर्मी के चलते तनाव, एंजाइटी और असहजता भी महसूस होती है। तो इस मौसम में आप अपना ख्याल रखें, हीट वेव बहुत ज़्यादा है तो आपको बाहर आप कम से कम निकलें, अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर लेकर जाएं, छतरी या अपने सिर को ढकें, और ज़्यादातर तो जो इस समय काम करने जाते हैं बाहर उनके लिए ये चीज़ें हैं, वो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। तो इस प्रकार से आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं इन सावधानियों को अपना कर।

अब श्रोताओं, आपसे एक जानकारी साझा करना चाहते हैं कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत केंद्र को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है और ये व्यवस्था जो है बुधवार यानी आज से लागू होगी। केंद्र अब 3 पालियों में संचालित होगा। ये केंद्र प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक लगातार 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इस संबंध में निगम मुख्यालय ने आवश्यक कार्यालय आदेश भी जारी कर दिया है और इस आदेश में बताया गया है कि केंद्र के सुचारू संचालन के लिए 3 पालियों में एक प्रबंधक, एक सपोर्टिंग स्टाफ और एक कंप्यूटर परिचालक की नियुक्ति की गई है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहले से जारी मोबाइल नंबर 9031110120 के अलावा 2 अतिरिक्त मोबाइल नंबर 9031110118 और 9031110119 भी जारी किए गए हैं और इस नंबरों पर उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने और उनके जल्दी समाधान पाने में भी उन्हें आसानी होगी।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हम कहाँ आपको ले जा रहे हैं घूमने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और सभी प्लान कर भी रहे होंगे कहीं घूमने जाने का, तो आज हम आपको सैर कराएंगे हर्षिल घाटी की, जो कि उत्तरकाशी में है। समुद्र तल से 7,860 फीट की ऊंचाई पर स्थित 20 किलोमीटर तक फैली हर्षिल घाटी को यूं ही भारत का स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले में स्थित ये घाटी तन मन को हर्षित करने वाली है। भागीरथी नदी के किनारे हिमालय की गगन चूमती सुदर्शन बंदरपुर सुमेरु और श्रीकंठ चोटियों की गोद में बसा हर्षिल पर्यटन के लिहाज से विश्व प्रसिद्ध है। आपको ये भी बता दें कि 1984 में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के अधिकांश दृश्य हर्षिल घाटी और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही फिल्माए गए थे। इसके निकट जिस झरने में फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी का दृश्य फिल्माया गया था, उसे अब मंदाकिनी झरने के नाम से जाना जाता है। शीतकाल के दौरान हर्षिल क्षेत्र में रात के समय तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है और 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक ये क्षेत्र बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भी इस दौरान सबसे अधिक पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। हर्षिल की खोज एवं इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। फ्रेडरिक को हर्षिल का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए ऋषिकेश से चंबा होते हुए उत्तरकाशी तक 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और देहरादून से सुवाखोली होते हुए भी दूरी 140 किलोमीटर है। उत्तरकाशी से हर्षिल 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप भी अगर इस गर्मी से बचना चाहते हैं और किसी ठंडे इलाके में जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है, आप यहाँ जा सकते हैं। तो आप अपना प्लान बनाइए जाने का और हम आपको सुनाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम में अब कुछ बातें खेल की। तो भारतीय धावक विशाल टीके ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ मात्र 44.98 सेकंड में पूरी करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही वह 45 सेकंड से कम समय में ये दूरी तय करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं और उन्होंने महान धावक मिल्खा सिंह का दशकों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकंड में पूरी कर ये रिकॉर्ड बनाया था। और गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को आईपीएल क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर लगातार दूसरे साल और कुल पांचवीं बार फाइनल में जगह बनाई है। और आज आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मंगलवार को यहां पांचवीं वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी को सीधे गेम में हराकर सिंगापुर ओपन में महिला एकल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। और विश्व चैंपियन डी कुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करते हुए विंसेंट कीमर के खिलाफ एक कड़े और तनावपूर्ण मैराथन मुकाबले के बाद जीत हासिल की और आर प्रज्ञानंदा ने वेस्ली सी को भी हराया।

जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है, इसलिए इसे दुख में या गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से भी झगड़ा करने में बर्बाद ना करें, बल्कि ये सब भूलकर आपस में प्रेम से रहें। इसी के साथ ही आज आप अपनी दोस्त रचना को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार, जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, और आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एजेंट विनोद से। आवाज़ हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और हमशिका की। अमिता भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है, प्रीतम ने संगीत से सजाया है और सुनना चाहा है। बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती अनुबनमाली, पूजा और सिद्ध कुमारी। इसी गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, सुमति उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।

अगला गीत सुनना चाहे नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरी शंकर केसरी, शंभू केसरी, भटिंडा रोड डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, ये सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कॉलेज गर्ल फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं शिव कुमार राव ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है इसकी फिल्म का, और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर उदित नारायण की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, उत्तम सिंह ने संगीत दिया है और सुनना चाह है गोंदा टाउन काके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल, अनुप्रिया भगत, ग्राम बड़बुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं, जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। सुनना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन में एक नई बात होती है। जो विश्वास रखते हैं अपने कदमों पर, उनके साथ पूरी कायनात होती है। नमस्कार सखियों, आपकी रेडियो सखी खुशबू आप सभी का स्वागत करती है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में,
1: और साथ ही अपनी आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी का भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए बहनों। और खुशबू ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं और पढ़ी हैं। उम्मीद है आप सभी सखियों को बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि सभी सखियां स्वस्थ रहें और अपने कामों में लगी रहें, यही हम हमेशा दुआ करते हैं। नारी जो होती है ना, वो परिवार की धुरी होती है और एक आधारशिला होती है, और एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार को बनाए रख सकती है। क्यों खुशबू?
0: बिल्कुल, मतलब एक नारी पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। वैसे सखियां सभी हैं वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाती भी है, क्योंकि एक नारी ही अपने परिवार की देखभाल करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, घर की जिम्मेदारी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि नारी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगी तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और सखियों, स्वस्थ नारी का मतलब केवल बीमारी से मुक्त होना नहीं होता है, बल्कि उसका मानसिक रूप से खुश रहना, आत्मनिर्भर और जागरूक होना भी जरूरी होता है। जब एक महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और पौष्टिक भोजन करती है, और साथ ही अगर नियमित व्यायाम भी करती है और पर्याप्त आराम भी करती है, क्योंकि महिलाओं के लिए आराम बहुत जरूरी है,
0: बहुत, और बहुत मुश्किल से भी मिलता है महिलाओं को आराम।
1: बिल्कुल सही कह रही हो, तब वह जाकर अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकती हैं।
0: बिल्कुल, और क्योंकि सखिया हम महिलाएं हैं ना, अपनी खुशी के लिए अपनी खुशी अपने परिवार की खुशी में देखती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी पूरा आराम करना, भरपूर भोजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है, क्योंकि खुश होना भी जरूरी है। खुशी तभी मिलती है जब हम अपने मनपसंद काम करें, इसलिए सखिया अपने मनपसंद काम के लिए कुछ समय जरूर निकाले। और अक्सर सुभाषिनी हम ये देखते हैं ना कि हम परिवार का ध्यान रखते रखते हम अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद का भी ध्यान रखें ताकि परिवार के लोगों का ध्यान हम अच्छे से रख सके। वैसे आज हर महिला घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभाती है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जैसा कि सुभाषिनी ने भी कहा कि घर की धुरी होती है, जो अपने घर की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों की भी देखभाल करती है, उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती हैं, इसलिए उनका स्वस्थ और खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।
1: बिल्कुल। और सखियों सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी अगर घर की महिला थोड़ी सी बीमार हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो पूरे घर की व्यवस्था जो होती है ना, वो चरमरा जाती है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। घर के किसी भी सदस्य को समय पर चीजें नहीं मिलती, कुछ सामान नहीं मिलता, और घर की इन्हीं अव्यवस्था के कारण महिलाएं जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है कि उनका स्वास्थ्य, वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे और अपना ख्याल रखे, क्योंकि हम अक्सर घर के कामों में या जरूरत के कारण खुद का ख्याल नहीं रख पाते, और इससे क्या होता है कि पूरा घर जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है।
0: बिल्कुल। और सुभाषिनी, हम महिलाएं अक्सर क्या करती है, अपने भोजन का भी ध्यान नहीं रखती है। कभी क्या होता है कि परिवार के पूरे सदस्यों को हम भोजन तो करवा देती हैं, लेकिन खुद के लिए जो बचा कुचा खाना होता है वो खा लेती हैं, तो इससे क्या होता है, महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी या खून की कमी हो जाती है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ आप खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना तो जरूरी है ही हम महिलाओं के लिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। और साथ ही उनके घर के कामों में, महिलाओं के घर के कामों में घर के सदस्यों को भी मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वे खुश रहे, क्योंकि अगर एक महिला खुश होगी तो पूरा परिवार भी खुश होगा।
1: बिल्कुल, तो इसीलिए सखियों महिलाओं को भी समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाती रहनी चाहिए तथा स्वच्छता और पोषण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित और जागरूक नारी पूरे परिवार को सही शिक्षा देती है, वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है और परिवार में प्रेम या प्यार, अनुशासन और एकता को बनाए भी रखती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि नारी परिवार की पहली शिक्षिका होती है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, ताकि जिससे परिवार में भी खुशहाली आए और साथ ही समाज में भी प्रगति आए। और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की तो
0: ध्यान रखना ही चाहिए।
1: साथ शरीर की देखभाल तो करनी ही चाहिए, साथ ही अपनी मन की भी देखभाल करनी चाहिए।
0: मन को सुकून देता है एक प्यारा सा संगीत, तो क्यों ना अपनी सखियों को एक प्यारा सा संगीत या गीत सुनाया जाए।
1: बिल्कुल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी बहनों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के, और आपके साथ हैं खुशबू और मैं सुभाषिनी। और खुशबू सोच रही है कि बहनों के लिए आगे और क्या कार्यक्रम लेकर आई है, वो उसे सुनाना है।
10: सुभाषिनी, अब हम अपनी सखियों को एक भेंटवार्ता सुनाएंगे और आज का विषय है महिलाओं की सुरक्षा और समाज की भूमिका, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज की शक्ति और सम्मान होती हैं। वे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस विषय पर आज हमारी खास मेहमान है सखियों, निशा दुबे जी जो कि एक शिक्षिका है, और उनसे बातें हो रही हैं सुभाषिनी की। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
11: नारी को समाज का आधार माना गया है। एक सुरक्षित समाज ही एक विकसित देश का निर्माण कर सकता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। महिला सुरक्षा किसी भी समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा विषय भी है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है महिलाओं की सुरक्षा और समाज की भूमिका, और आज हमारे साथ हैं निशा दुबे जी जो कि एक शिक्षिका हैं। निशा जी, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार।
12: नमस्कार
11: निशा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहें कि आज के दौर में समाज में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरह से देखती हैं?
12: जी, आज के दौर में महिलाओं की स्थिति को अगर हम देखें तो एक सकारात्मक बदलाव भी है और पुरानी चुनौतियां जो है वो भी है, यानी दोनों का एक मिला जुला रूप है
11: जी।
12: इसे हम दो मुख्य पहलुओं के जरिए देख सकते हैं। एक तो हो गया कि सकारात्मक और प्रगतिशील पहलू हो गया, जिसमें महिलाएं आज हर क्षेत्र में है, शिक्षा जगत में है, कॉरपोरेट जगत में है, राजनीति में है, खेल में भी महिलाएं हैं, और यहाँ तक कि अब सेना जैसे हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। तो कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है और आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ी है उनकी, तो जीवन के फैसले वो खुद लेने में सक्षम हो रही है। आधुनिक पीढ़ी की महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों, समानता और अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ज्यादा मुखर है
11: जी।
12: और जहां तक चुनौतियां हैं, वो एक तो एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी सार्वजनिक स्थानों, वर्क प्लेस हो गया, और यहाँ तक कि घरों में भी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। समाज एक तरफ तो महिलाओं की सफलता के बारे में बात करता है, तो दूसरी तरफ वहीं उनके पहनावे पर टिप्पणी करता है, देर तक काम आने पर सवाल उठाता है, या देर से अगर काम करके घर आती हैं तो। और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, पारंपरिक दबाव भी बन रहा है।

0: तो आज की महिला आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हुई है, लेकिन समाज को अभी भी उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित, सम्मानजनक और रूढ़िवादिता से मुक्त समाज देने की जरूरत है। महिलाएं केवल वहीं तक सुरक्षित हैं जहां तक सीसीटीवी कैमरे हैं, लाइट है या पुलिस है। तो समाज के व्यवहार और सोच में सुरक्षा की भावना अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है।
1: जी
0: महिला सुरक्षा के कागजी दावे और कानून मजबूत हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से समाज में एक महिला के लिए बिना किसी डर के खुलकर जीना आज भी एक चुनौती बना हुआ है।
1: जी
0: और यदि जमीनी हकीकत को देखा जाए तो आज समाज में महिलाएं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सुरक्षा के मामले में समाज की स्थिति को हम कह सकते हैं कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर डर बना हुआ है, सड़कों परिवहन हो गया, रात के समय सुनसान सड़क पर चलते हुए डर लगता है। आज भी अधिकांश महिलाएं जो हैं वो बसों या ट्रेनों में या सफर करने से डरती हैं।
1: बिल्कुल
0: रोजमर्रा के जो उत्पीड़न हो गया, जैसे बसों और ट्रेनों में या बाजारों में फब्दिया कसना, पीछा करना जैसी घटनाएं आज भी आम है।
1: बिल्कुल
0: कामकाजी माहौल में कई महिलाओं को वर्कप्लेस पर मानसिक या इनडायरेक्टली से क्या होता है कि यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन का भी खतरा है, ट्रोलिंग है, साइबर स्टॉकिंग और बिना सहमति के तस्वीर वायरल करना, इस तरह की जो केसेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं केवल बाहरी नहीं बल्कि घरों में भी असुरक्षित हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज के दौर में स्थिति तो काफी सुधरी है, लेकिन समाज को अभी भी और महिला के लिए सुरक्षा देने की जरूरत है और अपना विचार बदलने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने निशा जी कि समाज को अभी भी बदलने की ज़रूरत है। तो महिला सुरक्षा में समाज की क्या भूमिका रही है ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: महिला सुरक्षा में समाज की भूमिका अब तक कोई मिश्रित कह सकते हैं, विरोधाभासी भी रही है। जहां एक तरफ सुधार की कोशिशें दिखती हैं तो दूसरी तरफ पुरानी रूढ़िवादिता आज भी रुकावट बनी हुई है। आवाज उठाना और एकजुटता से डटे रहना, निर्भया कांड को लेकर कोलकाता आरजी का अस्पताल की घटना हो गई और उसके बाद जब तक कोई बड़ी त्रासदी हुई तो समाज ने सड़कों पर उतर कर न्याय की मांग की। समाज
1: जी
0: एकजुट हुआ
1: बिल्कुल
0: और समाज ने धीरे धीरे महिलाओं को देर तक काम करने, अकेले यात्रा करने और आत्मनिर्भर बनने को स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है उसे। और नागरिक जो है समाज के नागरिक जो है वो समाज और गैर सरकारी संगठन हैं उनके साथ मिलके या पर्सनली भी उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जमीनी स्तर पर काम किया है। और
1: जी
0: बहुत सी जो संस्थाएं हैं वो अभी काम कर भी रही हैं। जित बहुत सारे संगठन हैं वो समाज के साथ मिलकर या कहें कि सरकार के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, यानी हम कहें कि अगर नकारात्मक भूमिका को देखें तो आज भी सड़कों पर किसी महिला से छेड़छाड़ या अभद्रता होने पर भीड़ अक्सर मूक दर्शक बनी रहती है
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल
0: हस्तक्षेप करने से बचती है। यानी कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई बीच बचाव कर रहा है।
1: जी
0: घटना होने पर समाज अक्सर कानून व्यवस्था से सवाल करने के बजाय महिला के कपड़े और उसके व्यवहार और उसके दोस्तों पर सवाल उठाने लगता है।
1: जी जी
0: परिवार या सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर आज भी समाज में कई बार घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के मामले देखने को मिलते हैं। तो आज के समाज को क्या करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है सोचना कि समाज को पीड़ितों के बजाय अपराधियों को उनके परिवारों को सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाना चाहिए। बेटों को सम्मान करना सिखाना और बेटियों को आत्मरक्षा

0: और कुछ नियम इस तरह से बने कि पीड़िता को तिरस्कृत करने के बजाय अपराध करने वाले व्यक्ति को उनका सामाजिक बहिष्कार हो, इस तरह का कुछ नियम बने। सार्वजनिक स्थानों पर जो महिला को मुसीबत में देखकर लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, ये बंद होना चाहिए।
1: जी
0: और हर आवासीय क्षेत्र में एक कुछ समितियां या उस तरह से कुछ पुलिस की संयुक्त समितियां ऐसे मिलजुल कर बनना चाहिए जो इन मुद्दे पर नियमित रूप से चर्चा करे, उनकी जानकारी लेती रहे, या फिर जो उस मोहल्ले के लोग हैं या वहाँ के जो समाज के लोग हैं वो उनसे जाकर बातचीत कर सके
1: जी
0: कुछ दिक्कत होने पर।

0: तो इस तरह से समाज की भूमिका बनती है कि वो महिलाओं के प्रति समानता समानता का भाव दिखाए और उन्हें सम्मान दे।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। निशा जी, चलते चलते आपका क्या संदेश रहेगा समाज के लिए?
0: महिला सुरक्षा में समाज की भूमिका जो विषय है, इस पर मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। जो बहने जो है आपके कार्यक्रम की, महिला सुरक्षा कोई दान या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये उनकी बुनि उनका बुनियादी अधिकार है, ये समझना होगा। एक समाज के रूप में हमारी सफलता इस बात से नहीं मापी जाए कि हमारी बेटियां चांद पर पहुंच रही हैं, बल्कि इस बात से नापी जाए कि रात में सड़कों पर कितना वो बेखौफ चल सकती
1: जी
0: हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो और जब भी किसी महिला के साथ अन्याय या अभद्रता हो तो अपनी आंखें बंद न करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो समाज को पीड़िता से सवाल करना बंद होगा करना होगा। कपड़े, समय या आधुनिकता को दोष देने के बजाय केवल केवल और केवल अपराधी की सोच और उसके जो जो काम है उस पर सवाल उठाएं। समाज को पीड़िता से सवाल करना बंद करके इस तरह से उन अपराधी को घेरना होगा।
1: जी
0: अपने बेटों को, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं और नाक को स्वीकार करना सिखाएं। बेटियों को केवल सहना नहीं बल्कि लड़ना और आत्मनिर्भर बनना सिखाएं।
1: जी बिल्कुल।
0: सुरक्षा केवल पुलिस और कानून के फाइलों से नहीं आएगी, यह हमारे घरों से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से पैदा होगी। तो घरों को एक संस्कार का स्कूल बनाए। अपने बेटों को, मतलब अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और तभी जो कल के जो नौनिहाल है, बड़े होकर एक समाज बनाते हैं, तो वो समाज जो होगा वो महिलाओं का सम्मान करना सीख चुका होगा।
1: जी बहुत बढ़िया निशा जी। बहनों, आपने सुना कि निशा जी ने कितना अच्छा संदेश दिया कि जब हम अपने नींव को मजबूत करेंगे तब जो उससे वृक्ष जो तैयार होगा, तो समाज रूपी जो हमारा वृक्ष बनेगा वो अच्छा बनेगा, और उसमें जो फल फूल आएंगे, उनके जो तने होंगे, पत्ते होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यानी कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बेटा हो या बेटी, ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। और जहाँ तक अभी के समाज की बात है, तो कहीं ना कहीं कुछ उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अभी भी अपनी सोच को परिवर्तित करने की ज़रूरत है महिलाओं के प्रति और महिला की सुरक्षा के प्रति। निशा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमसे साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, और आज का विषय था महिलाओं की सुरक्षा और समाज की भूमिका। बातें हो रही थी निशा दुबे जी की, जो कि एक शिक्षिका थी, और बातें कर रही थी हमारी प्यारी सी सखी।

0: सुभाषिनी। सुभाषिनी, अब आगे कार्यक्रम में क्या है?
1: आगे कार्यक्रम में बहनों के लिए बहुत कुछ है खुशबू, क्योंकि हम आज बहनों की सेहत के बारे में बात कर रहे थे ना। तो अभी गर्मी का मौसम है और सेहत से जुड़ी अगर हम बातें करें, खास करके गर्मी के दिनों में, तो जो गर्मी में जो पौष्टिक पेय जो होते हैं ना, वो बहुत ही लाभकारी होते हैं,
0: क्योंकि गर्मी का मौसम आते ही शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। तेज धूप और पसीने के कारण शरीर को अधिक ऊर्जा और तरल पदार्थों की जरूरत होती है, और ऐसे में पौष्टिक पेय जो है हमारे शरीर को ठंडक, ताजगी और पोषण देते हैं। वैसे हम गर्मियों में पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे कि नींबू पानी है जो कि बहुत फायदेमंद है, और इसमें विटामिन सी भी होता है और ये शरीर को ताजगी देता है। तो छाछ जो कि दही से बनाया जाता है, ये पाचन के लिए बहुत लाभदायक है, पेट को ठंडा रखता है, साथ ही हमारे शरीर को कैल्शियम भी देता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है सुभाषिनी, क्योंकि हम महिलाएं अक्सर इसे बनाते रहती हैं। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दही को अच्छे से फेंटना है, उसमें पानी मिलाना है, नमक और भुना जीरा डालना है और ठंडा ठंडा सर्व करना है और पी लेना है।
1: और गर्मी के दिनों में जो आम पन्ना जो होता है ना, वो सभी को बहुत पसंद आता है,
0: बिल्कुल,
1: और ये बहुत लाभकारी भी है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, कच्चे आम, चीनी, काला नमक और पुदीना की पत्तियां अगर हो तो ठीक है, तो इन्हें कच्चे आम को उबाल ले, फिर इसका गूदा निकाल कर उसमें चीनी, नमक और पुदीना की पत्तियां मिलाएं और उन्हें ठंडा करके सर्व करें, और ये हमें लू से भी बचाता है,
0: बिल्कुल, और ये बहुत पौष्टिक भी होता है और साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है, ये हमारी थकान को भी दूर करता है। इसी प्रकार तरबूज का जूस जो होता है वो भी काफी फायदेमंद है, और आप बेल का मीठा शरबत भी पी सकती हैं, क्योंकि बेल जो है वो शरीर को ठंडक देता है और कब्ज जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो गर्मियों के में पौष्टिक पेय पीना शरीर के लिए काफी लाभदायक है, ये शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं, ऊर्जा देते हैं और हमें गर्मी से भी बचाते हैं।
1: बिल्कुल सही, तो बहनें पौष्टिक पेय जरूर पिए गर्मियों में। और इसके साथ ही बहनों, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। आपकी सखी सुभाषिनी और खुशबू से विदा लेने से पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। हमें देवविदा, नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी,
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम

0: किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
0: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: हाँ विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारी यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से,
0: जी
1: जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
0: जी
1: बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी रंग आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
1: जैसे
0: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे,
0: जी
1: विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
0: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में

0: मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
1: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
2: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
2: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
1: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
3: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
4: क्या बात है,
3: सुनकर ही जोश आ गया।
4: हाँ
3: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
4: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा

0: हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
3: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो दुर्गा माता की,
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं, लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
5: मैं जा रहा हूं।
1: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 4 of made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the U.S. and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to U.S. President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's Defense Minister Khwaja Mohammad Asif rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR अभियान को ठहराया पूरी तरह वैध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से की मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए देशवासियों से की बड़ी अपील। दोपहर में बाहर न निकलने और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने की दी सलाह। राज्य कैबिनेट की आज शाम 4 बजे से रांची में होगी अहम बैठक। विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। हजारीबाग में बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक से अवैध महुआ निकालने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और रांची की नीतू कुमारी महतो बनी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर। जापान में U18 एशिया कप में करेंगे एम्पायरिंग। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह पुनरीक्षण कार्य कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कतों से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए विशेष कैंप के बाद BLO खुद घर घर जाकर मैपिंग का काम पूरा करेंगे।
3: किसका मैपिंग नहीं हुई फिर भी एलिमिनेशन फॉर्म करके दे दिया, उसमें या आपके ERO आवश्यक अनुसार आपका नोटिस इश्यू करके बुला के आपका कागज लेके उसका आगे का आपका 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में होगा। अपने खुद का एक पेरेंट का देना होगा। किसका जन्म 2/12/2004 का बात है वो दोनों पेरेंट्स का अपने सेल्फ।
2: झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची जिला समिति ने वोटर लिस्ट सुधार और बूथ मजबूत करने पर बैठक की। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहकर हर योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की अपील की। जिला संयोजक मुश्ताक आलम ने भी सभी प्रखंडों में बूथ समितियां जिला संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि सभी प्रखंडों में बूथ समितियां मजबूत की जाएंगी। देशभर में बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने की बड़ी अपील की है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के तेज धूप में बाहर ना निकलने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और घरों की छतों, दुकानों तथा बालकनियों में पशु पक्षियों के लिए पानी से भरे बर्तन रखने का भी आग्रह किया है। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरना, सनातन और हिंदू संस्कृति एक ही है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के बीच नफरत और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
4: 2016 में BJP के सरकार ने वो अदर कॉलम को भी हटाने का काम किया। आज नतीजा ये है कि लोगों के पास कहीं पे भी जो प्राकृतिक धर्म में है या जिनको धर्म का विशेष कोड आज तक आवंटन नहीं किया गया है उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और उनको जबरन इन्हीं ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा।
2: इधर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ायक ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के उस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को गुमराह करने और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
5: इसमें भी शिल्पी नेहा तिर्की जी को राजनीति सोचता है क्योंकि ये किसी का एजेंडा को चलाने का काम करती है इसलिए ये बात करती है। ये बोलते आदिवासी सनातन नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी सनातन नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि देश भर के आदिवासी का अगर कोई देव है, कोई आराध्य देव है, आदि काल से जो रहते आ रहे आदिवासी का कोई देव है तो वो आदि देव महादेव है।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में युवाओं और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प से बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इसी भावना के साथ देशवासी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। राज्य में जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पहल से प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती तथा सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योजना के तहत बुजुर्गों, छात्रों और जरूरतमंदों को मुफ्त या रियायती सफर की सुविधा दी जाएगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गुमला जिले की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना ने उनकी जीवन शैली बदल दी है। अब लकड़ी के चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिल गई है, जिससे समय की बचत और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।
6: उज्ज्वला योजना बहुत ही हम लोग को लाभदायक हो रहा है। हम लोग लकड़ी झूरी से बाज हो गए हैं और अच्छा से बच्चा लोग को स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा से खाना पीना टाइम से दे सक रहे हैं, हम लोग भी खा के अपना काम जा सक रहे हैं। नहीं तो बरसात में हम लोग दिक्कत हो जाता था, लंच नहीं बनता था, बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहा था। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को भी धन्यवाद देती हूँ।
2: हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूदगांव में एक सेफ्टी टैंक के भीतर दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बेहोश है। पुलिस के अनुसार पुलिस के डर से टैंक में अवैध महुआ शराब छिपा कर रखी थी। देर रात उसे निकालने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया।
7: अचानक 10 बजे रात में हमको फोन आया कि सेफ्टी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं, तो देखे कि 3-4 लोग गिरे हुए थे, तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और चारों को वहां से निकाला गया। फिर उसको हम लोग सदर अस्पताल लेकर तुरंत गए, 3 लोगों को डॉक्टर साहब ने घोषित बता दिए और एक अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनका जो भर्ती है।
2: धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में स्थित मिठाई की एक दुकान में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक के अनुसार इस घटना में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक की वृद्धि के साथ 23,941 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,73,000 रुपये प्रति किलो है। रांची की नीतू कुमारी महतो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर बन गई हैं। वह झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर हैं। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाले अंडर-18 एशिया कप में एम्पायरिंग करेंगी। हॉकी झारखंड ने उनकी इस बड़ी सफलता को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR अभियान को ठहराया पूरी तरह वैध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से की मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए देशवासियों से की बड़ी अपील। दोपहर में बाहर न निकलने और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने की दी सलाह। राज्य कैबिनेट की आज शाम 4 बजे से रांची में होगी अहम बैठक। विभिन्न विभागों के कई नए प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। हजारीबाग में बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक से अवैध महुआ निकालने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और रांची की नीतू कुमारी महतो बनी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर, जापान में अंडर-18 एशिया कप में करेंगी एम्पायरिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सिद्धेश्वरी देवी से खमाज में ठुमरी गायन। बोल है जाओ वही तुम श्याम। संगतकार हैं तबले पर चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान।

अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे सिद्धेश्वरी देवी से खमाज में ठुमरी गायन, बोल थे जाओ वही तुम श्याम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं चंद गजलें। पहली गजल सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाजों में।

सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 50 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए

0: मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडिया को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में

0: पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
1: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
2: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Jesena!
1: इस संदेश के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जय भारती में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए गीत लेकर आते हैं, खासकर अपने फौजी भाइयों के लिए। जी हाँ, फौजी जो होते हैं वो देश की संपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। देश की शान और उसकी रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं, उसे ही कहते हैं फौजी। देश के सरहद पर अपना सर कटाने वाला और अपनी सारी इच्छाओं और खुशियों को दांव पर लगाने वाला वह हमारे देश के फौजी। वह ना कड़ी धूप से डरते हैं और ना आंधी से और ना ही किसी आपदा से। बस देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उनके लिए अपना भारत देश सबसे प्यारा होता है।

ये गीत अभी आपने सुना हरी हरन और साथियों की आवाज़ों में रोज़ा फिल्म से। पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा था और एआर रहमान ने संगीत दिया था। इस कार्यक्रम में हम अपने फौजी भाइयों के लिए लेकर आए हैं कुछ और खूबसूरत से गीत। तो अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको कहो ना प्यार है फिल्म का, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, इब्राहिम अश्क के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

एक फ़ौजी हमेशा कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं और किसी भी युद्ध के खिलाफ फ़ौजी ईमानदारी और बहादुरी के साथ लड़ते हैं। हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि फ़ौजी रात भर जागकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जी हाँ, वो तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जो आज उनके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम के जरिए, उनको बहुत ही खूबसूरत से गीत सुनवाते हैं। तो अगला गीत हम उनको सुनवाने जा रहे हैं, वो फिल्म है अरमान। आवाज़ है चित्रा की, जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, शंकर एहसान लोए ने संगीतबद्ध किया है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म से आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। सईद कादरी के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है।

0: जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह पुनरीक्षण कार्य कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कतों से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए विशेष कैंप के बाद BLO खुद घर घर जाकर मैपिंग का काम पूरा करेंगे।
2: किसका मैपिंग नहीं हुई फिर भी एलिमिनेशन फॉर्म करके दे दिया, उसमें आपको ERO आवश्यक अनुसार आपका नोटिस इश्यू करके बुला के आपका कागज लेके उसका आगे का आपको 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में होगा। अपने खुद का एक पेरेंट का देना होगा। किसका जन्म 2/12/2004 का बात है वो दोनों पेरेंट्स का अपने सेल्फ।
1: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आज दिए फैसले का स्वागत किया है। गिरिडीह जिले के मधुबन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में फैसला लेती है लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना होता है। मतदाता सूची का स्पेशल पुनरीक्षण राष्ट्रीय हित में था लेकिन विपक्ष ने जनता को गुमराह किया।
3: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता को समय समय पर प्रशिक्षण यानी पार्टी के बारे में जाने, पार्टी के इतिहास से लेकर सांसारिक विषयों को लेकर भी चर्चा हुई है और विभिन्न वक्ता अपने अपने विषयों पर चर्चा भी करते हैं और हमें लगता है ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में ही है कि अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित कर पार्टी के रीति नीति के बारे में भी कैसे अनुशासित होकर।
1: आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में

आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग करना अनिवार्य है। इस अवसर पर श्री जाधव ने ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने और वर्ष 2026 के लिए जन भागीदारी बढ़ाने हेतु योग संगम पोर्टल का पुनः शुभारंभ किया और राज्यों तथा संस्थानों में योग के लिए समर्पित स्थान विकसित करने के लिए योग पार्क पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। समारोह का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले दो दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब अभियान के दौरान 135 से ज्यादा लंबित वारंटों का भी निष्पादन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को पकड़ा गया। रांची पुलिस के अनुसार अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चतरा जिले में उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध उत्पाद विभाग द्वारा हंटरगंज थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर गेंजना गांव में अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। अवैध रूप से बनाई गई शराब को कई ब्रांड की बोतलों में भरकर नकली लेबल और होलोग्राम लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। अभियान के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक प्रेम प्रकाश उरांव ने बताया कि सभी संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में उपायुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 टीबी मरीजों के बीच पोषण युक्त फूड बास्केट का वितरण किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने निक्षय मित्र बनकर 51 टीबी मरीजों को गोद लिया। इस दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी टीबी मरीजों से नियमित रूप से दवा का सेवन करने और समय पर अपना स्वास्थ्य जांच कराने तथा पोषक आहार ग्रहण करने की सलाह दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: इस संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी में। इस कार्यक्रम में हम आपको जो गीत सुनवाते हैं वो आपको अंताक्षरी के तर्ज में सुनवाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंताक्षरी का खेल हम किस प्रकार से खेलते हैं, इसमें हम एक गीत चुनते हैं, जो गीत शुरू होता है म अक्षर से और फिर जो वो गीत जहाँ खत्म होता है उसके अंतिम अक्षर से हम शुरू करते हैं अपना दूसरा गीत। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आपको सुनवाते हैं म से पहला ये गीत।

ये गीत अब ख़त्म हुआ है ह पर, अब ह से हमको आपको अब अगला गीत सुनवाना है। तो ह से देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अंताक्षरी का खेल हम खेलते हैं और हमें गीत तो याद होते हैं लेकिन वो हमारे ज़ुबान पर नहीं आ पाते हैं। और अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे गीत तो याद आ रहे हैं लेकिन याद ज़ुबान पर नहीं आ रहे हैं। तो अंताक्षरी में अक्सर ऐसा होता है। आप ये खेल कहीं भी कभी भी किसी के साथ खेल सकते हैं क्योंकि इसके लिए कुछ भी सामान की ज़रूरत नहीं होती है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं शादी में हैं तो आप ये खेल खेल सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो हँसे सुनते हैं ये गीत।

0: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा ले तो। जी हाँ, तो अब ये गीत खत्म हुआ है तब पर, तो अब तो से हमको सुनवाना है आपको अगला गीत, तो सुनते हैं तो से ये गीत।
1: तस्वीर

अब ये गीत खत्म हुआ है ए अक्षर पर, तो ए से अब अगला गीत हमें सोचना है। तो चलिए, मुझे याद आ गया कौन सा गीत आपको सुनवाना है। सुनते हैं ए से ये गीत।

नॉर्थ अपन तक्षी अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

रांची मेलोडीज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में लकी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और संगीत है अदनान सामी का।

जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजा है अनु मलिक ने। फिल्म है मैं हूं ना और गायक कलाकार हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं, लक बाय चांस फिल्म का। इस गीत को गाया है महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल ने। रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाजों में आइए अब सुनते हैं माई नेम इज खान फिल्म का ये गीत। निरंजन अय्यर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

रांची मेलोडीज का आखिरी गीत आइए अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। गीतकार हैं जयदीप सहनी और संगीतकार हैं सलीम सुलेमान।

0: इस गीत के साथ ही रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, 4 बजे है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आज दिए फैसले का स्वागत किया है। गिरिडीह जिले के मधुबन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में फैसला लेती है, लेकिन विपक्ष का काम

विरोध करना होता है। मतदाता सूची का स्पेशल पुनरीक्षण राष्ट्रीय हित में था, लेकिन विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। केंद्रीय मंत्री ने ये बात आज मधुबन में गिरिडीह और कोडरमा जिले के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास करना अनिवार्य है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। समारोह का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार से झारखंड के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों के लिए तत्काल डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीनता और तुष्टीकरण की नीतियों के कारण झारखंड घुसपैठियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। सूत्रधार हैं कमलेश कुमार मिश्रा और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज के अंक से पहले वाले अंक में हमने भारत की जनगणना 2027 विषय को लिया और ये कोशिश की कि इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, ये जनगणना 2027 क्या है, किस प्रोसेस में काम हो रहा है, ये होम इन्यूमरेशन क्या है, सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है, उन तमाम विषयों पे हमने चर्चा की, सवालों के जवाब को लिया। और अब बहुत सारे जो अधिकारी अलग अलग क्षेत्र में, जैसा कि हमने अपने पहले कार्यक्रम में बताया था कि 70,000 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं झारखंड में, जो आपके घर जा रहे हैं, इस जनगणना में शामिल हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यहाँ पे जरूरत हमारी और आपकी है कि हम भी इसके महत्व को समझें और एक सही जानकारी उन तक पहुंचाएं। लेकिन इस दौरान में बहुत सारे लोगों के मन में और भी सवाल है, तो आज हमने अपने इस अंक में फिर से उस विषय को शामिल किया है आपकी वजह से, ताकि आपके मन में और जो सवाल है, जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, उसे हम खत्म करने की कोशिश करें अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ है प्रभात कुमार, निदेशक हैं जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड, गृह मंत्रालय भारत सरकार से। सबसे पहले प्रभात सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रभात सर, शुरुआत इसी से करते हैं, ये कुछ सवाल आ रहे हैं, भ्रांतियां लोगों के मन में चल रही हैं जब भारत की जनगणना 2027 की बात कर रहे हैं, अभी होम इनोमिनेशन चल रहा है, 14 जून तक होना है, क्यों ऐसा आ रहा है? आप इस चेयर पे बैठे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं?
2: हमारे अभी तो हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है हम लोगों की जानकारी में, अगर आपके पास कोई प्रश्न आ रहे हो तो आप उससे अवगत करा सकते हैं।
1: तो जो अमूमन देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, तो उनके मन में पहला ही सवाल ये आ रहा है कि इतने डिटेल्स में क्वेश्चंस किए गए हैं, मैं इतना जानकारी क्यों दूं?
2: देखिए, जनगणना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डोमिसिलियरी मतलब जनांकिकी के आंकड़े एकत्रित करना नहीं है। जनांकिकी से हमारा तात्पर्य होता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना उम्र है, वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, जिसमें कि उनका आवास का प्रकार क्या है, उनके खान पान का क्या है, उनका आवास किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का ईंधन का उपयोग करते हैं, पेयजल का स्रोत क्या है, सिविक एमेनिटीज उनके पास किस प्रकार के उपलब्ध हैं। इन सारी जानकारियों को एकत्रित करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार प्रत्येक इलाके को लक्षित करके अगर किसी

0: इलाके में किसी आधारभूत संरचना की या किसी प्रकार के सुविधा की कमी पाई जाती है। जैसे आप कई प्रकार के प्रश्न देखेंगे कि आपके शौचालय का स्वरूप क्या है, या फिर आप देखेंगे कि आप किस प्रकार के पानी का उपयोग करते हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत ही व्यापक पैमाने पे शौचालय निर्माण का कार्य किया गया है, तो अब कहाँ पे किस प्रकार के शौचालय हैं, अगर इसकी मैपिंग हो जाती है तो लोगों को जिनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं है जिस पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई डिसएडवांटेज है, तो सरकार उनको उनके प्रति स्पेसिफिक स्कीम प्लान कर सकती है। कोई अगर किन्हीं के पास पेयजल का स्रोत घर में उपलब्ध नहीं है तो सरकार ये प्लान कर सकती है कि उनको कहां से किस प्रकार से घर घर में नल जल पहुंचाया जा सके। तो इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास आंकड़े एकत्रित होने चाहिए, जो कि प्रत्येक गांव वार, जिला वार, क्षेत्र वार आंकड़े इसी कारण एकत्रित किए जाते हैं।
1: मैं इसी में एक सवाल को सर शामिल कर देता हूं ताकि हमारे श्रोता समझे कि आपका जो 17 नंबर सवाल है जिसमें पेयजल का मुख्य स्रोत लिखा हुआ है, अब इसमें ऑप्शंस हैं कि नल का पानी उपचारित स्रोत से है, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से है, कुआं से है, हैंडपंप से है, ट्यूबवेल या बोरहोल से है, झरना से है, नदी या नहर से है, टैंक, तालाब या झील से है, सीलबंद पैकेट या बोतल का पानी है या अन्य स्रोत है। तो ये ऐसे 10 या 11 इसमें ऑप्शंस दिए गए
0: कि इस पर विशेषज्ञ समिति प्रश्नों को समेकित करने में काफी भूमिका निभाती है, और ये काफी डेलिब्रेशंस के बाद ये प्रश्न भारत सरकार के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। इसका मुख्य, आपने जो प्रश्न पूछा है कि सिर्फ पानी पे इतना क्यों, देखिए पानी हमारे जीवन का आधार है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% जो आवश्यकता है आहार में भी चाहे किसी भी प्रकार से, शरीर में 70% जल आता है हमारे यहाँ, और वो शुद्ध जल होगा, शुद्ध पेयजल होगा तो हमारी बीमारियां कम होंगी, अन्य प्रकार की सुविधाएं भी कम होंगी, ये सुविधाएं अच्छी होंगी। कार्य ये जानना चाहती है कि किस विशेष इलाके में या किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष राज्य में, किसी विशेष ग्राम में किस प्रकार से पानी का सप्लाई किसी इंडिविजुअल के यहाँ या किसी ग्रुप के यहाँ होता, ग्रुप परिवारों के समूह के मध्य होता है। जैसे आपने पूछा टैप वाटर, अब टैप वाटर तो पहुंच रहा है लेकिन क्या सरकार की नल जल योजना का उद्देश्य टैप वाटर पहुंचाना नहीं, ट्रीटेड टैप वाटर पहुंचाना है जो कि शुद्ध पेयजल हो। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपके पास जो पानी आ रहा है वो आपको लगता है कि ट्रीटेड है कि नहीं है।
1: नहीं है, यानी इन्हीं सवालों पे चीजें छिपी कि आप तक ये योजना पहुंची या नहीं पहुंची।
0: जी,
1: और नहीं पहुंची तो कुछ करेंगे,
0: फिर आगे इसी के आधार पर आगे योजनाएं
1: बनेंगी
0: लक्षित समूहों को लक्षित करके अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाए या नए प्रकार के इंटरवेंशंस डिजाइन किए जाए, नई प्रकार की योजनाएं बनाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की इन योजनाओं को
1: पहुंचाया जाए। सो इसमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है सर। कुल इसमें 33 प्रश्न है, 33 प्रश्न में 32 नंबर जो है उसमें लिखता है कार या जीप या वैन। अब लोगों के दिमाग में कि अब हम अपनी कार की डिटेल क्यों दे दे भाई।
0: देखिए ये सामान्य जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कितने लोग हमारे यहाँ किस प्रकार के वाहन का उपयोग करते हैं आवागमन के लिए। मान लीजिए अभी पेट्रोल की आवश्यकता है, तो अब हमारे पास अगर एक आंकड़ा है कि लगभग किसी इलाके में कितने प्रकार के, किस प्रकार के वाहन का उपयोग हो रहा है, तो उससे एक अनुमान लगता है कि वो वाहन कितने चलते होंगे, क्या होंगे, तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ पे किस तरह कितने पेट्रोल का कितने डीजल का अलॉटमेंट करने से सुविधा होगी। सरकार को स्कार्स रिसोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसको बढ़िया से अलॉट कर सकेगी सरकार। इसमें कोई भ्रांति नहीं है कि सरकार कोई किसी के कार का, जीप का, वैन का नंबर लेकर के उनके साथ न मैप कर रही है न उसको मार्क कर रही है। ये डेटा पूरी तरह से ऑप्शनल होता है और गोपनीय होता है। आपने बताया ये डेटा किसी के साथ न शेयर होना है न कुछ होना है, कोई भी आंकड़ा हमेशा जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार का आंकड़ा, किसी भी इंडिविजुअल का आंकड़ा किसी भी परिस्थिति में

0: किसी भी तरह से उसको गोपनीय रखा ही जाना है, उसको किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
1: मतलब दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि ये
0: वो आंकड़ा लॉक्ड है और इसके आधार पे सरकार अपनी भविष्य की योजनाएं बना सकती है। मैंने बताया कि अगर जहां पे बाईसाइकिल या स्कूटर है, जहां पे साइकिल ही सिर्फ है किसी विलेज में,
1: जो
0: या मतलब जहां पे व्हीकल है नहीं जिस इलाके में, वहां पेट्रोल पंप खोलने से क्या फायदा है? वहाँ पे इस तरह का वहाँ पे तेल वगैरह अलॉट करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अगर जहाँ व्हीकल्स का कंसंट्रेशन है और वहाँ पे कम पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे डीजल गाड़ियों की संख्या अधिक है या पेट्रोल गाड़ियों की संख्या अधिक है, किस तरह के वाहन के लिए डीजल कहाँ ज्यादा देना है, कहाँ पेट्रोल ज्यादा देना है, तो भविष्य में इन सब की मैपिंग आसान हो जाती है।
1: बिल्कुल, उसी से जुड़ा ही एक जो जैसे मैंने 32 का उसमें जो 31 नंबर का सवाल है वो यही पूछ रहा है कि साइकिल है, स्कूटर है या मोटरसाइकिल है या मोपेड है। सो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, और मुझे लगता है कि हम सभी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि इसको प्यास लगी है, इसको पानी देना है, या इसको भूख लगी है, इसको खाना देना है, तो ये जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम सही चीज कैसे डिलीवर करेंगे? सो दिस इज द मेन पॉइंट।
0: ये इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, मैंने कहा हर इंडिविजुअल का आंकड़ा गोपनीय रहना है। ये एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन डिजाइन होगा, उस इलाके में किस तरह की योजनाओं की आवश्यकता है ये इसके आधार पे।
1: सो आपने लोगों को भी पहले जो हमने पहला अंक किया, आपसे भी हमारी बात हुई थी प्रोग्राम से पहले, और उसमें दो जो आपके यहाँ झारखंड से नेशनल प्रशिक्षक है उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई। सो लोग जा रहे हैं और लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहते हैं सर, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आप इन चीजों को तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप एक एक चीजों को ध्यान में रख रहे हैं।
0: प्रगणक जब आपसे अप्रोच करते हैं, आपके घर पे जाते हैं, उनके साथ पूरी की पूरी जानकारी ईमानदारी के साथ शेयर की जाए, ताकि सरकार जो भी जिस वर्ग के लिए भी जिस धर्म के लिए भी योजनाएं बनाना चाहती है, चाहे जिस प्रकार की भी योजनाएं हो, उसमें सरकार को प्रॉपर डेटा मिल सके। डेटा अगर सही एकत्रित होगा तभी सरकार सही प्रकार की योजनाएं बना करके उसको समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचा पाएगी।
1: एक सवाल सर मैं चाहूंगा, उसको मैं शामिल करूं, जो मुझे भी हाल में तुम सुनने को भी मिला, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, सो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सर SIR की टीम चल रही है इलेक्शन कमीशन से, उनके कुछ लोग जा रहे हैं, कभी कोई BLO जा रहा है, और इधर सर आपका होम इनोमरेशन चल रहा है, अब उसमें लोग जा रहे हैं, सर इसमें लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं कि कल ही तो वो आए थे फिर आप क्यों आ गए, सर इस पे थोड़ा सा आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जनगणना दशक में एक बार होती है और इस बार तो ये 16 साल के बाद हो रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और SIR इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, जो कि वोटर्स का मैपिंग हो रहा है, अभी वोटर्स के मैपिंग का काम हो रहा है, और ये 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं, ये उनको लक्षित करके ये चलाया जा रहा है बूथ वाइज, उस बूथ के कहां पर वोटर्स हैं उनको मैप करना है। जनगणना हर किसी की होनी है और उनके द्वारा दिए गए आंकड़े भविष्य में देश के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
1: रोल निभाने वाले हैं।
0: इसलिए जनगणना के कार्य में लोगों को सहयोग अधिकाधिक करना चाहिए।
1: तो कोइंसिडेंस है कि अभी ही उनकी भी चल रही है, तो टीम कहीं पे क्लैश कर जा रही है। हाँ। एक ही घर पे
0: मेयरली कोइंसिडेंस।
1: तो आपको इस बात के लिए भी जागरूक रहना है, सो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें, आप इसमें भ्रम की स्थिति में ना रहें। SIR की टीम अपनी काम कर रही है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है, जनगणना की टीम अपनी काम कर रही है, और ये इसमें भाग लेना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उस लास्ट बार भी पहले प्रोग्राम में भी इसको शामिल किया था, आपसे भी पूछूंगा कि हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक प्राउड टाइम है, सो आप इसमें शामिल होते हैं तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड।
0: हाँ, हमारा मोटो ही है जनगणना से जन कल्याण, इस बार का मोटो ही है जनगणना से जन कल्याण, और विकास और प्रगति ये दोनों हमारे मस्कट्स हैं, तो उद्देश्य है देश का विकास और प्रगति और जन कल्याण।
1: क्या बात है, और इस विकास में आप भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं एक लीड करते हुए। सो आपके लिए क्या चुनौती होती है, मैं इस सवाल को भी ले लूं, कि इतने 70,000 से अधिक कर्मचारियों को हैंडल करना, इतनी सारी सामग्रियां पहुंचाना जिलों में, गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, आपके लिए क्या चुनौती होती है?
0: देखिए, इसके लिए तो राज्य स्तर से जिला स्तर तक, राज्य में स्टेट नोडल डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिले में उपायुक्त, हर जिले के उपायुक्त, म्युनिसिपैलिटीज में म्युनिसिपल कमिश्नर्स जो हैं वो

0: अपने अपने यहाँ के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं और वो वहाँ पे पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हैं। उनके नीचे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो कि इस बात में ट्रेंड ही है कि विभिन्न प्रकार के स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं, तो वो लोग काफी अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते हैं। हम लोगों का काम है सिर्फ उसको सुपरवाइज करना और हम लोग उसको ये स्मूथली अभी चल रहा है। अभी तक तो सेंसस का काम झारखंड में
1: तो रिव्यू भी करते हैं आप? हाँ, रिव्यू करते
0: वो
1: हैं?
0: तो हर दिन इसकी रिव्यू होती है और सारा चुप जो है वो ऐप और पोर्टल से जुड़ा हुआ है तो डैशबोर्ड पे वो सब चीज लाइव रहता है।
1: प्रभात सर, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बात करने के बाद, जबकि आज ये दूसरा अंक हम कर रहे हैं, तो लोगों के मन में अब जो भी भ्रांति होगी अब जरूर खत्म होगा। भ्रमित नहीं रहना है, आप बस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाएं जो हमारा कार्यक्रम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सारे आपके जितने भी सुनने वाले हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं जहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। अभी हमने बात की प्रभात सर से और अब कार्यक्रम में हमारे साथ संजय कुमार हैं, अपर नगर आयुक्त हैं रांची नगर निगम रांची के, साथ ही ये अभी शहर जनगणना पदाधिकारी हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रांची नगर निगम की है। जब हम इस जनगणना की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे ये दो तरीकों से होता है, एक शहरी इलाके में, दूसरा ग्रामीण इलाके। जो शहरी इलाका है वहां पे जिम्मेदारी RMC की बनती है। इनको शामिल हमने किया है कार्यक्रम में, अब इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का फील्ड पे इन्हें सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करेंगे रांची की, तो वहां पे लगभग 2,45,000 घर हैं। सर कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: संजय सर। पहला सवाल, क्योंकि जब हम भारत की जनगणना 2027 की बात कर रहे हैं और झारखंड में भी आपका होम इनोमरेशन चल रहा है, 16 मई से शुरू हुआ 14 जून तक चलना है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब रांची नगर निगम की बात करते हैं, आप जब फील्ड पे जा रहे हैं जनगणना के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
2: देखिए, हम लोग शहरी क्षेत्र का जनगणना का कार्य कर रहे हैं जिसमें 53 वार्ड है RMC में, और RMC में 53 वार्ड में कुछ जो HLB हमारे हैं वो 2022 हैं, तो इतने इनोमिनेटर की नियुक्ति पहली चुनौती थी हमारे पास, जो उसमें शिक्षक हैं, RMC के कर्मी हैं, महिला विकास विभाग के कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, तो इनको लाना और इनको एज ए प्रगणक ट्रेनिंग देना, सारी बातों को बताना और फील्ड पे भेजना, ये मेरी पहली चुनौती थी। इसके साथ हम लोगों ने इनके साथ सुपरवाइजर को भी टैग किया है, तो वो काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन वो अच्छा खासा कठिनतम वर्क था जिसको हम लोगों ने पूरा किया और इनको ट्रेनिंग पूरी तरीके से हम लोगों ने दिया ताकि फील्ड में इनको कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद अब फील्ड का कार्य जो 16 तारीख से शुरू हुआ है उसमें हम लोगों को कुछ परेशानियां आ रही हैं, और जैसे लोग जा रहे हैं तो हमारे जो भी घर के ऑनर हैं वो अपनी पूरी जानकारी देने में थोड़ा हिचक रहे हैं, बिकॉज उनको तुरंत अभी SAR से संबंधित भी जानकारी देनी पड़ी है, सेंसस से संबंधित भी जानकारी अलग, इनका क्वेश्चन अलग रहता है, SAR का क्वेश्चन अलग रहता है, तो थोड़ा उन लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई इतनी सारी जानकारियां हमसे क्यों मांगी जा रही है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से होर्डिंग्स लगा के लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है कि भाई देखिए ये कठिनतम प्रशासनिक वर्क है और इसमें सभी सहभागिता आवश्यक है सभी नागरिकों का, और ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है देश के लिए, तो आप ये जानकारी दें, ये आपको गोपनीय रखा जाएगा, किसी तरह का कोई भी मिसयूज इसका नहीं किया जाएगा। तो पहला है ये कि वो जानकारी नहीं दे रहे थे, अब धीरे धीरे रास्ते पे लोग आ रहे हैं और अब हमको तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्यों की ओर। दूसरा है कि कोई घर पे अगर कोई रेंटर रह रहे हैं तो जनरली लैंड ऑनर या जो मकान मालिक है वो भी अपने रेंटर के विषय में जानकारी नहीं देना चाह रहे
1: नहीं देना चाहते
2: हैं। तो ये भी एक हमारे लिए एक स्थिति ऐसी है जहाँ पे हम लोगों को समझाना पड़ रहा है, और हम आपके माध्यम से लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो रेंटर रह रहे हैं वो कृपया अपनी जानकारी दें, आपकी जानकारी बिल्कुल ही सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, एक अन्य नागरिक की तरह आप भी भारत के एक नागरिक हैं, इसलिए आपको जानकारी देनी चाहिए।
1: सर यहाँ पे भी वो भ्रम वाली स्थिति बन रही है, आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पे 10 लोग रेंट पे रहते हैं तो डिटेल आ जाएगा, कुछ टैक्सेस का चक्कर नहीं हो जाए, कुछ ये फील कर रहे हैं कि वो दिमाग में कुछ चल रहा है?
2: जी जी।

0: बिल्कुल आपने सही कहा, अगर कोई किसी तरह का कोई भी सूचना को छिपाना चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी सोच है जिसके कारण वो रुक रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये रेंट ना आ रहा है, कितना कैलकुलेशन इनकम टैक्स का हो सकता है, सब बातें, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है कितने व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं, सिर्फ इसकी जानकारी हमको चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया ये जानकारी को न छिपाएं। आपके घर में कोई रेंटर रह रहे हैं तो उसकी सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। दूसरा है कि वो अपना वो करेंट डिटेल्स वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अपना वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो उस संबंध में भी लोगों को समझाया जा रहा है और उसमें भी सफलता हम लोगों को मिल रही है।
1: मैं यहाँ पे आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में सुन रहे तमाम श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से संजय सर ने हमें बताया कि हमें वो भ्रम की स्थिति रखनी ही नहीं है। आप खासकर उन लोगों के लिए संजय सर ने एक मैसेज दिया कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, आपके घर पे वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, नंबर्स से मतलब है, बाकी किसी चीज से इसका कोई भी जुड़ाव नहीं है, तो आप भ्रम की स्थिति ना रखें, आप सहयोग करें। सर, आपको ये भी इश्यूज फेस हो रहा है कि कहीं आप अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं या किसी इलाके में जा रहे हैं तो एंट्री होने में अधिकारियों को दिक्कत हो रही है?
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक है, बहुत सारे फ्लैट है, तो वहाँ पे जब हमारे न्यूमिनेटर्स या सुपरवाइजर जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको एंट्री करने के लिए लोग हेजिटेट कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का एक बैठक भी यहाँ बुलाया था और सबको पूर्व में ही समझा दिया है कि भाई ये कार्य आपके यहाँ होना है, हमारे इल्यूमिनेटर और हमारे सुपरवाइजर आपके यहाँ जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद गया था बहुत सारे अपार्टमेंट में और वहाँ के सेक्रेटरी और जो भी वहाँ पे पदधारक है कमिटी के, उनको बुला के मैंने समझाया और उन लोगों ने हालांकि काफी कोऑपरेट किया और ये प्रक्रिया अब अच्छी ढंग से चल रही है। लेकिन शुरू में लोगों ने हेजिटेट किया और उन्होंने इनको एंट्री करने से मना किया, लेकिन अब ये समस्या धीरे धीरे कम हो गई।
1: सर, हमने अपने पहले कार्यक्रम में जब हम भारत की जनगणना 2027 विषय पे जब पहला अपना अंक हमने दिया था, उसमें हमने ये भी बताया कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है और सबके सहयोग से पूरी होगी। तो जब रांची नगर निगम की बात करते हैं तो आपने कहा कि पहले से अब चीजें स्मूथ हो रही है, तो आप प्रचार प्रसार का क्या तरीका अपना रहे हैं, कैसे लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे, जो बात हम कह रहे हैं आज भी एक माध्यम है आकाशवाणी के माध्यम से आपकी बात को रखा जा रहा है, लेकिन और कौन कौन से माध्यम को आप अपना रहे हैं?
0: देखिए, प्रचार प्रसार में हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्य का जिंगल्स के द्वारा हम लोगों का प्रचार प्रसार किया गया। जितने हमारी वाहन है जो हम लोग जो कचरा उठाते हैं डोर टू डोर जाके, सभी वाहनों में हम लोगों ने जिंगल्स लगाया और उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा हम लोग होर्डिंग्स, डिजिटल होर्डिंग्स के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मेन स्थल पे जो होर्डिंग्स है वहाँ पे हम लोगों ने जनगणना से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है उसको होर्डिंग के माध्यम से पब्लिक के बीच हम लोग ले जा रहे हैं और डिजिटल होर्डिंग जहाँ जहाँ डिजिटल हम लोग प्रचार प्रसार कर

0: इनमेरेटर जा रहे हैं, रुक रहे, पूछ रहे, सो इस पे भी आपने ध्यान रखा है?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप देख रहे होंगे गर्मी काफी बढ़ गई है और बहुत ही मुश्किल है निकलना। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे इनमेटर, हमारे सुपरवाइजर, हमारे चार्ज अफसर, हमारे अन अफसर, आरएमसी के भी जो अफसर है लगातार फील्ड में है, तो हम लोगों ने अपने इनमेटर और सुपरवाइजर के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि भाई उनको कम से कम ORS पैकेट्स और फर्स्ट एड किट की व्यवस्था हम लोगों ने उनके लिए की है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखिये चिकित्सीय दल का भी गठन किया है। हम लोग सिविल सर्जन के साथ भी संपर्क में है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके डॉक्टर का भी यूज करूंगा। इसके लिए हम लोग हमारे यहाँ जितने अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं 25 हैं हमारे यहाँ, हमारे सामुदायिक भवन, हमारे वार्ड कार्यालय सभी में हम लोगों ने इन सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा हमारे पास एक मोबाइल गाड़ी भी हमने रखी है जिसमें ORS पैकेट्स और फर्स्ट एड किट उसमें रखा रहता है। कहीं भी फोन आने पे हमारे जैसे चार्ज अफसर को किसी ने फोन कर दिया कि फलाना की तबीयत खराब है इनमेटर को, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिक जो चीज है उनको तुरंत हम लोग उपलब्ध, ताकि एक मोटिवेशन उनका बना रहे
0: बिल्कुल,
1: और उनको ये फील हो कि पूरा आरएमसी एक परिवार है, जितने यहाँ पे स्टाफ है सभी लोग मिलके आपके साथ खड़े हैं।
0: निश्चित तौर पे ये भी एक फाइटर है, हम हमेशा फाइटर की बात करते हैं, ये भी एक फाइटर है और हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में अब भी हम संजय सर से बात कर रहे हैं और संजय सर बता रहे कि किस तरीके से फील्ड में चुनौतियां आ रही हैं, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। सर चीजें बदल रही है क्योंकि 16 तारीख से शुरू हुआ और ये 14 जून तक होना है, चीजें बदली है, चीजें स्मूथ हो रही है?
1: ये बिल्कुल, शुरू में फर्स्ट 2-3 दिन में काफी परेशानी आ रही थी, अब धीरे धीरे चीजें स्मूथ हो रही है क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी लोगों के पास जानकारियां पहुंच रही है और काफी कोऑपरेशन अब हमको मिल रहा है।
0: संजय सर एक सवाल को मैं शामिल करना चाहूंगा, सो क्योंकि अलग अलग जगह से इनमेरेटर हैं, आपने बताया कोई शिक्षक है, कोई अलग कार्य से आया है, कोई अलग विभाग से आया है और वो दूर दूर से भी है, कोई हो सकता है बुंडू से हो, कोई तमाड़ से हो, कोई खूंटी से हो, कैसे चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एरिया नया, जगह नया, लोग नए, कैसे मैनेज हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है और शुरू में परेशानियां हुई क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स आए हैं मोस्टली टीचर्स ग्रामीण एरिया से डिपुटेशन हुआ हमारे यहाँ, उनको हमको प्रगणक बनाना पड़ा है या सुपरवाइजर बनना पड़ा है। तो जैसे बुंडू और तमाड़ से लोग आ रहे हैं तो उनको इस क्षेत्र का आइडिया बहुत नहीं है, तो उन्होंने जो मैप हम लोगों ने बना के उनको दिया तो उस मैप के अनुसार वो ठीक से भ्रमण कर सके, ठीक से लोगों के बीच पहुंच सके, तो उनको सहायता करने के लिए हम लोगों ने ये किया कि हमारे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, जैसे कि स्वच्छता से रिलेटेड जो सुपरवाइजर्स हैं जो दिन भर फील्ड में रहते हैं उनके साथ मैंने उनको टैग कर दिया है। अब उनका ये काम है कि दूर से आने वाले जो भी इनमेटर है सुपरवाइजर उनके साथ उनको वो बता दें कि उनका एरिया कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ तक उनका सीमा है, तो ये चीज उनको बता रहे हैं ताकि मैप क्षेत्र का वो भ्रमण ठीक से कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हर एक चार वार्डो पे एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की है जो ये देख रहे हैं, वो भी इनमेटर सुपरवाइजर से लगातार फोन से बात कर रहे हैं, खुद भी फील्ड में घूम रहे हैं ताकि जो समस्या आ रही है उसको नोट कर रहे हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर बैठ के उसका कैसे निदान निकले हम लोग तुरंत डिसीजन लेके फिर अगले दिन उन पे मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो जाने के कारण कार्य की प्रगति का मॉनिटरिंग करने में हमको काफी सुविधा हो रही है।
0: सर क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में अभी आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं?
1: मेरा अपील है कि भाई हमारे इतने प्रगणक पर्यवेक्षक इतनी कठिन परिस्थिति में, इतनी गर्मी में भी आपके पास पहुंच रहे हैं, आपके लिए पहुंच रहे हैं, देश के लिए पहुंच रहे हैं, तो मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करता हूं कि कृपया आप प्रगणक या पर्यवेक्षक को पूर्ण सहयोग करें, अपनी जानकारी उनको उपलब्ध कराएं और आपकी जानकारी सुरक्षित है आपको पहले ही पता चल चुका है, तो किसी तरह का कोई हेजिटेशन न रखें।
0: संजय सर आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुए और बढ़ते कदम कार्यक्रम की श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी नागरिकों को जो ऐसे सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में आपने सबसे पहले सुना प्रभात कुमार को, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड, और फिर हमारे साथ जुड़े संजय कुमार अपर नगर आयुक्त रांची नगर निगम रांची जो कि शहर जनगणना पदाधिकारी भी हैं, और इन्होंने वो तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से काम हो रहा है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिस तरीके से हमने कहा कि आरएमसी शहरी क्षेत्र को देख रहा है तो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे जिला प्रशासन अपने तरीके से हैंडल कर रहा है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो रही है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि ये जो भ्रम की स्थिति है, ये जो भ्रमित सवाल है उसे हम भूल जाए, ये सिर्फ जनगणना के आंकड़े हैं जो हमारे विकास के लिए हैं, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राज्य के प्रगति के लिए हैं। साथ ही एक टोल फ्री नंबर है, आप इसे राइट डाउन कर ले, 1855, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1855, ये सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आपको

कोई भी जानकारी लेनी है आप सीधे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बढ़ते कदम। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, सूत्रधार थे कमलेश कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत कार्यक्रम विवरण हम आपको बताते चले आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी सुबह थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मी गाने। प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 और 6 आप सुन सकेंगे। 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है अत्यधिक गर्मी के मौसम में रखें सावधानी, लू से बचें सावधानी बरतें। रियाज में आज का दिन विषय पर भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में भी जानकारी दी जाएगी। रोचक तथ्य और समसामयिकी भी आपसे साझा किए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है खेत से कारखाने तक पानी की सही खपत और बचत विषय पर आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर आज कुछ चर्चा होगी। तपती गर्मी में सेहत की सुरक्षा, क्या खाएं, क्या पिएं और कैसे रहें फिट, इस विषय पर भी आप से कुछ जानकारियां साझा किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रशांत गौरव।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम 6:02 पे, और हमारी दुनिया कार्यक्रम 6:32 पे आप सुन सकेंगे। हमारी दुनिया कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा, सूचना सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। इस विषय पर भी चर्चा होगी। हिंदी वार्ता बच्चों को आत्मनिर्भर और व्यवहार कुशल बनाए, इस विषय पर वार्ताकार हैं धीरज कुमार। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज प्रश्नोत्तरी का विषय है गर्मी के मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल 7:11 पे प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्मी गाने रात्रि 8 बजे। 8:30 पे सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

नाटकों के कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे नाटक शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पे। इस कार्यक्रम में आज गिटार पर राग बागेश्वरी में आलाप और गत प्रस्तुत करेंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट रात्रि 10:30 पे, और साथ ही गिटार पर राग मिश्र गारा भी प्रस्तुत किया जाएगा। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम सांझ सरगम।

ये रात फिर ना आएगी का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना एसएस बिहारी की थी, संगीत था उपेंद्र नय्यर का। और आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था और आईएफ ने ये गीत, फिल्म गाइड का ये गीत है, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं, रचना शैलेंद्र की, संगीत सचिन देव बर्मन का।

इस गीत से पहले श्रोताओ आपने सुना फिल्म अनपढ़ का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। रचना राजा मेहदी अली खां की थी, संगीत मदन मोहन का था और आईएफ ने फिल्म सिलसिला का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, रचना जावेद अख्तर की है। संगीत शिवहरी का, आइए सुनते हैं।

0: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मधुबन में गिरिडीह ग्रामीण और कोडरमा जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। गिरिडीह जिले के मधुबन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि यह काम भाजपा के शासनकाल में चुनाव आयोग करवा रहा है। आदित्यपुर स्थित RIT थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में नाबालिग के साथ अपहरण एवं दुष्कर्म के चर्चित मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 3 दोषियों को 25-25 वर्ष कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सिमडेगा में वन विभाग ने अवैध वन उपज कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख रूपये मूल्य का अवैध केंदु पत्ता जब्त किया है। गुप्त सूचना मिलने पर DFO शशांक शेखर की टीम ने गठन कर सिमडेगा के बांसजोड़ में ट्रक की जांच की गई। इस संबंध में वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस भवन रांची में मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में अवैध गौवंशीय पशुओं के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर कपाली क्षेत्र के अलग अलग 6 से 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी का अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित अंचल के दंडाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर तथा ओपी प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवानी में। और आज के सफर में मैं हूं आपका दोस्त रजत।
1: और मैं उदय। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, हम हर रोज की तरह आज भी हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों हम सुनेंगे प्यारे प्यारे गाने भी, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और एंटरटेनमेंट के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। लेकिन दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस गर्मी के मौसम में सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, समर सीज़न जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, समर वेकेशंस में घूमने जाना, फन एक्टिविटीज़, समर हॉलीडेज़ का लुत्फ़ उठाना हमें

0: पसंद है। गर्मी का मौसम मौज मस्ती और आराम का समय होता है, लेकिन इस मौसम में होने वाले खतरों के प्रति हमारा जागरूक होना भी जरूरी है। गर्मी के मौसम में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
1: गर्मी के मौसम में लू, हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में तापमान रोज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। सावधानी रखकर ही हम गर्मी के मौसम में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: हाँ उदय, शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी हमें इस मौसम में बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। प्यास ना लगे तब भी थोड़ा थोड़ा कर पानी पीते रहना चाहिए। ORS, नींबू पानी, छाछ, सत्तू शरबत, नारियल पानी, आम पन्ना, इन सब का गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ये नमक और मिनरल की कमी को भी हमारे शरीर में पूरा करते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, धूप से बचाव करें। दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय धूप सबसे तेज होती है और लू का खतरा भी ज़्यादा होता है। अगर निकलना पड़े तो छाता, टोपी, गमछा का उपयोग करें, सिर ढककर ही बाहर निकले।
0: हाँ उदय, हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, पूरे बाजू के कपड़े का उपयोग करें, शरीर को ढक कर धूप से बचाव करें। सनग्लासेस का भी आप उपयोग करें, इससे आंखों को आराम मिलेगा। घर को ठंडा रखें, दिन में खिड़की दरवाजे बंद रखें, पर्दे लगा दें, क्योंकि दिन के समय में धूप से ये गर्म हो सकते हैं। शाम को ठंडी हवा आने पर खिड़की दरवाजे खोलें, गीले पर्दे का भी आप उपयोग कर सकते हैं, इससे घर काफ़ी ठंडा रहता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही गर्मियों में हल्का भोजन करें, तेल मसाला तला भुना कम खाएं, दही सलाद मौसमी फल का सेवन करें।
0: गर्मियों में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ही लू की चपेट में आते हैं।
1: बिल्कुल, साथ ही बच्चों को पार्क या खुले मैदान में दोपहर में नहीं खेलने दें। बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़े, समय समय पर पानी पिलाते रहें। कभी भी बच्चों या पेट्स को बंद गाड़ी में नहीं छोड़े।
0: हाँ उदय, और साथ ही साथ जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे कि मजदूर, किसान, डिलीवरी वाले, कामकाजी लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में छांव में 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। सिर पर गीला कपड़ा बांध सकते हैं, अपने पास ORS इलेक्ट्रोल की बोतल रखें, चक्कर या कमजोरी के सिचुएशन में तुरंत काम को रोक दें।
1: बिल्कुल, पार्क की गई गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठें, ओवन बन जाती है। दोपहर में हैवी एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करें। कोशिश करें कि धूप में घर से बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें और अपना खास ख्याल रखें। और साथ ही सड़क पर भी देखें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, तो उनका भी इस गर्मी के मौसम में ख्याल रखें।
0: जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी के सेवन से बचें, क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। इस मौसम में ककड़ी, खीरा, तरबूज, बेल शरबत का सेवन करें, ताज़ा खाना खाएं। गर्मियों में हम सावधानी रखकर हीट स्ट्रोक, लू से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी और संयम हमें हमारे अपनों को बचा सकती है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए, तभी हम गर्मियों के मौसम का लुत्फ उठा पाएंगे। दोस्तों, आपसे बातें और भी करेंगे, पर आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है यूफानी कार्यक्रम में। दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और पलटते हैं इतिहास का पन्ना और जानते हैं आज के दिन घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन किसी एक दिन की बड़ी घटना इतिहास में एक बड़ा मोड़ ले आती है। आज 27 मई का यह दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों की तरह एक साधारण सा 24 घंटे का दिन है, लेकिन इस दिन के नाम पर इतिहास की कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। भारत के इतिहास की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन आज के ही दिन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नाम आज भी सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
1: हाँ दोस्तों, 27 मई 2010 को भारत ने उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है।
0: बिल्कुल दोस्तों, 27 मई 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश कानूनों को अहिंसक तरीके से तोड़ने का एक जन आंदोलन था। इसका मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना और औपनिवेशिक सरकार को जनता की ताकत का एहसास कराना था।
1: दोस्तों, 27 मई 1957 को देश में कॉपीराइट एक्ट पारित किया गया था। कॉपीराइट एक्ट रचनाकारों की मौलिक रचनाओं जैसे किताब, संगीत, फिल्में, सॉफ्टवेयर को अनाधिकृत उपयोग और चोरी से बचाता है। यह कानून रचनाकार और उनकी संपत्ति की नकल करने, बेचने या प्रदर्शित करने का विशेष अधिकार देता है।
0: 27 मई 1937 को गोल्डन गेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और लंबे पुलों में गिना जाता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और इंजीनियरिंग के शानदार नमूनों में से एक है। यह शानदार झूला पुल सैन फ्रांसिस्को शहर को मार्निंग काउंटी से जोड़ता है। इसका निर्माण 1933 में शुरू हुआ था और यह 1937 में बनकर तैयार हुआ था। इस विशाल पुल की कुल लंबाई लगभग 2.7 किलोमीटर है।
1: दोस्तों, 27 मई 1996 का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में लोकतांत्रिक आदर्शों की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अल्पमत में होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के बजाय संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी।
0: दोस्तों, बातें आपसे आगे और भी करेंगे, पर लेते हैं आइए एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, हम युवा दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम रोजगार पा सके, और रोजगार पाने के लिए हम युवाओं का कौशल के साथ तैयार होना भी बेहद जरूरी है। ये दोस्तों, आज हम आपको ऐसी एक सूचना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हम युवाओं के कौशल को बढ़ाने में बेहद ही कारगर साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिहार और झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रोजगार महानिदेशालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर रांची स्थित केंद्र के सौजन्य से बिहार एवं झारखंड के एससी एसटी उम्मीदवारों हेतु 2026-27 में छात्रवृत्ति के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम में अनुलिपि, टंकन, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग, ओ लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शामिल है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10+2 या उसके समकक्ष की डिग्री के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन पत्र रोजगार महानिदेशालय आईटीआई परिसर हेहल रांची से 18 मई से 19 जून तक की किसी भी दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर के आज के समय में बेहद ही हम युवाओं के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम युवाओं के लिए बेहद ही सुनहरा अवसर है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ाएं, अपने कौशल को बढ़ाएं और रोजगार की ओर एक नया कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आपसे बातें और भी करेंगे, यहाँ पर लेते एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में हवाएं काफ़ी गर्म और सूखी हो जाती है, जिसे लू कहते हैं। जब तापमान बहुत ज़्यादा हो और हवा में नमी कम हो तो लू चलती है। यह शरीर पर काफ़ी बुरा असर डालती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जो लोग दिन में बाहर काम करते हैं, उन्हें लू का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि लू लगने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्यों दे?
1: बिल्कुल दोस्तों, सिर दर्द और चक्कर आना, बहुत तेज प्यास लगना, त्वचा का लाल और सूखा होना, उल्टी या मितली होना, कमजोरी और थकावट लू लगने के लक्षण हैं।
0: हाँ दोस्तों, लू लगने पर मरीज को तुरंत सबसे पहले ठंडी छांव वाली जगह पर ले जाएं, उसे धूप के कांटेक्ट से बचाएं और धूप के कांटेक्ट से मरीज को तुरंत दूर करें। मरीज के कपड़े ढीले करें, गीला कपड़ा या तौलिया सिर गर्दन कलाई पर रखें। अगर मरीज को आप अपने घर ले गए हैं, किसी कमरे में ले गए हैं, अगर वहां पंखा हो तो उसे तेज चला दें या हाथ से मरीज को हवा करें। ठंडे पानी से मरीज के शरीर को पोछें।
1: अगर मरीज होश में हो और उल्टी नहीं हो रही है तो धीरे धीरे ORS, नींबू पानी, नारियल पानी पिलाएं। एक बार में ज़्यादा ना दें, थोड़ा थोड़ा करके दें ताकि उल्टी ना हो।
0: अगर मरीज होश में है या ठीक से उसे निगल नहीं पा रहा है तो पानी, जूस कुछ भी मुंह में ना दें, क्योंकि बहुत ठंडा या बर्फ सीधे उसके शरीर पे ना डालें। मरीज को चाय कॉफ़ी ना दें क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बुलाता है।
1: मरीज को अकेला नहीं छोड़ें। लू का मरीज कभी भी बेहोश हो सकता है, इसलिए हमेशा पास रहें।
0: लू जानलेवा है पर सावधानी से इससे बचा जा सकता है। अगर मरीज को तेज बुखार, उल्टी या बेहोशी हो तो घरेलू नुस्खों में समय बर्बाद ना करें। तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों, सावधानी ही सुरक्षा है। दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे आपसे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रजत
1: और उदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रमिक लोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की हम सफर और आपकी दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार साथियों। और आज हमारे साथ हैं प्यारी सी पूजा, तुम्हें भी नमस्कार।
1: नमस्कार श्वेता, और सभी श्रमिक साथियों को भी प्यार भरा नमस्कार और जोहार। दोस्तों, इतनी गर्मी है कि कोई काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। लेकिन पूजा, हमारे साथी जो है वो हर मौसम में काम करते हैं, बस जरूरी ये है कि थोड़ी सावधानी बरते, नहीं तो अभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के बहुत से मरीज आ रहे हैं। तो गर्मी में अपना अगर ध्यान नहीं रखेंगे हमारे साथी तो वो भी इसके शिकार हो सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, वैसे सावधानी तो हर क्षेत्र में जरूरी है, गर्मी के मौसम में सबसे जरूरी है कि पानी की बचत की जाए। जिन साथियों पर जो कहते हैं ना कि दिक्कत आ जाती कई इलाकों में, कई स्थानों पर, आप देखेंगे जैसे गर्मी आते हैं वो उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला जाता है। और जब जल स्तर नीचे जाता है तो कुएं का पानी हो, चाहे आपके घर में पानी आता हो बोरिंग से, वो पानी काफी मेहनत के बाद आता है।
0: बिल्कुल,
1: यानी वो एकदम निचले स्तर पे चल जाता है जहाँ पे आपकी बिजली भी खपत होती है, और अगर आपके पास कुआं है तो आपका पानी पूरा सूख जाता है और आपको बहुत सारा परेशानी होता है।
0: बहुत सही कहा पूजा, क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है कि गर्मी शुरू होते ही कई कई इलाके मोहल्ले में जहाँ की पानी की किल्लत हो जाती है उन्हें टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है।
1: और ये मुझे लगता है श्वेता की अभी ये 5-6 साल पहले ये चीजें हमारे यहाँ शुरू हुई है। पहले हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं थी, हमारे यहाँ भरपूर गर्मी में भी पानी हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, कई सारे ऐसे इलाके हैं, रांची की बात कर ले तो कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी की समस्या शुरुआत में ही हो जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे ही गर्मी शुरू हुई भू जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि पीने के पानी की भी दिक्कत हो जाती है। और बहुत ज्यादा बोरिंग जो कराया जा रहा है, बहुत नजदीक कई कई बोरिंग हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूजल स्तर तो नीचे जा ही रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब जिम्मेदार बने, जवाबदेह हों, न कि पानी का हम लोग फिजूल खर्ची करें, न बर्बादी करें। इससे भी पानी हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो पानी की दिक्कत है नहीं, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी करते हैं, गाड़ी धोने में या फिर फूल पटाने में, अपने पेड़ पौधों को पटाने में, या फिर बहुत तरीके से देखा जाए तो पानी की बर्बादी होते रहती है कंटिन्यूअस लगातार।
1: आप उसके अच्छे समाधान ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग घरों में आरओ का पानी पिया जाता है, तो उससे जो वेस्टेज पानी जो निकलता है उसका अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, उसको उसका रखरखाव कर ले, तो उन्हीं पानी से आप बर्तन भी धो सकते हैं।

0: उन्हीं पानी से आप कपड़े धो
1: सकते
0: हैं। आप जो पौधे की बात करें, भी पौधे तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उनको भी बचाने के लिए आप उस पानी का इंतजाम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होते
0: रहता
1: है। और
0: कई ऐसे इलाके हमारे यहाँ हैं जहाँ पर स्ट्रिक्टली ये कहा जा रहा है कि वहाँ बोरिंग ना हो, लेकिन बावजूद इसके लोग जान रहे हैं, उसके बाद भी मतलब इतने धड़ल्ले से बोरिंग हो रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे नगर निगम हैं, जो उन्हें भी एक ऐसी पैनल जरूर बनानी चाहिए जहां जिस इलाके में पानी की समस्या अभी भी नहीं है, या फिर उसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, जहां पे कह सकते हैं बोरिंग की नहीं बनना चाहिए, और वहां अगर घरों में बोरिंग है तो उनको फाइन काटना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, और अभी कुछ ही महीनों में ये बरसात आने वाला है, तो ऐसे में पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी कि पानी की बचत हम कैसे करें ताकि वो जो भूजल स्तर वो किसी तरह से ऊपर उठे। और दोस्तों, खेती हो या कारखाना, हम हर जगह पानी के बिना उत्पादन तो संभव है नहीं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पानी की सही खपत और बचत का ध्यान रखा जाए। और दोस्तों, गर्मी के मौसम में पानी का स्तर जो बहुत नीचे चला जाता है तो पीने के लिए जो पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए बचत हमें शुरुआत से ही करनी होगी।
0: बिल्कुल, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं बरसात का समय हमें हरियाली के साथ साथ हमारा जो भूमि जल है वो बढ़ाने में बहुत मदद करता है, लेकिन वो तब मदद करता है जब आपके घरों में ड्रेनेज सिस्टम अच्छे बने हो, वाटर हार्वेस्टिंग की चीजें आप सही से आपने बनाई हो। क्योंकि अभी जो जिस तरह से हम अपने मकान बना रहे हैं, कंक्रीट का एक तरह से मतलब पूरा सफाया कर दे रहे हैं पेड़ पौधे अपने आसपास से, और एक ऐसा जाल जहां से अगर बरसात में पानी आता है तो आपका पानी पूरी तरीके से बह के बाहर निकल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: नालों में चला जाएगा, तालाबों में चला जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो तो खुले में हो गए,
1: जमीन के भीतर जाने का जाने कोई जगह ही नहीं छोड़ा है हमने अपने घरों के आसपास, वो सड़कों के अलावा जो अपने घर के आसपास हम लोग उसे ढाल देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बाउंड्री के अंदर भी कहीं जगह ऐसा नहीं है कि जहां पानी की बचत हो सके, पानी भीतर जा सके। तो इसलिए हर घर में चाहिए कि एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, जो कि कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है। आपके घर का जो छत का पानी है या ढाल है उसे पाइप के द्वारा आप जमीन के अंदर ले जाए। बस इससे क्या होगा कि छत का पानी आपका वो लगातार वो सड़कों पर नहीं बहेगा, वो बारिश का पूरा पानी जमीन के भीतर चला जाएगा, जिससे कम से कम आप अपने घर और साथ ही उसके आसपास के घरों के लिए भी ये जो पानी की जो किल्लत है उससे आप बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और पानी की समस्या जैसे सुनते हैं तो सबसे पहले हमें राजस्थान याद आता है कि राजस्थान, जैसे अब हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें लगता है कि अब हम नहीं बाहर निकल सकते, तो आप जरा सोचिए राजस्थान जैसे इलाकों में लोग कैसे रहते होंगे,
1: जहां 48 डिग्री 49 डिग्री।
0: मतलब आज हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर ये समस्याएं अगर अभी हम लोग सॉर्ट आउट नहीं करते हैं या इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, तो ये भी कुछ दिनों में रेगिस्तान की तरह ही बन जाएगा।
1: बिल्कुल, तो अब हमारे साथी तो जानकारियां तो आगे और भी लेंगे, लेकिन क्यों ना उन्हें एक प्यारा सा खूबसूरत गीत सुना दिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: नहीं नहीं, मैं तो बाहर का काम नहीं करने वाली। देख रही हो, गर्मी का प्रकोप मुझे बहुत डर लगता है। कई इलाकों में 40 से ऊपर जो पारा है वो पहुंच रहा है और लू लगने का बहुत खतरा है। मुझे नहीं जाना बाहर।
4: बिल्कुल, अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और गर्मी से जुड़ी बीमारियां लग सकती हैं। इसीलिए तो जो उपाय बता रही हूँ उसे अच्छे से सुनो, क्योंकि बाहर तो काम करने निकलना ही होगा पर सावधानियां रखते हुए।
3: बिल्कुल, दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, वो भी घूंट घूंट करके। अभी एक चलन हो गया है, हम बॉटलों में पानी रखने लगे हैं और कई दफा तो हम ऊपर से ही, और कई दफा क्या कहें, हमेशा ही वो ऊपर से पीने की जो आदत है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए घूंट घूंट करके ही पानी पिए, और एक बार में ज्यादा पानी नहीं पिए कि आपको 4 से 5 लीटर पीना है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ढक ढक ढक ढक करके पानी पी लिए। बिल्कुल ऐसा ना करें। और अगर आप बाहर निकलते हैं या घर पे भी रहते हो तो घर में भी बहुत गर्मी लग रही है, नींबू पानी, मट्ठा, जलजीरा, लस्सी, नारियल पानी, आम पन्ना, जो भी इस तरह के तरल हैं वो ज़रूर लें। जब भी कमज़ोरी महसूस हो तो ORS का जो ग्लूकोज है वो भी आप ले सकते हैं। प्यास ना भी लगे ना श्वेता तो भी पानी पीना है, क्योंकि कई दफ़ा आपका बॉडी वो सिग्नल नहीं देता और बहुत सारा पानी वो खत्म कर देता, उसके बाद आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है।
4: ये पूजा तुमने बहुत सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्यास फील नहीं कर रहे होते हैं लेकिन आपके शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, और ऐसे में ही लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। और हमारे साथी जो गर्मी के मौसम में बाहर काम कर रहे होते हैं उनसे तो यही कहना चाहेंगे कि अपने साथ पानी ज़रूर रखें और लगातार पानी पीते रहें, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीने के द्वारा पानी निकलते रहता है और आपको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में पेट आसानी से ख़राब हो जाता है, इसलिए खान पान का भी खास ध्यान रखें। और इस मौसम में बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि बहुत जल्दी खाना इस मौसम में खराब हो जाता है। हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन लें, तला भुना, मसालेदार और भारी खाना बिल्कुल न ले। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जो ठेले पर जो जितने जो खाने अभी बिक रहे हैं फास्ट फूड के आइटम्स हो गए, वो सब तो बिल्कुल अभी अवॉइड करें। अपनी डाइट में हरी सब्जियों को, सलाद को, दही, ताजे फल, इन सब को शामिल करें। पानी वाले फल जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर, जो आपके आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, वैसे फलों का सेवन जरूर करें।
3: बिल्कुल, और कोशिश करें कि दोपहर के टाइम 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अगर काम ना हो तो बाहर ना निकले, खास करके धूप में ना निकले, क्योंकि ये इस वक्त जो धूप का कहर है वो काफी खतरनाक होता है। इस समय कोशिश कीजिए कि आप घर पे रहें, और अगर आपको बाहर निकलना ही है, बहुत जरूरी है, तो अपने सर को ढके, चेहरे को ढके, अपने साथ पानी ले जाएं, सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने।
4: हाँ बिल्कुल, तो इन सारे जो भी ये पूजा ने बताया, जो हमने बातें की, इन ये सब आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तभी तो आप काम कर सकेंगे। और आप बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत AC या कूलर के सामने बिल्कुल ना बैठें। पहले 15-20 मिनट रुकें, तापमान सामान्य हो जाए तो फिर आप AC में या कूलर में जाके बैठे, और साथ ही ठंडा पानी, तो
3: बिल्कुल
4: ऐसा ना कि घर आप आए और फ्रिज का पानी पी लिए।
3: आप अभी घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, घड़े की पानी ठंडी भी होगी और आपको उसका हार्मफुल कोई असर नहीं होगा। और साथ ही अगर आपके आसपास या आपको कभी चक्कर, उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द हो तो तुरंत छाया में लेट जाएं, ठंडा पानी पिएं, गीले कपड़े से खुद को थोड़ा साफ करें, यानी थोड़ा ठंडक अपने बॉडी को दें, और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
4: हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और दोस्तों, हर तरफ से अगर जब तक हम अपने शरीर के साथ सावधानी नहीं बरतेंगे और इन उपायों को नहीं अपनाएंगे तो हम किसी भी तरह से बीमार पड़ सकते हैं। और आजकल बहुत लोगों को या खासकर महिलाओं को एनीमिया की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो खान पान की कमी हो या उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी होती है कि उनमें खून की कमी हो जाती
3: और
4: है।
3: एनीमिया का नाम लेते ही हमें लगता है बस ये महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का जो खान पान है, जो लाइफ स्टाइल है,
4: वो इतना
3: इतना लापरवाही भरा होता है जिसमें सभी को कह सकते हैं लगभग लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है।
4: बिल्कुल।
3: तो चलिए अभी हम एक भेंटवार्ता सुन लेते हैं एनीमिया कारण लक्षण और उसके बचाव के बारे में, जिसे लेकर आई है डॉक्टर श्वेता शर्मा, स्वाति शर्मा, और बात कर रही है हमारी श्वेता।
4: दोस्तों, हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है खून, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, या फिर खून के कम होने पर या किसी इस तरह की समस्या होने पर हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने के लिए आज बात कर रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति शर्मा से। तो मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खून का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है।
5: खून, जैसे हम लोग सबको ही जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, बहुत सारी चीज़ों को वो कैरी कर रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाना और ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको निकालना, ये सारा जो पूरे शरीर से में ऑक्सीजन, RBC ही उसको बोलते हैं, जिसको लाल रक्त कण हम लोग बोलते हैं, शरीर में दौड़ रहा होता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स में आता है, फिर और इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य का काम रहता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोई बच्चा कोई कमजोर दिख रहा है तो बोलते हैं खून की कमी हो गई है, खाना पीना अच्छे से खाओ, उस तरह की चीज़ है। तो खून तो सबको ही जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसका कंस्टिट्यूएंट बहुत सारा अलग अलग है। खून बेसिकली बना हुआ रहता है लाल रक्त कण से, सफ़ेद रक्त कण से। तो लाल रक्त कण का मेन काम रहता है ऑक्सीजन को इधर से उधर कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को करना। जैसे कि जो सफ़ेद कण रहते हैं वो शरीर को लड़ने की क्षमता, कोई बीमार पड़ गया कुछ हो गया तो सफ़ेद रक्त कण जमा हो जाता है, लेकिन लाल रक्त कण हर समय ऑक्सीजन और इसके लिए काम कर रहे होते हैं।
4: बिल्कुल। तो ये जो खून जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के शरीर में जब खून की कमी होने लगती है तो कई सारी बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो खून की कमी के कारण होती हैं?
5: इसका सबसे जो कॉमन है बीमारी, उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। जो आयरन डिफिशियंसी है एनीमिया, जैसे हम लोग जो खाते पीते हैं उसमें से हम लोग कहते हैं विटामिन मिनरल यानी खनिज खाना, तो आयरन एक तरह का लौह जिसको बोलते हैं, एक तरह का खनिज रहता है जो इसी खून में बंधा हुआ रहता है, और अगर इस आयरन की कमी हो गई तो आपको जो ऑक्सीजन पहुंचाने ले जाने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा वो जल्दी हांफने लग जाएगा, खून की जल्दी थकावट उसमें हो जाएगी। तो एक तो आयरन की कमी से हो जाती है, दूसरा विटामिन की कमी, विटामिन B12 एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको बनाने में हेल्प करता है, जो हम लोग का RBC बन रहा है अगर उस समय, इसलिए प्रेगनेंसी के समय में आप देखिएगा कि तीसरे छमाही से ही, महीने से ही विटामिन B12 और फोलेट को स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों? ताकि RBC अच्छा बने। RBC बनता तो हमेशा ही है क्योंकि वो 120 दिन में मर जाता है।
4: बिल्कुल।
5: और फिर नया बनने लगता है, लेकिन वो अच्छा बने और समय पे बने इसके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो अच्छे से नहीं खा पी रहे हैं आयरन की चीज़ें, विटामिन की चीज़ें, उनमें खून की कमी निश्चित तौर पर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि खून की कमी से लड़कियां ज़्यादा जूझती हैं, क्योंकि हर महीने उनका लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, महावारी हो रही है। तो यंग लड़कियां जिनमें नया नया शुरू हो रहा है, या फिर प्रेग्नेंट औरतें, इसमें आयरन का जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खान पान पे, और ये भी नहीं है कि ये बहुत महंगा चीज़ खाना पड़ेगा, और अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, झारखंड गवर्नमेंट भी, हर जगह मुफ्त में आयरन की टैबलेट और विटामिन फोलेट की टैबलेट, हर PHC में भी, सदर अस्पताल छोड़ दीजिए, PHC में भी सप्लाई होता है। रेडियो पर प्रचार आ रहा होता है कि सप्ताह में 2 दिन आयरन स्कूल जाने वाली लड़कियां जिनको महावारी स्टार्ट हो गई है उनको दिया जाए, ताकि इसीलिए ताकि क्योंकि एनीमिया इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है खून की कमी, कि आपका बाकी सारा काम, आप थके हुए आपको पता नहीं चल पाएगा, आप जो काम कर सकते थे 1 घंटा में उस काम को हो सकता है करने में 3 घंटा लगाइए, और उसमें भी बहुत थक जाइए।
4: जी मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि खून की कमी होने के कारण क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं, क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। जो हमारे साथी आपको सुन रहे हैं वो श्रमिक वर्ग के खास लोग हैं, तो जो हमारे श्रमिक साथी आपको सुन रहे हैं, श्रमिक महिलाएं जो सुन रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने खान पान में ऐसा क्या रखें जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी ना हो?
5: आयरन जो है बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, मेन है जो खून की कमी एनीमिया है वो 2-3 कारणों से हो सकता है। जो सबसे कॉमन कारण है वो है आपका आयरन की कमी होना, उसके बाद विटामिन B12 की कमी होना। तीसरा एक कारण हो जाता है जो आपका बोन हड्डी का जो मज्जा रहता है वही RBC बनाता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर किसी कारणवश उसमें खराबी हो गई तब तो उसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है। बोन मैरो से जो बनने वाली प्रक्रिया है अगर वही खराब है तो जेनेटिकली है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो खाने पीने की कमी है। और इसको खाने पीने के लिए कोई महंगा फल नहीं, अगर आप 2 केला रोज, जिस उसको आप देखिएगा किसी कोई ऑपरेशन करवाना हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि शरीर में खून की क्या कमी है, कितना खून है। केले को सबसे पहले, सबसे हाई आयरन वाला चीज केला है, केले को हमेशा ही अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। कोई बहुत महंगा फ्रूट भी नहीं है, आप 2 केला अगर रूटीनली खाती हैं तो आपका आयरन का बना हुआ रहता है। पालक में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। जितना भी ग्रीन कलर का चीज है सब में आयरन है, लेकिन केला पार्टिकुलरली फल में आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसको हमेशा अपने डाइट में शामिल करना चाहिए।
4: जी, और ये आपने बहुत सही कहा कि ये जो केला है या फिर जो मौसमी हरी सब्जियां हैं इनमें आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और भी क्या अपने खान पान में वो शामिल कर सकते हैं या दिनचर्या में ऐसा क्या शामिल करें जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की कमी से जूझना ना पड़े?
5: नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आप को खुद से जज करना होगा और बहुत जल्दी पहचानना होगा कि पहले से उनके काम करने की जो क्षमता है वो कम तो नहीं हो गई है। अगर वो लगातार थक जा रहे हैं तुरंत, इसका मतलब है कि आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि हर महीने उनका रक्त तो ऐसे ही जा रहा है, तो खून की कमी होना औरतों में, लड़कियों में बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले अपना जांच करवा लें। CBC एक बहुत सिंपल जांच है, अगर प्राइवेट में भी जाएंगे तो सस्ते में होता है और हर सरकारी में मुफ्त में उपलब्ध है। अगर RBC का कंसंट्रेशन, उसी में हीमोग्लोबिन का भी कंसंट्रेशन पता चल जाता है, और हीमोग्लोबिन और RBC अगर कम मिल रहा है तो आयरन टैबलेट का सप्लीमेंट तुरंत लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका काम करने का क्षमता आप ही जो है वो पूरे परिवार की धुरी रहती हैं। अगर आप थक जा रही हैं अपने, तो आप सभी काम में रिड्यूस करिए, हो गया ना
4: जी।
5: जैसे कि बच्चे का ध्यान नहीं रख पाइएगा, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाइएगा, तो सिंपल टेस्ट कराइए, और सिंपल टेस्ट करा करके अगर खून की कमी रहती है आयरन सप्लीमेंट लीजिए जो हर जगह फ्री मिलता है। अगर विटामिन बी की कमी हो रही है तो विटामिन B12 को लीजिए, वो भी हर जगह मिलता है। लेकिन अपने आप को जज करते रहना है कि पहले से थकावट ज्यादा तो नहीं हो रही, हमेशा थकान महसूस होना, नींद आना, इस तरह का चीज। पहले आप बहुत स्फूर्ति महसूस करती थी, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा हो गया, बच्चे होने के बाद ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय अपना ध्यान आपको खुद रखना होगा आयरन का, क्योंकि आयरन टैबलेट में कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपका जो मल है या स्टूल है वो थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो वो आपको जल्दी ही उससे आप उबर जाइएगा। शुरू का 1-2 टैबलेट में ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो उससे मेटालिक टेस्ट, जो क्योंकि लौह खनिज ही रहता है तो उसका मेटालिक टेस्ट आता है, वो जल्दी ही फिर ठीक हो जाता है।
4: जी, जो साथी हमें सुन रहे हैं वो ये जान गए होंगे कि बस आप अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़े कुछ चीज़ों को शामिल करके आप खून की कमी से होने वाली कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। मैडम, आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, चलते चलते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
5: अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, बच्चों जो आजकल अगर आपको दिख रहा है कि पहले वो बच्चा मिट्टी नहीं खाता था और अब मिट्टी खाने लग गया है, चौक खाने लग गया है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसके पेट में कीड़ा हो रहा है। कोई भी चीज जो नॉर्मल से, अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का अल्सर है या आपको कॉन्स्टिपेशन के पाइल्स की समस्या हो जाती है तो आपको लगता है ये तो थोड़ा थोड़ा खून गिर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा चीज अनीमिया को इनवाइट करता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खून का जो बूंद बर्बाद हो रहा है वही आपको अनेमिक बना रहा है। तो बच्चों में इस तरह के अगर लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत उसका टेस्ट करवाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली पेट में जो भी होगा वो खून आपको बनने नहीं देगा। खाना जो आपको खा रहे हैं, पेट में अगर कीड़ा हो गया है तो कीड़ा ही सारा खाना खा जाएगा, तो फिर वो खून कैसे बनेगा?
4: बिल्कुल।
5: और इसके साथ ही जितने भी बुरी तरह की नशीली चीजें हैं उन सब से दूर रहने की बहुत जरूरत है। किसी को भी, सब कोई को ऐसा लगता है कि नशीली चीजों का उपयोग करने से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, पर वो ऐसा नहीं होता है, वो टेम्परेरी चीजें रहती हैं। जितने भी चीजें हैं, आप खैनी, शराब का सेवन या इस तरह का जो भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जो एनीमिया की तरफ आपको लेकर के जा रहा है, आपकी कार्य क्षमता को ये कहीं ना कहीं पॉजिटिवली नहीं अफेक्ट कर रहा है, निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, जो कि आपको उस समय फॉल्स ऐसा देता है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ताकत आ गया, पर वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं। आप खुद महसूस करेंगे बाद में जाकर के, जब नशा उतरता है तो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही होती है। तो खान पान के अलावा ये भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नशे से अपने आप को दूर रखें और अपने परिवार में भी अच्छी आदतें डालें। खान पान अच्छा रखिए, सुबह थोड़ा घूमने टहलने जाइए। ये कोई बहुत महंगी चीज़ है नहीं कि अगर आप अपने घर से लेके जो बगल का रोड है सुबह सुबह का ताज़ा सांस ले लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही रखेगा।
4: बहुत सही कहा मैम आपने कि जो हमारे साथी हैं अगर अपने खान पान को अगर इस तरह से दुरुस्त रखें, नशे से दूर रहें।
3: बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए खान पान बहुत ज़रूरी है और खान पान अच्छा रहना चाहिए। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही योजना के बारे में जो बेटी के भविष्य को सुरक्षित करती है। ये योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च को सुरक्षित करता है।
4: बिल्कुल दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई परिवारों को बेटियों की पढ़ाई लिखाई और शादी के भारी खर्च की चिंता होती है। इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि हर माता पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए आज से ही बचत शुरू करें।
3: बिल्कुल, आप अपने बेटी के लिए आज ही खाता खुलवाएं। जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक एक परिवार में अधिकतम दो बच्चियां अगर हैं, यानी दो बेटियां हैं, तो आप उनका खाता खुलवा सकते हैं। ये जो है जो रकम है 250 प्रति वर्ष से शुरू होती है। अधिकतम की बात करें तो एक वर्ष में 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं और ब्याज की दरें जो है ना वो बहुत ही अच्छी हैं, 8.2%।
4: बिल्कुल दोस्तों, 21 वर्ष के बाद खाता परिपक्व हो जाता है। 18 वर्ष के बाद पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे निकाल सकते हैं। टैक्स बचत में 1.5 लाख तक निवेश पर टैक्स की बचत हो जाती है। ब्याज और मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। और अब चलते चलते दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी और इनके जन्मदिवस को हम सब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
3: तो चलिए आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी नई सारी जानकारियों के साथ। आज के लिए मुझे यानी पूजा
4: और श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

ये था आज का श्रमिक लोक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं।

0: आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पंचायतों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों और सखी मंडलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान के शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुमला जिला के कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जिले के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं। लोहरदगा जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर बीती रात लोहरदगा शहर स्थित बड़ा तालाब परिसर में बनारस की प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर भव्य माँ गंगा का आरती किया गया। दीपों की जगमगाहट, शंखनाद, वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर गंगे की जय घोष के साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया।

0: पढ़ल परिवार सुखी परिवार
1: कार्यक्रम सुनवाइया सोभाई बहन मन के खेती बाड़ी में मोनिका पाटले जोहार और मोहसिन भाई और को जोहार
0: जोहार जोहार मोनिका बहन और खेती बाड़ी सुनवे सब किसान भाई बहन मन के मोहसिन भाई बटले हो जोहार
1: और तो, कहो भाई का हाल खबर है
0: हाल चाल तो एकदम नगदे है मुदा देखा थी तनी गर्मी ज़्यादा पड़े लाई है तो गर्मी से आदमी मन परेशान है और खेती बाड़ी भी जल्दी जल्दी सोखत है तो पटवन झटवन जल्दी करत है
1: सही बात रोरे कहली
0: और देखू एखन गर्मी में तो हमरे मन देखी कि खेती बाड़ी के बढ़िया से देखभाल करे के होला और
1: पटवन भी जल्दी जल्दी करे के होला
0: और दवाई के भी बेरा बेरा देते हैं रहे पड़े माने महंगा खेती हो जाए गर्मी में और अगर ऐसा में बढ़िया दाम नहीं भेटाए तो किसान मन के तो मरने कह सकिले और वह एखन हुआ थे
1: और देखो भाई हमरे कर किसान भाई बहन मन तो दिन भर कोनो ना कोनो फसल के लगाते रहतीला पशुपालन भी करते रहतीला लेकिन इनकर माध्यम से और दूसर चीज के अगर हमरे मन खेती करब तो अलगे से हमरे मन के मुनाफा भेटा सकेला है
0: एकदम बेस रावरे काली और हमरे खन देखा थी कि जैसे किसान मन के हमरे मन तो किसान के बीच में रहवैया आदमी मन है कि तो इतना मेहनत करत है राय दिन पटवन में लागल है गर्मी वैसे है खेत तुरंत सूख जाए ला दवाई भी बेरा बेरा देवे ला पड़े ला माने बगरा कचिया लागे ला कचिया बगरा नहीं भेटाते तो किसान मन के परेशानी हो जाए ला तो ऐसा कर किसान मन के तनिक मिक्स खेती हमरे मन कह सकी ला जिससे औषधीय और सुगंधित पौधों कर खेती जो हो तू मन कभी कह के हमरे मन जे कचिया कमा सकी और सब्जा सब्जी में कभी नुकसान हो चाहे कभी कम भाव बिके चाहे हमरे मन के बढ़िया कचिया नहीं भेटाए तू के भरपाई करल जा सके चल किसान भाई बहन मन के औषधीय और सुगंधित पौधा मन कर भी खेती करे के चाहिए और अखन सब कर भी मार्केट अब उपलब्ध है
1: सही बात है और जैसन की कहली औषधीय पौधे और सुगंधित पौधे कर बात कहली तो मुके ये अलग कि देखो अभी हमरे कर जीवगतर सावन तो ऐसा बनल जाए कि बगरा धूप में रह ली तो भी हमरे कर जीवगतर खराब होलक बगरा जार में रह ली तो हो खराब होला तो हमरे अगर औषधीय पौधे कर अगर खेती कर रही तो हमरे के अंगना दूर में दवाई भेटाती है
0: एकदम एकदम और देखो हमरे कर घरे दूर ठाँव बहुत तरह के औषधीय पौधा मन रहे मुदा हमरे मन नहीं जाने पा रही है चाहे तनी मनी रहे ले तुके कोई जानकार आदमी मन जड़ी बूटी जाने वाला उन्हें बताए ना तो हमरे मन उकर इलाज करी ले मुदा देखू जितना तरह के दवाई बने ले तो सब पहले पौधा से बने ले जड़ से बने ले पतई से बने ले माने कुल मिला के कहा जा सके कि गछे बिरिज से पौधा मन से दवाई बने ले तो हमरे मन अगर उके जाना बर उके लगा तो हमरे मन कर कंपनी वाला भी बगरा खेती कर ले जाबे
1: और देख लो सुपर कहली भाई और देखो इकरे संगे हमरे तो हमरे कर बात कर रहे थे देखो हमरे कर संगे संगे हमरे कर पर्यावरण में रहक वाला नाना रकम कर जीव जंतु मन ले भी गर्मी कर दिन ले बहुत नुकसान होला और हमरे कर जे जीव जंतु मन हथिन उनकर घर कर भी बढ़िया व्यवस्था करे के चाहिए है नी
0: एकदम एकदम देखो पशु मन भी हमरे कर पारिवारिक सदस्य कह सकीले काहे कि हमरे जे किसान भाई बहन मन ही तो पशु पर भी बहुत आधारित हमरे पशु से गोबर पावी खेती करे ले और इसे दूध पावी ल प्लस हमरे मन देखी ला कि अखन तो नवा नवा मशीन और ट्रैक्टर मन से हर जोती ले कुछ दिन पहले देखी देखत रही कि गरु से बैल से हमरे मन हर जोतत रही और बैलगाड़ी भी चलात रही गरु से और गाय से दूध हमरे मन मिले ला और गोबर उबर मिले ला तो खेती बाड़ी करे ले आसान हो ले तो देखो आवास प्रबंधन तो सबकर लिए जरूरी है तो हमरे मन कर एक तरह से पारिवारिक सदस्य मानल जा सके हमरे मन वैसे किसान भाई बहन में मानी लभी तो जहाँ पे हमरे मन पशु मन के रखी लेखन तो गर्मी कर बेरा है तो तनिकुन हवादार होना चाहिए छाहिर होना चाहिए और देखो गर्मी में बहुत मच्छर मन लागेला तो अगर संभव है तो तनिकुन पंखा उंखा कर व्यवस्था भी कर ले बढ़िया बात है
1: सही बात
0: तो गाँव देहात में हमरे मन देखी ले मोनिका बहन कि बहुत कोई अगर बत्ती जला देवे न चाहे और कोनो कोनो कर धुंगिया कर देवे न ताकि पशु मन के हम मच्छर नहीं लागे
1: तो करे के चाहिए भाई जैसन हमरे कर कायागतर बढ़िया है तैसन हमरे कर पशु मन कर भी कायागतर के भी बढ़िया राखब तक तो हमरे मन कचिया कमाब है नी तो भाई हमरे तो बातचीत करते है रहब
0: तो लेकिन और बगरा जानकारी करे के लागिन आओ जानी ले कि गर्मी कर मौसम में पशु कर जो रोग होए लगर प्रतिरोधक क्षमता के कैसे बढ़ाल जा सके ले और इकर बारे में बताते डॉक्टर दिनेश कुमार लाल
1: और इनकर से बतिया है कृष्ण जीवन पौराणिक
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लेकिन जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है तपती गर्मी न केवल इंसानों बल्कि हमारे पशुओं के लिए भी बड़ी मुसीबत लेकर आती है बढ़ता तापमान पशुओं के स्वास्थ्य दूध उत्पादन और सबसे महत्वपूर्ण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इम्यूनिटी कमजोर होने से पशु जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो आखिर इस लू और भीषण गर्मी के मौसम में हम अपने पशुओं को अंदर से मजबूत कैसे रखें, उनका खान पान और प्रबंधन कैसा हो, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु पोषण विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर दिनेश जी, आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, जोहार।
2: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में क्या अंतर है।
3: जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि आदमी के केस में भी या पशु के केस में जब तक आप उसके लक्षण के बारे में नहीं आप जानिएगा तब तक आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि पशु स्वस्थ है या बीमार है। तो स्वस्थ पशु का मुख्यतः निशानी है कि उनका आँख जो है चमकता है, उसके बाद जो है समान तौर पर भूख लगती है, बॉडी का जो टेम्परेचर वो सामान्य रहता है। जैसे कि गाय और भैंस के केस में 101 से 102 फ़ारेनहाइट होता है और बकरी और छोटे पशु के केस में 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद उसका जो त्वचा का जो कलर है वो एकदम चमकीला होता है। फिर नियमित रूप से जो है पशु जुगाली करती है और समान श्वास और नाड़ी जो है चलती है। इसके साथ साथ जो है मल और मूत्र जो है समान निकलता है और सक्रिय व्यवहार करते हैं और दूध का भी जो उत्पादन जो है अच्छा रहता है। यदि दूध का गिरावट जल्दी हो, अचानक हो जाए तो इससे पता चलता है कि वो पशु बीमार है। और नाक जो होता है, मजल जिसको बोलते हैं, काला कलर का, उस पर जो है मॉइस्चर लगा रहता है, फफूंद रहता है। तो इसी लक्षण से आप पता कर सकते हैं कि पशु स्वच्छ है या बीमार है। यदि इसमें नॉर्मल से कुछ हटके होता है तो वो बीमार है।
2: जी, तो गर्मी के मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है?
3: जैसा कि आप जानते हैं गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जो है वातावरण का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 40 से 45 डिग्री हो जाता है, धूप अत्यधिक होती है, लू लग जाती है, पानी की कमी होती है और पोषण के असंतुलन के कारण पशु जो है जितना खाना चाहिए वो खा नहीं पाती है। तो कम खाने के कारण जो है पसीना भी निकलता है जिसके कारण मिनरल का जो है लॉस हो जाता है और उसके कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पशु का कम हो जाता है।
2: जी, तो इस मौसम में पशुओं को किस प्रकार का संतुलित आहार देना अच्छा रहेगा?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे फसलों की खेती होती है, हरे चारा जो है प्रमुख रूप से देना चाहिए जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि लूसर्न हो गया, बरसीम हो गया, ज्वार हो गया, नेपियर हो गया। इसके साथ साथ आप मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, विटामिन दे सकते हैं ताकि बॉडी में पानी की लेवल जो है मात्रा बनी रहे और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस होता है वो भी पूरा होते रहे, तभी जो है पशु का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ता है। और साथ ही साथ सूखा घास या बासी घास जो है नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे जो है पशु का हजमा जो है डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है।
2: जी, तो गर्मी के दिनों में तो पशु हो या मनुष्य हो पानी की तो ज़रूरत होती है, तो पशुओं को गर्मी में पानी कितना देना चाहिए?
3: हाँ, पशु को हमेशा गर्मी के मौसम में स्वच्छ जल जो है देना चाहिए हमेशा। और जैसा जानते हैं कि आप दूध में जो है 90 से 92% पानी होती है, तो पशुओं को जो दुधारू पशु को केवल 1 लीटर दूध बनाने के लिए 400 से 500 लीटर जो है खून का जो है सर्कुलेशन होता है उसके अडर से। तो स्वच्छ पशु को जो है मिनिमम 50 से 80 लीटर जो है पानी देना चाहिए गर्मी के मौसम में, और ताकि डिहाइड्रेशन को भी बचा सके और दूध उत्पादन की भी कमी नहीं हो सके।
2: जी, तो गर्मी से बचाव के लिए पशुशाला कैसी होनी चाहिए?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुशाला जितना आपका छायादार हो या हवादार हो तो इससे जो है धूप और लू से जो है बचाव होता है। और धूप और लू से बचाने के कारण आप टाट लगा सकते हैं ऊपर में, या फुसका दे सकते हैं, या फिर उजला पेंट कर सकते हैं जिससे कि अंदर का तापमान जो है कम हो जाता है। और इसके साथ साथ पशुशाला में ज़्यादा गर्मी हो तो आप पंखे भी लगा सकते हैं या कूलर लगा सकते हैं या फोगर लगा सकते हैं। भैंस हो तो उसको जो है नदी में या पोखर में जो छोड़ सकते हैं आप तैरने के लिए। तो इस तरह से जो है उसका हम बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं और पशुशाला जो है साफ सुथरा होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी आपका मक्खी या परजीवी का जो है उत्पादन नहीं हो।
2: जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है मिनरल मिक्सचर की, तो मिनरल मिक्सचर और विटामिन जो है गर्मी में क्यों जरूरी है?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनरल और विटामिन की जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है
2: जी।
3: तो मिनरल्स विटामिन गर्मी में ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि पसीना चलती है, उसके कारण मिनरल का लॉस हो जाता है, इसलिए मिनरल देना जरूरी है ताकि जो कमी है उसको पूरा कर सके और दूध में जो भी कैल्शियम सिक्रेशन होता है उसको भी पूरा कर सके और आपके बॉडी के सभी कार्य को जो है सुचारू रूप से चला सके। तो इसलिए अत्यधिक आवश्यक है कि आप मिनरल जो है यूज करें गर्मी में, साथ साथ हरा चारा और दाना के साथ में।
2: जी हम लोग अभी जो रोग की बात कर रहे हैं तो गर्मी में कौन कौन से रोग अधिक होते हैं पशुओं में?
3: सामान्यतः पशु में गर्मी में गलघोटू बीमारी, उसका लंगरा बुखार, थनैला रोग, उसके बाद खुरपका मुंहपका रोग और परजीवी बीमारी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और नमी भी मात्रा ज़्यादा रहती है वायुमंडल में, जिसके कारण मक्खी और मच्छरों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसके कारण संक्रामक रोग भी जो है साथ साथ बढ़ जाते हैं। इसलिए समय पर जो है पशुशाला को साफ सुथरा रखे और टीकाकरण करवाए, उससे जो है बचा जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है।
2: जी अभी आपने बात की टीकाकरण की, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण की क्या भूमिका है?
3: हाँ, टीकाकरण की क्या महत्व है इससे कि जैसे आप टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के बाद जो है बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, जो हम एंटीजन डालते हैं, उसके कारण जो है धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और जब स्ट्रेस होता है तो उस समय में लड़ने की जो कैपेसिटी है पशुओं में वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम पशुपालक मित्र जो है लंगड़ा बुखार और गलघोटू जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बारिश से पहले या गर्मी से पहले जरूर लगा लेना चाहिए, फरवरी मार्च हो अप्रैल हो लगा लेना चाहिए, इसके बाद जो है बरसात के बाद भी जो है इसका टीका लगाना चाहिए ताकि सालों भर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बनी रहती है।
2: जी तो अभी आपने टीकाकरण की बात की, तो क्या साफ सफाई का रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी संबंध है?
3: जी हाँ, साफ सफाई आपका पशुशाला जितना अच्छा रहेगा वहाँ मक्खियाँ या परजीवी का जो है पनपना जो है बहुत कम होता है, बैक्टीरिया वायरस हो गया वो कम पनपता है। यदि आपका पशुशाला साफ नहीं है तो वहाँ पे जो है मौका मिलता है कि मक्खियाँ परजीवी बैक्टीरिया ये सब पनपने का, जिसके कारण आपका जो है संक्रमित बीमारी के जो है चांसेस जो है बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से सफाई होना चाहिए, पशुशाला सूखा रहना चाहिए, बिछावन सब गीला नहीं होना चाहिए, गोबर का उचित जो है प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि आपका मक्खी और मच्छर का जो है उत्पादन कम हो सके।
2: जी तो बात बराबर आती है हीट स्ट्रेस की पशुओं में, तो गर्मी में पशुओं में हीट स्ट्रेस के लक्षण क्या हैं?
3: हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अत्यधिक टेम्परेचर होता है वायुमंडल का तो पशु में तेजी से सांस स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ जो है पशु जो है बार बार पानी पीती है, उसके बाद पशु जो है मुंह खोल करके सांस लेती है, खाना कम खाती है, फिर उसके साथ साथ दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है जिसको हम हीट स्ट्रोक का लक्षण कहते हैं।
2: जी
3: ऐसे पशुओं में तुरंत जो है पशु को छायादार में बांधे, ठंडा पानी उसको पिलाए, साथ साथ जो है उसको हरा चारा और खाने के लिए दे, सूखा चारा उस समय में कम दे खाने के लिए क्योंकि हरा चारा में अत्यधिक पानी होता है, और हो सके तो ऊपर से भी पानी का छिड़काव करे ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है घट जाए।
2: जी तो अभी आपने हीट स्ट्रोक के बारे में भी बता दी, अब ये बताएं कि किसान गर्मी में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं?
3: सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जब संतुलित आहार मिले पशु को तो वो सब कुछ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बना रहता है। तो पशुओं को हमेशा छायादार में बांधे, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी दे, उसके बाद जो है संतुलित और पौष्टिक आहार दे, साथ साथ मिनरल मिक्सचर और विटामिन का भी खुराक दे, साथ साथ जो है पानी और जो है हमेशा 24 आवर जो अवेलेबल होना चाहिए पीने के लिए, फिर टीकाकरण और कृमिनाशक दवा जो है समय पर लगाए, उसके बाद पशुशाला की साफ सफाई होना चाहिए और तेज धूप में कभी भी बांधना नहीं चाहिए पशु को। और हो सके तो खाने के लिए जो है आप ठंडा के समय में दे, दोपहर के समय में पशु को नहीं दे धूप में।
2: तो किसान साथियों, पशु स्वस्थ रहेंगे तभी किसान समृद्ध होगा। गर्मी के इस मौसम में अपने पशुओं का खास ख्याल रखें और हमारे जो डॉक्टर साहब अभी बताए इनकी बातों को अमल में लाएं। तो डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार जोहर।
1: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रही गर्मी कर मौसम में पशुओं का कतरे देख रेख करके चाहिए ओकर रोग और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, और इनके जानकारी देवत रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार और इनकर से बतिया रहे
0: कृषि जीवन पौराणिक और इकरे संगे अब रिज रंग कर बारी होते। तो हमरे मन एक कृषि विकास गीत सुनी ले नागपुरी में देवदास विश्वकर्मा और संगीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो चलो नगर गीत सुन ली, देवदास विश्वकर्मा और संगे मन गावल गीत। और चलो इकरे संगे हमरे मन एगो किसान से भेटा भाई नी।
3: हाँ, तो हमरे मन आज एक ठो गन्ना उत्पादक किसान अभिषेक भगत से युवराज कुमार कर करल बातचीत के सुनी ले।
4: किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। खेती किसानी आज के किसान भाई बहन को नई नई फसलों और तकनीकों को अपना कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। आज हम बातें करेंगे गन्ना की खेती के बारे में, कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी किस्म बेहतर है, इसका लागत क्या है और लाभ क्या है, और किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी विषयों पर जानकारी देंगे। हमारे साथ एक किसान है जो कि काफी युवा है, होनहार है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम अभिषेक भगत है।
4: अभिषेक जी आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: हम सिलगांव के रहने वाले हैं जो कि चान्हो प्रखंड में पड़ता है। चान्हो से 7 किलोमीटर अंदर घुस के है मेरा गांव जो कि सिलगांव है।
4: अभिषेक जी सबसे पहले बताइए कि आप जो गन्ना के जो खेती करते हैं, आप कितने वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं?
5: हम तो लगभग गन्ना के खेत 5-6 साल से करते आ रहे हैं।
4: आप गन्ना की खेती 5-6 साल से कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी युवा है तो आप कितने पढ़े लिखे हैं?
5: हम इंटर पास किए हैं और पढ़ाई छोड़ दी।
4: अभिषेक जी जैसे कि आप काफी युवा है, लोग इस उम्र में पढ़ाई लिखाई की और ज्यादा ध्यान देते हैं, आपका पढ़ाई लिखाई छोड़ने का क्या कारण रहा है?
5: मेरा पढ़ाई लिखाई छोड़ने का कारण है ये कि पैसा का प्रॉब्लम हो रहा था, इस कारण से हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी।
4: पैसा का तंगी के कारण अपने पढ़ाई को बीच में ही रोकना पड़ गया। अभिषेक की गन्ना की खेती काफी फायदामंद माना जाता है, तो गन्ना की खेती करने का आपका मन में कैसे आया?
5: गन्ना खेती करने का रुझान आया कि हम अगल बगल घूम रहे थे ऐसे दोस्त यारी के

0: आते या जो गन्ना की खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा माना जाता है?
1: गन्ना का उपयोग मिट्टी गन्ना खेती लगाने के लिए ललहत मिट्टी और भुरभुरा होना चाहिए।
0: अभिषेक जी, हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि जो गन्ना की खेत की तैयारी कैसे किया जाता है?
1: सबसे पहले गन्ना खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसे ट्रैक्टर से जोतवाना पड़ता है और उसे उस मिट्टी को भुरभुरी कर देना पड़ता है। उसके बाद फिर उसे फिर समतल करने के बाद में उसे एक एक फीट के दूरी में उसे क्यारी बनाना पड़ता है। उसके बाद आधा आधा फीट के दूरी में उसका बुआई करते हैं।
0: गन्ना को आप लोग आधा आधा फीट का दूरी में उसको फिर लगाते चले जाते हैं,
1: जी
0: और
1: हाँ
0: जो इसका जो चौड़ाई है वो 1 फीट का चौड़ाई रखते हैं, है
1: जी
0: ना?
1: जी
0: तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके खेत में ये काफी ढलान नुमा है, तो क्या इसका ढलान नुमा बनाना जरूरी है क्या?
1: जी हाँ जरूरी है, काहे कि बरसात का मौसम में पानी ढीलने की संभावना रहता है, इसलिए
0: हाँ,
1: इसे ढलान बनाते हैं हम उसका क्यारी को।
0: बरसात के दिन में पानी ना जमे, के पानी का रुकाव ना हो, इसलिए इसको आप लोग ढलान नुमा
1: जी
0: बनाते हैं,
1: जी
0: ताकि
1: जी
0: कि जो भी पानी आए, अनावश्यक पानी, वो बह के निकल जाए,
1: जी
0: और अत्यधिक अगर पानी जम जाने से फसल को खराबी करता है क्या?
1: जी नुकसान होता है।
0: जी। अभिषेक जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो आप क्यारी बनाए हैं, तो जो गन्ना का बीज का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे आप लगाते हैं इसको?
1: इसका चुनाव करते हैं, मोटा वाला गन्ना को लाते हैं, उसके बाद 1-1.5 फीट का उसका टोना टोना हम काटते हैं, उसके बाद आधा आधा फीट में उसे क्यारी में जो बना हुआ रहता है उसमें हम लगाते हैं।
0: अच्छा, इसका जो दूरी रखते हैं वो आधा आधा फीट का दूरी में रखते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: और जो इसका लंबाई रखते हैं वो 1 फीट का लंबाई रहता है,
1: जी
0: और उसको जैसे एक पूरा गन्ना है, तो एक पूरा गन्ना को 1-1 फीट का अंतराल में इसको काट करके इसको आप रोपते चले जाते
1: जी
0: हैं। अभिषेक जी, जो लोग गन्ना की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए गन्ना का बुआई का सबसे सही समय कौन सा माना जाता है?
1: गन्ना का खेती कोई करना चाहता है तो इसका सही समय है गर्मी का मौसम, जो कि मार्च अप्रैल में लगाया जाता है।
0: मार्च अप्रैल का इसका सही समय है,
1: जी
0: तो इसलिए मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आपका जो पौधा है वो काफी छोटा छोटा है, और इसमें तो अभी देख रहा है मैं काफी हरियाली भी दिख रहा है,
1: जी
0: तो इसका आप सिंचाई का क्या प्रबंधन कर रखा है, आपने सिंचाई कैसे करते हैं, या फिर इसका पानी का पटवन कैसे करते हैं?
1: इसका सिंचाई हम गन्ना के खेत का बगल में बोरिंग कोड़वाए हैं, उसी से हम करते हैं इसका सिंचाई।
0: बोरिंग के थ्रू से पटवन कर, जो अब बोरिंग करवाए हैं वो उसका किराया क्या होगा?
1: इसका डाया लगभग 6 इंच का होगा।
0: अच्छा, 6 इंच का है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये तो काफी काफी बड़ा है, और गहराई भी लगता काफी होगा, तब ना
1: जी
0: इतना पूरा गर्मी में
1: जी
0: भी आप पूरा पानी का मार्फत से इसको काफी हरियाली आप ले लाए हैं।
1: जी जी
0: अब इससे कि जैसे अपना सिंचाई का साधन आप बोरिंग से करवाते हैं, तो बोरिंग से करवाते हैं तो देखिए उसमें क्या कि बिजली का जरूरत पड़ती है, तो बिजली का कैसे आप इसका प्रबंध किए हुए हैं?
1: बगल से बिजली का पोल गया हुआ है
0: जी,
1: जिससे हम उसमें से कनेक्शन लिए हुए हैं।
0: अच्छा, तो कुल मिला के देखा जाए कि बिजली का खंभा से आप इस कनेक्शन लेके इसका उपयोग कर रहे
1: जी
0: हैं। अभी तक मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि बहुत सा जगह में बहुत सा किसानों सोलर पैनल का प्रयोग करके अपना बिजली बचा रहे हैं, तो क्या कभी आप सोलर पैनल के बारे में कभी नहीं गए इसका सोचा क्या?
1: उसका भी हम अप्लाई किए हुए हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है।
0: अच्छा, उसका अप्लाई आप कर दिए हैं सोलर के
1: जी
0: लिए, लेकिन
1: जी
0: वो अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद
1: नहीं
0: करता हूँ कि जल्दी आपको का कनेक्शन भी मिल जाएगा।
1: जी,
0: अभिषेक जी, जो आप गन्ना की खेती किए हैं वो कितना बड़ा एरिया में आप खेती किए हैं?
1: ये लगभग 5 एकड़ में होगा
0: हाँ,
1: लेकिन हम इसमें 2 एकड़ में लगाए हैं अभी।
0: अच्छा, कुल मिला के खेत जो आपका है वो 5 एकड़ है, लेकिन आप
1: जी
0: 2 एकड़ में पूरा गन्ना की खेती किए, इसलिए देख रहा हूँ काफी ये जंगल जैसा दिख रहा है, पार्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि ये छोटा छोटा पौधा भी अभी निकला हुआ है, जिसे भी आप मार्च अप्रैल में लगाए हैं।
1: जी
0: अभिषेक जी, जैसे खाद, किसी भी पौधा के लिए खाद अत्यधिक जरूरी है, तो आप कौन सा खाद का प्रयोग करते हैं?
1: हम तो गोबर खाद का प्रयोग किए हैं सबसे ज्यादा,
0: हाँ,
1: और पौधा का बढ़ोतरी नहीं होता है तो उसमें यूरिया पोटाश डीएपी का प्रयोग किया जाता है।
0: अच्छा, जब खाद का देखते हैं कि ग्रोथ नहीं है, तब यूरिया, डीएपी और पोटाश का उपयोग करते हैं।
1: जी
0: जी बिल्कुल। खरपतवार नियंत्रण किसान के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, तो आप गन्ना की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपाय करते हैं?
1: इसका नियंत्रण रखने के लिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद में इसे देखना पड़ता है, जो कि खर पतवार होता है उसे
0: हाँ
1: साफ करना पड़ता है, इससे लेबर लगा भी साफ करवाते हैं हम,
0: हाँ
1: और पत्ता सो को भी गिरा हुआ रहता है उसको भी साफ करना पड़ता है।
0: तो लगभग कितना लेबर आप लगवाते हैं?
1: लेबर का बात करेंगे तो जैसे कि जैसा जरूरत पड़ता है वैसा हम लगाते हैं, कभी 5 तो कभी 10 देख लगवाते हैं इसको।
0: अच्छा, देखना पड़ता है कि कितना इसमें खरपतवार हो गया है, कितना उसमें घास बढ़ गया है, उसके हिसाब से आप लेबर लगाते
1: जी
0: हैं। तो
1: जी
0: लेबर आप बाजार से लाते हैं या फिर सब घर के लोग ही रहते हैं?
1: नहीं गा

0: में अगल बगल घर में जो रहता है उसको हम पैसा में उसको ले आते हैं ना। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो अपना अगल बगल से ही आपको लेबर मिल जाता है,
1: जी
0: तो अगर देखा जाए तो साधन का तो कमी नहीं है आपके पास में। अभिषेक जी, और एक चीज हम लोग को बताइए कि जैसे पौधा लगाए है, गन्ना की पौधा लगाया है, तो इसमें कीड़ा मकोड़ा भी लगता है क्या?
1: जी लगता है इसमें।
0: हाँ
1: इसमें सबसे ज्यादा दीमक परेशान करता है
0: हाँ तो इसके लिए आप क्या उपाय लगाए? जैसे कि दीमक लग गया है तो उसके लिए क्या उपाय है?
1: इसके लिए उपाय यही है कि 10 रोज 12 रोज उसके बाद में खेत में देखना पड़ता है कि कहाँ
0: हाँ
1: दीमक लगा है कहाँ नहीं लगा है।
0: हाँ
1: इसके लिए कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना पड़ता है।
0: तो कौन सा दवा का आप इसका प्रयोग करते हैं?
1: उस दवा का नाम है रिजेंट अल्ट्रा।
0: अभिषेक जी, हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि मौसम, जो कि हमारे झारखंड का जो मौसम है बहुत ही अजीब है, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी बरसात पड़ जाता है, तो जो मौसमी मार है वो गन्ना की फसल को कितना प्रभावित करता है?
1: गन्ना की फसल को ये तो बहुत प्रभावित करता है।
0: तो ये प्रभावित कैसे करता है आपके फसल को? हाँ
1: बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने से गन्ना होता है जो गिर
0: अच्छा,
1: जाता है और हवा चलने से।
0: अगर देखा जाए तो जैसे अत्यधिक बारिश हुई चाहे, या तो फिर अत्यधिक हवा हुई, तो इस फसल है आपका जो पौधा है वो गिर जाता है,
1: जी
0: और गिर जाने से काफी नुकसान होता है, तो फिर इसका
1: जी
0: क्या उपाय करते हैं आप लोग?
1: इसका उपाय करना पड़ता है, उठाना पड़ता है जो गिरा हुआ गन्ना रहता है उसको लेबर लगा के।
0: अच्छा, लेबर लगा के एक एक पौधा को सबको उठाना पड़ता है फिर?
1: जी
2: तो भाई अखन हमरे मन गन्ना उत्पादक किसान से भेटा रही अभिषेक भगत और इनकर से बतिया रहे युवराज कुमार। तो नगद जानकारी दिले है
3: और
2: नहीं
3: इकरे संगे खेती बाड़ी कर बेरा सिरात है, लेकिन कहूँ जाए कि नहीं, हमरे मन फिर से अखन शुरू करी हमारी दुनिया।
2: और हमारी दुनिया में हमरे कर घर ने सभा में सब सुनवाया भाई बहन मन के मन का बाटली जोहार।
3: तो देखा थी मन एखन हमरे मन महिला सुरक्षा कर लेकर के बेरा बेरा हमरे मन देखी ला कि न्यूज मन में आते रहे ला। तो देखो महिला का सुरक्षा हमरे कर विशेषता विशेष मतलब ख्याल रखे चाहिए महिला सुरक्षा कर लगा गिन, और सरकार और प्रशासन के भी बढ़िया से हमरे मन यार में सहयोग कर सकी ला।
2: सही बात कहली भाई कल की। देखो अगर हमरे कर महिला का अगर सुरक्षा नहीं भेटाते तो देखा थी दिनों दिन कितना कांड मन देखे के लिए भेटा थे, और इकर लिए सरकार भी भरसक प्रयास कर रहे थे। हमरे के आपसी में भी सबको के सहयोग करे के ये नहीं।
3: देखो सरकार कर संगे संगे हमरे मन के भी जागरूक हुए चाहिए, और महिला मन के भी मतलब जरूरत है तब रात बिरात निकले, नहीं तो अपन साथी घर या सदस्य भी निकले, और हमरे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग से मन के भी जागरूक करे कर दरकार है, और सरकार के सहयोग करे कर दरकार है।
2: और देखो भाई अखन तो गर्मी का दिन भी है के, तो देखो इस गर्मी में तो खुद के बाचे के एक संगे संगे हमरे कर जो छोट भाई बहन मन के हैं से मन के बगरा ध्यान देवे के है। कल के छोट छोट भाई बहन मन तो का धूप है के का पानी के का जार है कैसे के उनके बुझावे नहीं करेला है नी। और धूप कखनो कखनो ऐसा हो गया कि मुरुख रौद है सेकड़ों में खेले के लिए भाग जाता है। अभी तो गर्मी का छुट्टी भी भेटा जाए, माए हर काम करत है छो हमने धूप में खेले के लिए।
3: और एकदम बढ़िया बात के कहली कि एखन गर्मी का छुट्टी भेटा है, तो गर्मी से बचे के लागिन गर्मी का छुट्टी भेटा ला, मुदे छुआ मन उतना समझदार नहीं हो पा रहे ना, चाहे नहीं समझे ना, तो छुआ मन दिन भर बाहर रहे खोजे ना घर दूरा से दूर में रौद में, तो इकर से तनिक उन बड़ बीमारी कर बढ़े कर खतरा भी हो सके, इसलिए माए बाप के भी चाहिए कि छुआ मन के तनिक उन निगरानी में रखे के चाहिए, ताकि छुआ मन गर्मी बेरा बाहर नहीं जाए।
2: और कोशिश करके है भाई कि अगर छुआ के लेके कहीं जाक है तो कोशिश करके है बिहान कर बेरा में नहीं तो सांझ कर बेरा में ही जाक चाहिए, और जब जाती से घरे अपन व्यवस्था भी कर ले चाहिए है नी। और गर्मी का दिन है के तो बकरा सूती लुगाम कर प्रयोग करे चाहिए सेकर से हमरे कर शरीर के काफी राहत भेटाएल।
3: एकदम रावरे बेस कर ली कि सूती लुगा पहनने के चाहिए, ढीला ढाला लुगा पहनने के चाहिए,
2: और पानी बोतल
3: और
2: तो जरूर
3: पानी एकदम पीते रहे चाहिए,
2: नहीं।
3: पानी शरीर में एकदम नहीं घटे देवे चाहिए, ती कर जरिए भी हमरे मन रख रखाव कर सकिए, छुआ मन के तनी उन समझा बुझा के चाहे निगरानी करके घर में ही रखे के चाहिए, दिन मांझे बाहर नहीं भेजे के चाहिए।
2: सही बात कह रही भाई। तो चलो हमरे तो बातचीत करते है रहो, लेकिन समय से रे कोनो काम के करब तो बढ़िया रही है नी। तो चलो रिझ रंग खातिर हमरे मन एगो नागपुरी लोग सुनी ला जानकी देवी और संगी माना गीत
3: चलू तब।

0: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: तो भाई चलो, हमने वो जानकारी करी ना हिंदी में, बच्चों को आत्मनिर्भर और व्यवहार कुशल बनाएं। और एक बताते हैं धीरज कुमार।
8: आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार को इस तरह से समझना है कि इस तरह ज्ञान को सभी परिस्थितियों में सामान्यकृत किया जा सकता है, कि सभी संस्कृतियों के मनुष्य का सामना करना पड़ सकता है और किसी किसी क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण डोमेन को प्रभावित कर सकता है। इस अर्थ में यह सिद्धांत विश्लेषण के मुख्य तत्व के रूप में प्रेरणा पर केंद्रित है। विभिन्न मानवीय जरूरतों के उत्पन्न ऊर्जा के संचय के अस्तित्व का मूल्यांकन करना, जो बाद में उन आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए दिशा का अभिविन्यास प्राप्त करेगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस अर्थ में वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न

में व्यक्ति के व्यक्तित्व और जैविक और आत्मकथात्मक तत्व जिस संदर्भ में उनका व्यवहार चलता है और जिस ठोस परिस्थिति में यह क्रिया जाता है वह तत्व होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जो विभिन्न प्रकार के प्रेरणा की संभावित उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। आत्मनिर्भरता का वह डिग्री होगी जिसकी हम स्वयं स्वेच्छा से तेजी से आंतरिक ताकतों को माध्यम से अपने व्यवहार को निर्देशित करते हैं। इच्छा के लिए तेजी से उपयुक्त प्रेरणा और पर्यावरणीय तत्वों द्वारा मध्य स्वस्थ होने के बजाय व्यवहार करने की इच्छा जो आवश्यक कार्रवाई को प्राप्ति को बनाते हैं। हम सक्रिय प्राणी हैं जो विकसित होते हैं आंशिक तत्वों के स्तर पर कथित अनुभव को विकसित और खोज और स्वीकृत करें या देखते हुए कि यह सब हमें और भविष्य में हमारी आवश्यकताओं में पूरा करने के लिए संसाधनों की अनुमति देगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण से क्या आता है और जमजात और आवेगपूर्ण क्या है। हम एक सिद्धांत से पहले हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों की अवधारणाओं को एकीकृत करता है और उनमें से एक है जिसमें व्यवहार और मानववादी खड़े हैं। एक और कठोर और वैज्ञानिक जानकारी की खोज को बनाए रखा जाता है जो उन तंत्रों को बताता है कि जिनमें से हम एक प्रेरक लक्ष्य और दूसरे पर प्राप्त करने के प्रति अपने व्यवहार को निर्देशित करते हैं। मानव की दृष्टि को एक सक्रिय इकाई के रूप में प्राप्त करना है और उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्राप्ति के निर्देशित करना मानववादी मनोविज्ञान के लिए उचित है। आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को बनाने वाले मुख्य सिद्धांत में से एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का है। इन जरूरतों को मानसिक संरचनाओं का संदर्भ है कि मनुष्यों को केवल शारीरिक घटकों को छोड़कर व्यवहार की ओर प्रेरित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के भीतर किए गए विभिन्न अध्ययनों ने अस्तित्व को निर्धारित किया गया है। आत्म क्षमता की आवश्यकता और जुड़ाव या रिश्ते को आवश्यकता है। इनमें से पहला स्वतंत्रता स्वयं को जिनमें से के लिए या अपने जीवन में या वास्तविकता में आचरण के माध्यम से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं को जानने के लिए मानव आवश्यकता की संदर्भित करता है। इस जरूरत का तात्पर्य यह है कि विषय अपने कार्यों को एक वास्तविक और स्पष्ट प्रभाव के रूप में देखता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित नियंत्रण के साथ इच्छाओं का उपयोग करने में सक्षम होता है और कुछ भी करता है या किसी भी चीज से मुक्त होने की आवश्यकता से अधिक है और जिन मामलों में यह पूरी तरह से विकसित नहीं होता है निष्क्रियता और निर्भरता के व्यवहार प्रकट हो सकते हैं। साथ ही बेकरन और निराशा की भावनाएं भी प्रकट हो सकती है। आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का एक और मौलिक तत्व कारक है उन्मुक्तता के सिद्धांत का है जिसमें यह स्पष्ट करने का इरादा है कि हमें क्या कर रहा है क्या चल रहा है और किस दिशा में अपने प्रयासों को निर्देश करते हैं। इस अर्थ में सिद्धांत तीन प्रमुख प्रकार के प्रेरणा के अस्तित्व की स्थापित करता है। जीवन में सफलता एवं लोकप्रियता अर्जित करने हेतु व्यवहार कुशलता को होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छूने की चाहत रखता है अपने व्यक्तित्व का कुशलता पूर्वक निर्माण और विकास करना चाहिए। आपके पास ज्ञान का अकूट भंडार हो सकता है, आप में आत्मविश्वास कूट कूट भर सकता है, आपका आत्मबल एवं संकल्प शक्ति से सराबोर है, लेकिन यदि आप में व्यवहार कुशलता नहीं है तो आपकी राह में अड़चनों का अंबार लग जाएगा। ऐसे में आपकी अधिकांश ऊर्जा उन अड़चनों में आपकी अधिकांश अपनी ऊर्जा दूर करने में ही व्यर्थ हो जाएगी। व्यवहार कुशलता द्वारा ही हम अपने साथ रहने वाले साथियों को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहा भी गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको जीवन में सफल होने के लिए अपने संगी साथियों भाई बंधु शुभचिंतकों गुरुजनों आदि की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत जरूरत
पड़ती ही हैं। व्यवहार कुशलता से आज हम अनजान व्यक्तियों को भी आत्मीय बना

0: कर अपने साथ चलने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप न केवल अकेले शक्ति को सामूहिक शक्ति में बदल सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी बुलंदियों को भी फतह कर सकते हैं कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नकारात्मक दृष्टिकोण से किए गए कार्य जहां हमारे लिए पतन का द्वार बनते हैं, वहीं व्यवहार कुशलता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। आपकी सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप में कितना आत्मनिर्भर और आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के साथ भी आप वैसा ही व्यवहार करें। हम दूसरों को सम्मान और सत्कार करें, सत्कार देकर ही अपने लिए आदर्श एवं सम्मान अर्जित कर सकते हैं। हंसमुख एवं जिंदा दिल व्यक्ति सभी के बीच लोकप्रिय होते हैं। अपने व्यवहार में विनम्रता को शामिल करके आप भी दूसरों के दिलों में राज कर सकते हैं। अतः अपनी कमजोरियों एवं गुणों को पहचानिए और साथ ही अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अपने मन को इस बात को बैठा ले कि जीवन में शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ नहीं है। स्वस्थ व सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता तथा लोकप्रियता दोनों हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मनिर्भर हों और अच्छे व्यवहार करने का गुण विकसित करना होगा। इस प्रकार आप आत्मनिर्भर और कुशल बनकर जीवन में सफलता के सोपान चढ़ सकते हैं। व्यवहार कुशल होने के लिए सहनशील भी होना पड़ता है। अगर लगता है कि व्यवहार कुशल और आत्मनिर्भर होने में दिक्कत है तो ये 7 काम जो फौजी इंस्ट्रक्टर ने बताए हैं ये हम सभी के काम आ सकते हैं। 1, ड्राइविंग करें, इससे आपकी सहजता दूर होती है। 2, थोड़ी देर एक टांग पर खड़े होकर सारा ध्यान स्पाइनल कार्ड पर लगाएं। 3, भीड़ भरे इलाके में पैदल घूमिए। 4, जो वातावरण सूट ना होता हो कुछ देर उसमें भी रहिए। 5, कुछ समय बदबूदार स्थान पर बिताइए।
1: तो एखन हमरे मन देखत रहे कि बच्चों को आत्मनिर्भर और व्यवहार कुशल बनाए और इकर बारे बतात रहे धीरज कुमार। और देखो इकरे संगे आजकल हमारी दुनिया कर बेरा भी सिरा थे आगे बढ़े नहीं देवत है। तो इकरे संगे जाते जाते कहे चाहिए कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर और इकरे संगे भाई मोहसिन
2: और मोनिका के विदा देव
1: जोहार।

खेती बाड़ी और हमारी दुनिया कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पंचायतों को सशक्त बनाने पर भी दिया जोर। झारखंड मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस

0: जारी रखने की दी मंजूरी, 25,530 करोड़ रुपए का किया आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की दी जानकारी। घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करने की दी सलाह। और राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पंचायतों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों और सखी मंडलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने SHG महिलाओं को बाजार, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने तथा पलाश मार्ट जैसे बिक्री केंद्रों के विस्तार की कार्य योजना का भी निर्देश दिया। बैठक में मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, लिफ्ट इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभिन्न योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों के 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक की विस्तृत जानकारी दी।
1: आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, NDPS एक्ट 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा है कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मधुबन में गिरिडीह ग्रामीण और कोडरमा जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय हित के मामले में विरोध नहीं करना चाहिए।
2: इलेक्शन कमीशन SIR तो प्रत्येक आजाद भारत में कई बार हो चुका है। अभी जो हो रहा है तो इसलिए लोगों को कष्ट हो रहा है क्योंकि बीजेपी के राज में हो रहा है, मोदी जी के राज में। अभी जो SIR हो रहा है कि भाई देश के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई वही मतदाता सूची में उन्हीं का नाम रहेगा जो इस देश के लोग, कोई अगर बाहरी लोगों ने घुसपैठ आकर किया और इलीगल तरीके से उन्होंने वोटर लिस्ट में अपने नाम चढ़ाया है तो उसको हटाया जाएगा।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर से एक डॉक्टर और पुणे से 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। CBI के प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 49 स्थानों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह

0: योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्य खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने झारखंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता होने की जानकारी दी है। कंपनियों ने कहा कि राज्य के सभी पेट्रोल पंपों, डिपो, बॉटलिंग प्लांट और LPG वितरक केंद्रों पर ईंधन आपूर्ति सामान्य और निर्बाध रूप से जारी है। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करें। गुमला जिला के कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जिले के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं।
2: धरती आबा जनजातीय योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में 6 SER मतलब 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में एक एक 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है। उसके अतिरिक्त ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर गुमला का जो नया समाहरणालय है वहाँ पर ढलाई तक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
0: खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में आयोजित छऊ नृत्य मेला के दौरान हुई डबल मर्डर मामले का पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से पुलिस ने सबूत जुटाते हुए आरोपियों को साइको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
3: लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया और लगातार हम लोग टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा कि एक व्यक्ति जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और 2 लोग और थे जिनका की रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने 2 जून तक राज्य में मौसम के अस्थिर बने रहने और कई जिलों में गर्जन, वज्रपात तथा तेज हवा चलने की आशंका जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पंचायतों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। झारखंड मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार ने सार्थक PDS को जारी रखने की दी मंजूरी। 25,530 करोड़ रुपए का किया आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता होने की दी जानकारी। ईंधन के अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करने की दी सलाह। और राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने बताया।
2: जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक बकरीद पर्व के मद्देनजर उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में रखी थी। उनके द्वारा जो भी समस्याएं थी उनसे कि जैसे लोड शेडिंग को लेकर के हो या फिर थोड़ा सड़क की सफाई उफाई को लेकर बकरीद के दिन पे हो, उसको रखा गया, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
3: शांति समिति के जितने मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आगामी जो बकरीद का पर्व है उसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। जितने भी आपके बकरीद के पर्व होती हैं, जो कुर्बानियों के जो सारे अरकान होते हैं, उसको आप अपने घरों के अंदर करें। उनसे जो भी सॉलिड वेस्ट वगैरह जनरेट होता है वो आप प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, उसको इधर उधर ना फेंके। लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि जो भी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से फैलते हैं आप उसको इमीडिएटली प्रशासन को बताएं।
1: खूंटी जिले में 25वें उप विकास आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार प्रकाश ने विधिवत पदभार संभाला। उन्होंने ग्रास रूट स्तर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही।
4: उप विकास आयुक्त के रूप में भी जो दायित्व मिला है उसमें पहले मैं रह चुका हूँ, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ। उसके पहले मैं विकास शाखा में मैं विकास की जितनी योजनाएं उसका भी मैं कार्यभार पहले रह चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि उन्हें जो अनुभव है मेरे जितने भी उस समय अपने प्रशासनिक जीवन के, उनको मैं इसमें कोशिश करके अपने इस प्रस्थापन के दौरान इस्तेमाल कर पाऊँ।
1: इधर आईटीडीए निदेशक आलोक शिकारी कच्छप ने धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान द्वारा संचालित विकासोन्मुख कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की रिपोर्ट साझा की।
5: जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम विगत दिनों में चलाया गया, जनजातीय ग्रामीण उत्सव जन भागीदारी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत 18 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन का कार्यक्रम चलाया गया और 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये जो है जिले के 403 गांवों में जहां हम लोग आदि सेवा केंद्र स्थापित किए हैं और तथा विभिन्न पंचायतों में एक सिचुएशन कैंप का आयोजन किया गया। और इस कैंप से जो है यहाँ के सभी मैक्सिमम आदिवासी जनजाति लाभान्वित हुए।
1: खूंटी पुलिस लगातार आपराधिक और उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाकर गुम हो चुके मोबाइल को तकनीकी शाखा की मदद से मोबाइल चोरों तक पहुंचकर मोबाइल बरामद किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया।
6: मिशन मुस्कान के तहत हम लोगों ने ये पहल स्टार्ट की है कि जो भी लोगों का मोबाइल खूंटी जिला अंतर्गत गुम हो जाता है या कभी चोरी हो जाता है तो हम लोग तुरंत उसको जो है CIR पोर्टल है उस पर अपडेट करा देते हैं, और जैसे ही हम लोगों को उस फोन का लोकेशन प्राप्त होता है हम लोग तुरंत उसमें टीम भेज करके उस फोन को रिकवर कराते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने पहली बार 56 मोबाइल उनके ओरिजिनल धारकों को रिटर्न कराए हैं।
1: इधर इस हफ्ते खूंटी के बिरसा कॉलेज में टाटा स्टील फाउंडेशन ने CSR के तहत विद्यार्थियों के पठन पाठन हेतु 60 लाख का डेस्क बेंच उपलब्ध कराया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आज का ये कार्यक्रम है मुंडारी भाषा में।

0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम था मुंडारी भाषा में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे के पड़ाव की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो। बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम, हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो।
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बाहर मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।
4: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
4: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
3: और अगर कमाई रुक जाए तो?
4: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
4: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
2: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
0: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
2: मैं बदलना चाहता हूँ,
1: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन,
2: सीमा,

0: मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
1: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
2: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजा जी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोताओ, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोताओ, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहाँ कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है। वहाँ आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहाँ पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के

0: बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोता, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोता, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा। दोस्तों, इस विषय से जुड़े हुए आप अपने अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिए।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़िया, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर, हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 मीटर बैंड पर। जी हाँ, 545.45 मीटर बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

हमारी बेटियां अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा।

सभी सुनने वालों को राजेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिल्म आंधी का ये गीत है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें

तेरी आवाज से महकी है फिजाएं मेरी, तेरी आवाज से महकी है फिजाएं मेरी, तेरे होने से सजी है दुआएं मेरी। अब अंधेरों का गिला दिल से गया है जैसे, अब अंधेरों का गिला दिल से गया है जैसे, तू जो आई तो चमक उठी वफाएं मेरी। अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। रचना गुलजार की थी, संगीत था आर डी बर्मन का। और श्रोताओ आइए अब सुने कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म अजनबी का ये गीत है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत आर डी बर्मन का। बरसती

रात में दिल और करीब आ जाए, बरसती रात में दिल और करीब आ जाए, तेरी सांसों से मेरी रूह महक जाए, इश्क की भीगी हुई इन हसी राहों में हर अधूरी सी तमन्ना भी मुकम्मल हो जाए।

כרכים בכלל להגיד, הישוני, פילם נורן כיגיד, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, रचना भरतव्यास की, संगीत श्री रामचंद्र का। तेरी खामोश निगाहों में कयामत देखी, तेरी खामोश निगाहों में कयामत देखी, पत्थरों में भी धड़कते हुए चाहत देखी, इश्क जब हद से गुजर जाए किसी दिल में, हमने वीराने में भी खिलती मोहब्बत देखी।

0: चांद आधा सही इश्क मगर पूरा है, चांद आधा सही इश्क मगर पूरा है, तेरी बातों में ही दिल का जहां पूरा है, रात खामोश सही धड़कने गाती हैं, तेरे मिलने से मेरा हर समा पूरा है। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म नवरंग का गीत, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में। रचना भरत व्यास की थी, संगीत सी रामचंद्र का था। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, हम तुरंत हाजिर होते हैं अगले गीत के साथ।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा में फिर से आपका स्वागत है। श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म हिमालय की गोद में का ये गीत है, मुकेश की आवाज़ में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तेरे चेहरे पे चांदनी का असर लगता है, तेरे चेहरे पे चांदनी का असर लगता है, तेरी आँख में कोई ख्वाब अमर लगता है। जब भी देखूं तुझे दिल से ये दुआ देता हूं, तेरा हर लम्हा मोहब्बत का सफर लगता है।

फिल्म हिमालय की गोद में का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत किशोर कुमार की आवाज में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का। दिल की वीरान गलियों में धुआं सा क्यों है, दिल की वीरान गलियों में धुआं सा क्यों है, कोई बुझती हुई चाहत फिर जली लगती है। इश्क जब दर्द की हद से गुजर जाता है, इश्क जब दर्द की हद से गुजर जाता है, हर मुस्कान भी आंखों में नमी लगती है।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: इसे साथ अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा। आज का यह कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में आप सुनेंगे सुर्खियों में।
4: सुर्खियों में
5: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: लक्ष्मी, सार्थक PDS योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
6: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और PDS या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इससे उनका थोड़ा सा PDS में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इशू है जो डीलर्स का है। डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
5: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
7: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को

0: इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है, तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
2: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है, जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है वो जो राइटफुल बेनिफिशियरीज हैं वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे, पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और होस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी, और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर के खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
1: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
0: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी इसका यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
1: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
2: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो एनएलपी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करे, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को। हाँ, उनका जो कंप्लेंट है वो कोई समझ रहे, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
1: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं। तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
2: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अब ये जीपीएस टैग व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
1: जी,
2: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर जीपीएस टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे होगा, एआई एल्गोरिथम्स जो एआई यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है। राशन में कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में, क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है एक महीने में। राशन कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते, कई बार त्योहार के टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता। तो टेक्नोलॉजी के वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर क्यूआर कोडेड के वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते।
1: Right.
2: जो जिस फेयर प्राइस शॉप को, जो राशन शॉप के लिए जाना है, वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला क्यूआर कोड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयरहाउस से लेके राशन शॉप के दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
1: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना एनएफएसए के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
0: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
1: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक पीडीएस की बात की गई। और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक पीडीएस ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
2: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उठाना चाहिए और उठाने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं, वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है, विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
1: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में

0: पूरी तरह सफल हुई है।
1: हाँ, इस सरकार में इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं। और जहां तक मैंने पीडीएस इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है,
0: जी
1: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके, और इवन वेयरहाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा
0: जी
1: और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए, और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा,
0: जी
1: कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
0: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
1: देखिए, इसमें तो डीलर का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन्स देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करें। एंड
0: जी
1: दूसरा, जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
0: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: कार्यक्रम सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा, कहा यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
5: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी

0: फैसला लिया गया है, और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफ कैट वन

0: 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
4: Three major reforms have been introduced in

खबरों के साथ मैं तनवीर फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उन्होंने तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए

जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बरेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही, परंतु बहुत सारे

0: कारण ऐसी हुई जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे भरते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य IAS अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा

0: बल नहीं रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
2: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है,

0: और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठिए का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। तो मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब करती थी, वो कलकत्ते पहुंचाए, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका, यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा, उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी

0: संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
1: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
0: जी,
1: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर, लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में, बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
0: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
0: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
1: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहा है असम में जा रहा है, असम से एंटर कर रहा है बिहार तक पहुंच रहा है या झारखंड तक पहुंच रहा है, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में। तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं एक क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसीज की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
0: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
0: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
1: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है। और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है।

0: है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
5: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। नाटकों के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक समाप्ति।

0: नदी में पानी तो काफी बढ़ा हुआ है नमाजी।
1: हाँ अबू बाबू, बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा बाबू, घाट पर कोई आया नहीं लेने, घर पर खबर नहीं है क्या?
0: अरे हाँ, जानबूझकर नहीं दी खबर।
1: अच्छा बाबू, आपकी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना कलकत्ते में?
0: हाँ माझी, बीए पास कर लिया।
1: अरे बाबा रे, बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती होगी ना?
0: हाँ।
1: लीजिए बाबू, आगे आपके घर का घाट, चलिए हम ले चले आपका सामान। दीजिए दीजिए।
0: अरे अरे अरे, रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा।
1: नहीं बाबू, बारिश के कारण घाट पर फिसलन हो गई है।
0: अरे कोई बात नहीं माझी, चला जाऊंगा।
1: ठीक है, संभल कर बाबू। क्या हो गया? अरे चोट तो नहीं लगी आपको? अरे क्या हो रहा है मीनू, ये भी कोई हंसने की बात है? लगी तो नहीं बाबू?
0: अरे नहीं, बस कपड़े थोड़े गंदे हो गए। चलो अब तो तुम्हें ही ले चलना होगा बैग।
1: हाँ चलिए बाबू चलिए। ये देखो तो इस लड़की को, अरे अभी तक हंसते ही जा रही है ईंट के ढेरों पर बैठ कर। मीनू चुप।
0: माँ जी,
1: जी
0: कौन है ये लड़की?
1: अरे वही मीनू, और कौन, ईशान बाबू की बेटी मृन्मयी। अरे अरे, ये लड़की मत पूछिए।

0: एकदम अल्हड़ और अबोध,
1: किसी से नहीं डरती, पगली है एकदम। इतनी बड़ी हो गई है, लड़कों के साथ बस दिन रात धमा चौकड़ी। माँ जी, ओ माँ जी, देखिए किन्हें लाया हूँ।
2: कौन कौन लाया है? कौन? अरे अबू, तू? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, अचानक आ गया। ओरे दयालु भगवान।
3: हाँ माँ, आ गया एकदम बीए पास करके।
2: दुगा दुगा, चल चल चल भीतर चल चल। अब बेटा थका होगा ना, चल जल्दी से नहा ले, मैं खाने की व्यवस्था देख कर आती हूँ। दयामयी, ओ दयामयी, रसोई कहाँ तक

0: ओपू बेटा, ठीक से खा। कलकत्ते में कहाँ मिल पाता होगा अच्छा खाना। अब तू खा, मैं पंखा झल देती हूँ।
1: ओह माँ, इतना सारा खाना।
0: चुपचाप खा तो। अच्छा ओपू बेटा, अब तो बीए पास भी कर लिया तूने, अब तो ब्याह में सम्मति है ना तेरी?
1: क्या माँ, इतनी जल्दी?
0: क्यों, तू नहीं चाहता कि बहू का सुख मिले मुझे?
1: ओहो माँ, ठीक है ठीक है, पहले पात्री तो देख लूं, फिर सोचूंगा।
0: पात्री देखी जा चुकी है, तुम्हें सोचना नहीं होगा।
1: अरे ऐसे कैसे? नहीं माँ, बिना लड़की देखे मैं ब्याह नहीं कर सकता।
0: तो ठीक है, देख ले तू भी लड़की को। खाना खाकर तैयार हो जाना, पात्री का छोटा भाई राखाल आएगा तुझे ले जाने, उस टोले में है घर।
2: अपूर्वदा, अपूर्वदा, चलिए चलिए।
0: लो देखो, आ भी गया। राखाल तुम बैठो, आ रहा है अपूर्व।
2: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।

0: क्यों भाई रखाल, तुम पात्री के क्या लगते हो?
1: पात्री कौन? ओहो पूटी, हाँ हाँ वो मेरी दीदी है।
0: अच्छा, और ये मीनू जो है मृणमयी, तुम्हारे दोस्त है ना?
1: अरे वो तो जंगली है, एकदम जंगली। जानते हैं पूर्वोदा, एक बार मैंने ना कैंची से उसके थोड़े से बाल काट दिए ना, तो गुस्से से एकदम लाल घुंघराले काले बाल कचकच करके खुद ही काट दिए बहुत सारे।
0: अरे फिर?
1: और फिर क्या? देखिए घर भी आ गया हमारा।
2: आइए आइए अपूर्व बाबू, अहो भाग्य हमारे।
1: अरे कोई पानी तो दो ना।
3: ये है हमारी पूटी, पूछिए लजा रही है।
0: क्या पढ़ती हैं? हाँ क्या पढ़ती हैं?
2: चारुपाठ दूसरा भाग, व्याकरण पहला भाग, भूगोल, अंकनीत और भारत के इतिहास।
4: राखाल राखाल!
2: अरे अरे मीनू कहाँ घुसी जा रही है? पूछी को देखने ना लड़का आया है। अरे रुक तो
4: राखाल, चलना चलना खेलते हैं।
1: ओहो हाँ छोड़, अभी नहीं।
4: अभी नहीं जाएगा तो ये ले।
1: ओह मीनू उफ, लगता है ना मारती क्यों है।
2: पूटी ए पूटी, ये तूने घूंघट क्यों डाला है? दिखा दिखा ना अपना चेहरा तो दिखा।
1: अरे देखो तो मीनू,
2: भाग यहाँ से मीनू, चल भाग यहाँ से, चल भाग।
1: हाँ हाँ जा रही हूँ।
0: तो मैं भी चलता हूँ। अरे मेरे जूते कहाँ गए? यहीं पर तो उतारे थे।
1: ओहो जूते नहीं हैं?
0: हाँ
1: जरूर मीनू लेकर ही भागी होगी।

0: अच्छा पूर्वोदा, आप काका बाबू की चप्पल पहन कर जाइए, मैं जूते बाद में पहुंचा दूंगा।
1: बड़ी अद्भुत लड़की है ये मृण्मयी भी, एकदम चंचल हिरणी।
2: वाह क्या साज है, अचकन पगड़ी और पैरों में ढीली चप्पल।
3: अरे अरे तुम यहाँ रास्ते में, ए हाथ में क्या है, जूते। ए रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, जूते रखकर कहाँ भागती हो, ठर ठर ठर ठर, हाँ पकड़ लिया।
2: छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। ओ
3: नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बंदी बना लिया है।
2: छोड़िए ना छोड़िए मेरा हाथ। छुड़ा लिया छुड़ा लिया। ए, छुड़ा लिया।

0: क्यों रे ओपू, देखा या लड़की?
1: हाँ माँ, उनमें से एक मुझे पसंद है।
0: एक पसंद है? मतलब कितनी लड़कियां देखी, कौन पसंद?
1: वही जिनके घुंघराले हैं बाल, एकदम स्वच्छंद, झरने की तरह हंसती है बात बात पर।
0: बात बात पर हंसती है? अरे कहीं कहीं तो उस उच्छृंखल मृणमयी की बात।
1: हाँ माँ, वही मृणमयी।
0: अरे हाय हाय, ये दिन भी देखना था मुझे। वैसी एक उद्दंड लड़की राय परिवार की बहू बनेगी, कुल मर्यादा का ख्याल भी है तुम्हें?
1: और उस पूटी पोटली से ब्याह करने से तो अच्छा है ना माँ कि ब्याह ही ना करूं। मेरी आखिरी बात सुन लो, ब्याह करूंगा तो मृणमयी से, वरना नहीं करूंगा कभी।
0: देखो तो क्या मुश्किल। अच्छा तू मानेगा नहीं तो संवाद भेजती हूँ मृणमयी की माँ को।

0: देखो बहू, अपू की जिद से ब्याह तो हो गया तुम्हारा रायकुल में, लेकिन अब तुम्हारी उच्छृंखलता नहीं चलेगी इस घर में। कह देती हूँ, वो दौड़ना भागना, बात बात पर खीखी खीखी करना पसंद नहीं मुझे। अपू समझा देना ठीक से इसे।
1: ओ माँ, अभी तो आई है, सीख जाएगी।
2: अच्छा मृणमयी, तुम मुझे प्यार नहीं करती?
3: नहीं, हम आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे।
2: क्यों, मेरा क्या दोष है?
3: आपने हमसे ब्याह क्यों किया?
2: ओ तो इसी बात का गुस्सा है तुम्हें?
3: हाँ, और ये सब फाड़ चीर देंगे, हम ये सब फाड़ देंगे। अरे, सब
2: अरे, क्या करती हो? अरे ये चादर क्यों फाड़ रही? अरे शांत, शांति।
3: बाबा, हम बाबा के पास जाएंगे। बाबा, बाबा हमें ले जाओ यहाँ से, यहाँ हमारा कोई नहीं, हम मर जाएंगे बाबा।
2: ओ मृणमयी, देखो सुनो, अभी तो रात है, अभी मुझे नींद आ रही है, हाँ कल चलेंगे, अभी सो जाओ।
1: अरे कल बहू को एक बार पिता के पास भेज देती तो?
0: कोई जरूरत नहीं, बाप कहाँ रहता है ठिकाना नहीं, ब्याह में भी तो नहीं आया बेटी के, कहता है छुट्टी मंजूर नहीं हुई। बेटी को ही जितना दर्द बाप के लिए,

0: मृण्मयी, मृण्मयी बाबा के पास जाओगी?
1: हाँ जाऊंगी।
0: धीरे धीरे एकदम चुपचाप दोनों चलते हैं। घाट पर नाव तैयार है। कितना अंधेरा है, देखो ठीक से देख कर चलो। ये देखो घाट आ गया।

0: भैया यही है ना कुशीगंज, ये ईशान बाबू कहाँ रहते हैं?
1: पूरे उधर मान वंदन कर रहे हैं ना।
2: बाबा बाबा।
3: कौन?
2: बाबा।
3: अरे मीनू, ओहो, साथ में जमाए बाबू भी हैं। कितने आनंद का दिन है। चलो चलो घर चलो घर चलो, बैठिए ना, जगह तो आपके लायक नहीं फिर भी।
2: बाबा आप एकदम चिंता मत कीजिए, हम मिलकर खाना बनाएंगे, ठीक?
0: एकदम ठीक।

0: मृण्मयी, 3 दिन हो गए, अब चलें घर?
1: नहीं, अभी और कुछ दिन रहते हैं ना।
2: नहीं बेटी, जमाई बाबू को काम होगा, जाने देने की इच्छा तो नहीं है, फिर भी।
1: बाबा।
2: अरे चुप, चुप पगली, रोते नहीं बेटी, ससुराल में एकदम अच्छे से रहना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक? देख, छुट्टी मिलते ही आ जाऊंगा, ठीक है? जमाए बाबू, आप संभाल लेना मृण्मयी को, ठीक है? अब आइए, दुर्गा दुर्गा।

0: माँ माँ, अरे सुनती हो? और कितने दिनों तक नाराज रहोगी? न बात न चीत। ठीक है बाबा, हम बिना कहे चले गए थे, मगर अच्छा सुनो, मैं कलकत्ते जा रहा हूं कानून की पढ़ाई करने, कॉलेज खुल गया है।
1: और बहू का क्या होगा?
0: बहू यहीं पे रहेगी और क्या।
1: कोई दरकार नहीं, उसे तुम साथ ही ले जाओ।
0: अच्छा मृणमयी, मेरे साथ कलकत्ते जाने की इच्छा नहीं हो रही?
1: नहीं।
0: तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो ना? बस रह गई चुप। अच्छा पता है, मैं बहुत दिनों तक घर नहीं आऊंगा, 2 साल या इससे भी ज्यादा।
1: अच्छा।

0: जब आओगे तो राखाल के लिए एक छुरी खरीद कर जरूर लाना।
1: तो तुम यहीं रहोगी?
0: हाँ, अपनी माँ के पास चली जाऊंगी।
1: ठीक है, चली जाना। अब जब तक तुम मुझे आने के लिए चिट्ठी नहीं लिखोगी, मैं आऊंगा ही नहीं। खुश? ए मृणमयी, अरे सो गई क्या? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। कितनी लंबी है ये रात।

मृण्मयी मृण्मयी, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी मां के घर छोड़ आऊं। अरे मेरे जाने का समय हो गया है। सुनो, एक अनुरोध रखोगी मेरा? मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, बदले में एक पुरस्कार दोगी? स्वेच्छा से, पूर्ण प्रेम से भरा एक चुंबन। मृण्मयी मृण्मयी, अरे सुनो तो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊं।

इतने दिन हो गए, इनकी कोई खबर नहीं। इनकी ये क्या हो रहा है? हमें संगी, साथी, खेल कूद, मायका, कुछ भी तो अब अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्यों? ससुराल जाकर रहना ही ठीक होगा, कम से कम उनकी चीजों से जुड़ी स्मृतियां तो रहेंगी मेरे साथ।

0: क्यों बहू, और रह आती मायके में? अभी तो 6 ही महीने हुए थे।
1: माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब हम वहां नहीं रह सकते।
0: क्यों, तुम्हारे खेल के संगी?
1: नहीं माँ जी, अब आपके पास ही मेरा आश्रय है और आपके संग ही मेरा धन। हाँ माँ जी।
0: बहू, तू तो बदल गई है बहुत, अचानक जैसे बड़ी हो गई है।
1: माँ जी।
0: अच्छा चल चल चल, आराम कर ले थोड़ा, चल भीतर। पप्पू को भी तो जैसे कोई चिंता ही नहीं, छुट्टियों में भी नहीं आया, इतने दिन हो गए, ना चिट्ठी ना पत्री।
1: चिट्ठी? हाँ चिट्ठी।
2: अब जब तक तुम मुझे आने के लिए चिट्ठी नहीं लिखोगी, मैं आऊंगा ही नहीं। खुश?
1: हाँ चिट्ठी लिखती हूँ, अभी लिखती हूँ। आप हमें चिट्ठी क्यों नहीं लिखते?

कैसे हैं? घर आ जाइए। माँ ठीक है। राखाल, विदु सब ठीक है। हमें चिट्ठी लिखिएगा। हाँ हाँ, काली गैया के सुंदर बछड़ा हुआ है। बस अब नाम लिख देती हूँ। श्री अपूर्वा कृष्ण राय। हाँ, अब दयामयी को दे दूंगी, डाक बक्से में डाल आएगी। दयामयी, दयामयी।

0: बहू, इतने दिन हो गए, अपू की कोई खबर नहीं आई। मेरा तो जी घबरा रहा है अब। मैंने कोलकाता में जमाई बाबू को खबर दे दी है, हम कोलकाता जा रहे हैं। अपू भी जमाई बाबू के यहाँ ही आ जाएगा। तुम तैयारी कर लो बहू, हम कल ही कोलकाता जा रहे हैं।
1: जी माँ जी।

0: तुमने आने से पहले एक एक एक अनुरोध किया था ना, उसी को पूरा करने आई हूँ।
1: क्या भोलेपन की समाप्ति? समाप्ति। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है गिटार पर राग भाग्यश्री में आलाप और गत, मध्य लय की रचना झप ताल में और द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। आप राग भाग्यश्री के बाद गिटार पर राग मिश्र गारा भी प्रस्तुत करेंगे। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं गिटार पर राग भाग्यश्री मालाप और गत, तदुपरांत गिटार पर राग मिश्र गारा। कलाकार पंडित विश्व मोहन भट्ट।

गिटार पर राग भाग्यश्री में आलाप और गद प्रस्तुत कर रहे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट। अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं गिटार पर राग मिश्र गारा में धुन।

अभी आप गिटार पर राग बागेश्वरी में आलाप और गत के बाद गिटार पर राग मिश्र गारा में धुन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित विश्वमोहन भट्ट, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुखविंदर सिंह नामधारी। इसी साथ आज का

ये कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का

अंदायमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।